FM के 101.7 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948, वैशाख माह की तिथि 23, तदनुसार 13 मई ईस्वी सन 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय प्रातः की 5:58 हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में समाचारों का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी के पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है। इससे पहले राजस्थान पुलिस ने 7 मई को देहरादून से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें कथित मुख्य साजिशकर्ता सीकर का करियर काउंसलर राकेश कुमार भी शामिल था। राष्ट्रीय पात्र परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलग वेत्री कड़गम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वास मत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है। इस बीच कल तमिलनाडु की राजनीतिक स्थिति में नाटकीय मोड़ आया जब अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडापड्डी के पलानी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन ना करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने एसपी वेलुमणि को विधायक दल का नेता चुना है। अम्मा मक्कल मुनेत्र

0: निगम के इकलौते विधायक एस कामराज को टीवी के सरकार को समर्थन देने की घोषणा के बाद पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। पुलिस ने सीमा पार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान के दौरे पर रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य भारत भूटान संबंधों को और मजबूत करना है। 51 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में राज्यसभा और लोकसभा के सांसद और विदेश मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं। राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में हैं। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। कल राज्य में सबसे गर्म स्थान बाड़मेर रहा, जहां अधिकतम तापमान 48.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक ने बताया कि राज्य के पश्चिमी जिलों में अगले 3 से 4 दिनों तक मौसम की यथास्थिति बनी रहेगी। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात ने अपने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 168 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स की टीम 15वें ओवर में 86 रन पर ही सिमट गई। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला शाम 7:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। The Central Bureau of Investigation, CBI, has registered a case in connection with an alleged paper leak in the conduct of the National Eligibility Cum Entrance Test on NEET UG 2026. The agency has registered the case based on a written complaint received from Department of Higher Education, Ministry of Education. The agency stated that special CBI teams have been formed and dispatched to various locations for investigation in the matter. The NEET UG 2026 examination was conducted by the National Testing Agency on 3rd of this month. In this case, Special Operations Group of the Rajasthan Police has so far detained 15 people. The Special Operations Group yesterday detained an alleged mastermind identified as Manish from Jaipur. Nashik Police have also detained a man in connection with the NEET paper leak case. CBI has now taken his custody. In Tamil Nadu, the TVK government is scheduled to prove its majority in the assembly today. Chief Minister C. Joseph Vijay has been holding meetings with leaders of supporting parties to consolidate support ahead of the floor test. Along with the backing from allies, the TVK government has secured the support from the breakaway faction of AIADMK and the lone MLA of AMMK, S. Kamaraj. The TVK now has support of around 150 MLAs in the assembly. Meanwhile, in a dramatic turn of events in the political situation in Tamil Nadu yesterday, the AIADMK split into two groups over extending support to the government. The faction, led by former Chief Minister and Party General Secretary Eddapadi K. Palaniswamy, has directed party MLAs not to support the TVK government. In West Bengal, following the change of government, the state police has adopted a stringent stance regarding law and order and past cases of political violence. In this regard, ADG Law and Order issued a detailed directive yesterday to all police commissioners, police superintendents and railway police authorities, mandating a series

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोता, हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय प्रातः के 6:10 हो रहे हैं और अब प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान। गायक कलाकार हैं रंजना जोगलेकर और साथी।
1: एपिसोड 74 74।

प्रभु की लीला और माया का अद्भुत दृश्य उपस्थित है अयोध्या में, जो सर्वत्र व्याप्त निरंजन अर्थात माया रहित निर्गुण और अजन्मा ब्रह्म है। वह भक्ति और प्रेम के वश होकर माता कौशल्या की गोद में नन्हा शिशु बनकर खेल रहा है। नील कमल और जल से भरे मेघ के समान इस बालक के शरीर में करोड़ों कामदेवों का अनुपम मनोहारी रूप है। चरण के तलवों में वज्र, ध्वजा और अंकुश के चिन्ह अंकित हैं। नन्हे नन्हे पांव से पैंजनी की ध्वनि मुखरित होती है तो मुनियों का मन विमोहित हो जाता है। लाल कोमल होठों से उच्चरित मधुर तोतले शब्द बहुत प्यारे लगते हैं। चिकने घुंघराले बालों को माता ने कई प्रकार से बनाया संवारा है। ऐसी ही मनोहारी छवि है पीली झंगली में लिपटे शरीर के हाथों और घुटनों के बल चलने की।

बाल लीला देखने और उसके सुख का भागी होने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हो रहा है जिन्होंने प्रभु के चरणों में प्रीति जोड़ी है। भगवान शंकर पार्वती को राम कथा सुनाते हुए कहते हैं, इस प्रकार जगत के माता पिता अवधपुर के निवासियों को सुख दे रहे हैं।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। गायक कलाकार थे रंजना जोगलेकर और साथ ही हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। और अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण।

भक्ति संगीत के कार्यक्रम समर्पण में आप सभी प्रिय श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, आइए करते हैं कार्यक्रम को आरंभ और सुनते हैं लता मंगेशकर के स्वर में ये भजन।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के स्वर में ये भजन, और अब आइए सुनते हैं ओम व्यास के स्वर में ये भक्तिमय गीत।

श्रोताओं, ये भक्तिमय गीत अभी आप सुन रहे थे ओम व्यास और साथियों के स्वरों में। और अब आइए सुनते हैं अनूप जलोटा के स्वर में ये भक्तिमय गीत है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। और अब आइए जानकारी प्राप्त करते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की।

श्रोताओं, आपसे कुछ ही देर बाद यानी सवेरे 6:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत, जिसमें आज हम आपको सुनवाएंगे मृदुला भट्टाचार्य दास के स्वर में संगीत रचनाएं। सवेरे 7 सुनिएगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहार चाईबासा। सवेरे 8 समाचार प्रभात का प्रसारण होगा आकाशवाणी दिल्ली से, यहीं से अंग्रेजी में समाचार होंगे सवेरे 8:15 पर। श्रोताओं, उसके बाद प्रादेशिक समाचार सुनिएगा आकाशवाणी रांची से सवेरे 8:30 पर। हमारे केंद्र से लोकगीतों का कार्यक्रम माटी के महक होगा सवेरे 8:40 पर। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे बांग्ला लोकगीत। श्रोताओं, सवेरे 9 सुनिएगा कार्यक्रम विविधा। सवेरे 9:30 पर सुनिएगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस रंजन। दिन के 10 सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। दिन के 10:30 से आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे यहीं से। दोपहर 1:10 पर सुनिएगा प्रादेशिक समाचार। दोपहर 1:20 पर सुनिएगा आकाशवाणी रांची के अन्य कार्यक्रम। दिन के 2:55 पर पुनः प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे। दिन के 3 सुनिएगा आकाशवाणी रांची के अन्य कार्यक्रम। शाम 4 मुख्य समाचार। शाम 4:02 पर आकाशवाणी रांची के अन्य कार्यक्रम और शाम 5 सुनिएगा मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। श्रोता, हमारे केंद्र से शाम 5:02 पर सुनिएगा कार्यक्रम विवरण। शाम 5:05 पर सुनिएगा कार्यक्रम गुलदस्ता, जिसमें आज हम आपको सुनवाएंगे एक ही गायिका द्वारा गाए गए फिल्मी गाने। श्रोताओं, शाम 5:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम खेती गृह।

थी। इसमें चर्चा का विषय होगा सिंचाई प्रबंधन। मनोरंजन कीजिएगा उड़िया लोकगीत से दिलीप निषाद और साथियों के स्वरों में, भेंटवार्ता सुनिएगा जिसमें विषय होगा गर्मी के मौसम में होने वाली सब्जियों की खेती। भेंटवार्ताकार होंगे मंगल सिंह चातर और उनसे बातें कर रही होंगी कोमल नायक। एक नागपुरी लोकगीत का भी आप आनंद ले सकेंगे रूना देवी और साथियों के स्वरों में, और साथ ही वस्तुओं के बाजार भाव की जानकारी भी आप सुन सकेंगे। श्रोताओं शाम 6 बजे सुनिएगा मुख्य समाचार आकाशवाणी रांची से, उसके बाद हमारे केंद्र से शाम 6:02 पर सुनिएगा क्षेत्रीय भाषा का कार्यक्रम हो अकड़ा। श्रोताओं इसमें चर्चा का विषय होगा बांस से बनने वाली सामग्रियां। मनोरंजन कीजिएगा हो लोकगीत से चंद्रमोहन बीरवा और साथियों के स्वरों में, आज की भेंटवार्ता का विषय होगा एंगा हयम ममरंग कमल। श्रोताओं भेंटवार्ताकार होंगे कमल पूर्ति और उनसे बातें कर रहे होंगे राम सिंह चातर, और साथ ही आंधी लोकगीत का आनंद लीजिएगा मेलानी बोदरा और साथियों के स्वरों में। श्रोताओं शाम 6:30 पर सुनिएगा महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम मनोरमा। शाम 7 बजे प्रादेशिक समाचार होंगे आकाशवाणी रांची से, यहीं से जिले में आजकल का प्रसारण होगा शाम 7:10 पर। उसके बाद हमारे केंद्र से सुनिएगा फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद शाम 7:15 पर। फरमाइशी फिल्मी गीतों का एक और कार्यक्रम रजनीगंधा सुनेंगे शाम 8 बजे। शाम 8:45 पर सुनिएगा समाचार संध्या का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से, यहीं से अंग्रेजी में समाचार होंगे रात्रि 9 बजे। उसके बाद आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे रात्रि 9:15 से। हमारे केंद्र से गज़लों का प्रोग्राम महफिल होगा रात्रि 10 बजे। फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग होगा रात्रि 10:30 पर। रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार होंगे आकाशवाणी दिल्ली से, यहीं से अंग्रेजी में समाचार होंगे रात्रि 11:05 पर। और रात्रि 11:10 पर संपन्न होगी हमारी आज की सभा। तो श्रोताओं ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की।

श्रोताओं, अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है FM के 101.7 MHz पर, और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। श्रोताओं, आज के सुगम संगीत कार्यक्रम में आइए आनंद लेते हैं मृदुला भट्टाचार्य दास के स्वर में संगीत रचनाओं का। सबसे पहले आइए सुनते हैं ये भक्तिमय गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आप आनंद ले रहे थे मृदुला भट्टाचार्य दास के स्वर में संगीत रचनाओं का। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है FM के 101.7 MHz पर। और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम जोहार चाईबासा।

नमस्कार, जोहार जोहार चाईबासा कार्यक्रम सुनने वाले आप सभी श्रोताओं का मैं उदयपान कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूँ। श्रोताओं, आइए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत और सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत किशोर कुमार की आवाज़ में। फिल्म का नाम है आराधना।

श्रोताओं, जोहार चाय बासा में गीतों के सफर की शुरुआत अच्छी हो चुकी है, तो आइए कार्यक्रम आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं अगला गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। फिल्म का नाम है एन इवनिंग इन पेरिस।

करेगा तो फिर क्या करोगी।

एन इवनिंग इन पेरिस, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। श्रोताओं आप आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में अगला गीत। फिल्म का नाम है सत्यम शिवम सुंदरम।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर, और अपने रेडियो दोस्त उदय पान के साथ इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहार चाईबासा। और अब श्रोताओं, कार्यक्रम में वक्त है आगे बढ़ने का। ये सुनते हैं अगला गीत मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है मोहब्बत इसको कहते हैं।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में फिल्म मोहब्बत इसको कहते हैं का ये गीत। आइए अब अगला गीत सुनते हैं मुकेश और हेमलता की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है विश्वास।

मुकेश और हेमलता की आवाज़ों में श्रोताओं, ये था फिल्म विश्वास का गीत। अगला गीत आइए सुनते हैं आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है सीता और गीता।

0: और अब श्रोताओं कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं ये जरूरी संदेश।
1: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
2: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
3: आले नवागे नहर में ना आ बले नवा नुकान परिस्थिति रे बले सब उड़ा वापस को रुड़ करना धरा रे मैं कहा कि आम बले रुड़ तबन में अले परिवार से मतलब पूरे ये ना
4: वरना मंगलोरा को गांव बरगड़ा आरकी थाना तो जंगल गया है तो आउ क्या कहाँ मना है वो लोग आउ का वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम रे सुने पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखंड तो तुम ठीक हो है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
5: नाम है रंगबला देवी कहाँ बारे हत्तो तो था तो घर आई ने हमरे घर है बहुत दुख के बात है तो अखंड बात हो जाए
6: ये तुम बुरा मिसिंग काम सोए अनिता काम सोए भरूपा ऐसे ना करना ऐसे दुकुरा में ना आया यापा में रियल तपा में रियल वाह बेटा मिका
7: अन्यान तुम दो बुंबई कोड़ा पटन तुम गुंडे कोड़ा अन्यान हम दो कोदमरी कोड़ा रो पटन पटन तुम कितने कोड़ा मैंने मिल उड़ी उड़ी ने बागिया तोड़ के मिल दुना से यार की कोलो पुलिस कोलो मिल लड़ाई चलाओ तमा दुरुगम गया तब जाए तेरे काका गुंग हो उन्हें बको को काको मेल नहीं है
8: अलिंग मुनि सुरेन पे ते आप ही लेता ना लिंग से जा हुरा रे मिना हीरो जिता हुरा रे मिना हीरो तो बुगिन हुरा ते ससेन का है वो आगे बिता हुरेन का अले आया न तुम ते ना मिल आप ही लेता ना।
2: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
0: श्रोताओं इस संदेश के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम जोहार चाईबासा में। और अब आइए सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में फिल्म अपनापन का ये गीत। और अब आइए सुनते हैं अगला गीत आशा भोसले की आवाज़ में, फिल्म का नाम है वक्त।

श्रोताओं, ये था फिल्म वक्त का गीत आशा भोसले की आवाज़ में। अगला गीत आइए सुनते हैं मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है दिल ही तो है।

दिल ही तो है। श्रोताओं, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में। और अब श्रोताओं, पेश है अगला गीत किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है डिस्को डांसर।

किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ों में आप सुन रहे थे डिस्को डांसर फिल्म का ये गीत। और अब श्रोताओं आइए सुनते हैं अगला गीत हम सुनेंगे, जो हम समर्पित करेंगे हमारे भारतीय सेना के वीर जवानों को। श्रोताओं, भारतीय सेना के हमारे वीर जवान, देश की सेवा में उन्होंने अनगिनत बलिदान दिए हैं। श्रोता, हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि इस वक्त जब हम अपना जीवन आज़ादी के साथ जी रहे हैं, कोई है जो देश की सीमाओं पर मुस्तैद है, पहरा दे रहा है, ताकि दुश्मनों की नापाक कोशिशों का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। जी हाँ श्रोताओं, भारतीय सेना के वीर, माफ कीजिएगा, भारतीय सेना के वीर जवानों के बलिदान को श्रोताओं आइए नमन करते हैं और सुनते हैं फिल्म शहीद का ये देशभक्ति गीत मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहार चाईबासा। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। श्रोता, हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय प्रातः के 8 बजने वाले हैं, यानी वक्त हो गया है समाचारों का। समाचारों के लिए हमारा अगला प्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार का बहुमत परीक्षण आज। राज्य में राजनीतिक गतिविधियां तेज। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस प्रमुख एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के उपाय शुरू किए। केंद्र ने सोना सहित अन्य कीमती धातुओं के उत्पाद शुल्क में वृद्धि की। समय से पहले दस्तक देगा मानसून। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है।
1: मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वास मत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ लगातार संपर्क में हैं। सहयोगियों के समर्थन के साथ साथ टीवी के सरकार को अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIADMK से अलग हुए गुट का समर्थन प्राप्त है। इस बीच तमिलनाडु में AIADMK सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडपाड़ी के पलनी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वरिष्ठ नेता एग्री कृष्णमूर्ति ने चेतावनी दी है कि पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने वाले किसी भी विधायक को पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने SP वेलुमणि को AIADMK विधायक दल का नेता चुना है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जसपाल कौर।
0: वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने राज्य सरकार में IAS अधिकारियों का तबादला किया है, जिनमें पूर्व मुख्य सचिव एन मुरुगंदम और वित्त सचिव टी उदय चंद्रन शामिल हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय में ज्योतिषी रिकी राधान पंडित को विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त किए जाने पर गठबंधन सहयोगी ने कांग्रेस सांसद शशिकांत सेंथिल और ज्योतिमणि ने इस नियुक्ति पर सवाल उठाए, जबकि CPIM के राज्य सचिव पी शुनगमुगम ने कहा है कि कदम सरकार के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के खिलाफ है। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस के नेता एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पुदुचेरी में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह

0: होगा। एन रंगासामी एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। क्षेत्रवर्षी एन रंगासामी का मुख्यमंत्री के रूप में यह पांचवा कार्यकाल होगा। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा पुदुचेरी प्रभारी निर्मल कुमार सुराना और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीपी रामलिंगम सहित कई प्रमुख नेताओं के शामिल होने की संभावना है। इससे पहले श्री नितिन नवीन ने पार्टी मुख्यालय में पार्टी पदाधिकारियों और विधायकों के साथ बैठक की। पुदुचेरी से विपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। पुलिस ने सीमा पार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कथित नीट पेपर लीक मामले में शुभम खैरनार को हिरासत में ले लिया है। राजस्थान पुलिस के अनुरोध पर नासिक पुलिस ने कल महाराष्ट्र के नासिक से शुभम को हिरासत में लिया था। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा कल पेपर लीक के आरोपों के बीच रद्द कर दी गई। नीट यूजी के एक उम्मीदवार के अभिभावक ने लातूर एसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है और आरोप लगाया है कि एक निजी कोचिंग संस्थान ने परीक्षा से पहले एक मॉक टेस्ट आयोजित किया था, जिसमें कथित तौर पर 42 प्रश्न नीट परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों से मेल खाते थे। इससे पहले राजस्थान पुलिस के विशेष जांच दल ने संदिग्ध नेटवर्क और धन के लेनदेन की जांच के दौरान 15 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस ने कल जयपुर से कथित मास्टरमाइंड मनीष को भी गिरफ्तार किया। इसी महीने की 7 तारीख को सीकर के करियर काउंसिलर राकेश कुमार समेत 5 लोगों को देहरादून से गिरफ्तार किया गया था और अगले दिन 4 नीट उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया गया। इस बीच राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर राज्य भर के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मितव्ययिता के आह्वान पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों द्वारा सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अन्य अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया और साप्ताहिक वाहन मुक्त दिवस को प्रोत्साहित किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने और सोने की अनावश्यक खरीद से बचने का आग्रह किया। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री और अन्य लोगों के वाहनों के बेड़े को तत्काल 50% तक कम करने का निर्देश दिया। उन्होंने आधिकारिक काफिलों से अनावश्यक वाहनों को हटाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने राज्य में घर से काम करने की संस्कृति को प्राथमिकता देने की भी अपील की। उन्होंने सार्वजनिक परिवहन, मेट्रो सेवाओं और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों के उपयोग पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों को सप्ताह में कम से कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए। सप्ताह में एक बार वाहन निषेध दिवस यानी नो व्हीकल डे का भी आयोजन किया जाना चाहिए। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। मुख्यमंत्री के काफिले में अब केवल 8 वाहन होंगे और कोई भी वाहन रैली आयोजित नहीं की जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी कहा है कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे, कार पूलिंग अपनाएंगे और मेट्रो और बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जो आज से प्रभावी हो गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सोने और चांदी पर 5% तथा प्लैटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। इसके अलावा अनुपालन मानदंडों की पूर्ति के अंतर्गत कीमती धातु के प्रयुक्त उत्प्रेरक पर 4.35% आयात शुल्क निर्धारित किया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने

0: पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के चलते लोगों से सोने की खरीदारी से बचने की अपील की थी। सरकार द्वारा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के वार्षिक और चौथी तिमाही के अनुमानों की प्रकाशन तिथि को संशोधित करते हुए प्रत्येक वर्ष मई के अंतिम कार्य दिवस से बदलकर 7 जून कर दिया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि ये संशोधन आंकड़ों की गुणवत्ता को और मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में भारतीय संसद का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान की यात्रा पर जाएगा। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत भूटान के संबंधों को और मजबूत करना है। यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल भूटान और भारत के बीच संबंधों के विभिन्न पहलुओं तथा दोनों पड़ोसी देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेगा। भारत कल से शुरू होने वाली 2 दिन की ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल भाग लेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज चीन की राजधानी पेइचिंग पहुंचेंगे। वे चीन की 3 दिन की यात्रा पर हैं। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि व्यापार इस वार्ता का प्रमुख विषय रहेगा। युगांडा के राष्ट्रपति यूवेरी मुसवेनी ने जनवरी में हुए चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद अपने 7वें कार्यकाल की शपथ ली। राष्ट्रपति मुसवेनी पिछले 40 साल से राष्ट्रपति पद पर हैं। श्री मुसवेनी ने कल युगांडा की राजधानी कंपाला के कोलोलो इंडिपेंडेंस ग्राउंड्स में आयोजित समारोह में हजारों लोगों के बीच पद की शपथ ली। श्री मुसवेनी ने 71% से अधिक वोट हासिल किए। भारत में इस साल दक्षिण पश्चिम मॉनसून का आगमन इस सप्ताह हो सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मॉनसून आ सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र कल भी इसी क्षेत्र में था और इससे संबंधित चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से 4.5 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ था। इस बीच राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में हैं। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम केंद्र ने सीमावर्ती बाड़मेर, जैसलमेर और फलोदी जिलों के लिए आज भीषण गर्मी और लू का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 4 पश्चिमी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 6 दक्षिणी पूर्वी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिन के साथ रातें भी तप रही हैं और कई स्थानों पर रात का पारा 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मापा जा रहा है। गर्मी की इन परिस्थितियों से जनजीवन पर खासा असर हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2-3 दिन तापमान के यही हालात रहने के आसार हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: महाराष्ट्र के सांगली जिले की जाट तहसील में कल एक धार्मिक सभा के दौरान दीवार गिरने से 6 लोगों की मृत्यु हो गई और लगभग 15 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। जम्मू कश्मीर में सेना के कल पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास कृष्णा घाटी सेक्टर में एक आतंकवादी को मार गिराया गया। हमारे संवाददाता के अनुसार सेना को मिली सूचनाओं के बाद शाम करीब 4 बजे नियंत्रण रेखा के अंदर संदिग्ध गतिविधि देखी गई। इस पर सैनिकों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। खेलों में आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं उज्बेकिस्तान में आयोजित एशियाई अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं। 75 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में फोगाट ने कोरिया के सेंगुमिन ली को पराजित किया। वहीं 8 भारतीय लड़कियों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए फाइनल में जगह बनाई और 4 ने कांस्य पदक जीते। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद फरहत। नीट यूजी 2026 की परीक्षा निरस्त करने का समाचार आज सभी अखबारों की सुर्खी बनी है। अमर उजाला लिखता है सीबीआई को पेपर लीक की जांच, 1 गिरफ्तार, 20 संदिग्ध हिरासत में। दैनिक भास्कर की खबर है 22 लाख अभ्यर्थियों से खिलवाड़, परीक्षा दोबारा होगी, नई तारीखों की घोषणा जल्द। कल से ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की समिट, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। पत्र लिखता है पीएम से भी संयुक्त मुलाकात, खाड़ी संकट के बीच दिल्ली पर दुनिया की निगाहें। तमिलनाडु में अन्नाद्रमुक के 30 विधायकों का टीवीके को समर्थन का ऐलान, विजय आज बहुमत साबित करेंगे। जनसत्ता सहित कई अखबारों की

0: सुर्खी है। अमर उजाला ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, नया भारत और बदलती सियासी समझ। संपादक का कहना है कि हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे बताते हैं कि देश का मिजाज अब राजनीति में किसी तरह की संकीर्णता को बर्दाश्त नहीं करेगा। कोलकाता से लेकर चेन्नई और तिरुवनंतपुरम तक नए की उम्मीद और पुराने के प्रति गुस्से के चलते मौजूदा व्यवस्था बहती दिखी। दैनिक जागरण ने पेट्रोल और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के शब्द प्रकाशित किए हैं, पेट्रोल उत्पादों की दिक्कत नहीं लेकिन कंपनियों का घाटा चिंताजनक। शेयर मार्केट में निवेशकों के 9,00,000 करोड़ स्वाहा, आखिरी घंटे और बढ़ी गिरावट, सेंसेक्स 1500 पॉइंट टूटने से मचा हाहाकार। लोकसत्य ने कारोबार पन्ने पर यह खबर प्रकाशित की है। जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस बनी लोगों की पहली पसंद, 10 दिनों में करीब 45,000 यात्रियों ने किया सफर, देश बंधु की खबर है। नवभारत टाइम्स ने जनगणना 2027 पर खबर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, अब QR कोड से जनगणना कर्मियों की होगी पहचान, फर्जी मैसेजेस को लेकर किया फैसला। मेहनत के बिना जवाब, चैटबॉट खत्म कर रहा रचनात्मकता, राजस्थान पत्रिका ने डिजिटल एडिक्शन शीर्षक से खबर प्रकाशित की है।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार का बहुमत परीक्षण आज। अखिल भारतीय NR कांग्रेस प्रमुख एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के उपाय शुरू किए। केंद्र ने सोना सहित अन्य कीमती धातुओं के उत्पाद शुल्क में वृद्धि की। मौसम विभाग का अनुमान, समय से पहले दस्तक देगा मानसून। और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Political activities in Tamil Nadu turn hectic ahead of C. Joseph Vijay-led TVK government's floor test today. All India NR Congress leader N. Rangasamy to take oath as Chief Minister of Puducherry today. Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Delhi governments implement measures for fuel consumption following Prime Minister Narendra Modi's austerity appeal. Centre increases import duty on gold and other precious metals. IMD predicts early arrival of monsoon this year. And in IPL cricket, Gujarat Titans beat Sunrisers Hyderabad by 82 runs in Ahmedabad. And now the news in detail. In Tamil Nadu, political activities have turned hectic ahead of C. Joseph Vijay-led TVK government's floor test in the assembly today. In a dramatic turn of events, the AIADMK has split into two groups over extending support to the TVK government. Lone AMMK MLA S. Kamaraj has decided to support the TVK government. We have more from our correspondent.
3: The TVK with allies like the Congress, VCK, CPI, CPIM and IUML had enjoyed a majority of 120 to form the government in Tamil Nadu. After the government was sworn in, now it has the support of 30 AIADMK MLAs from the breakaway faction and one AMMK MLA, having a total of 151 MLAs. TVK will now have to prove the strength of the government today. The AIADMK led by General Secretary E. Palaniswamy has already said that those who do not adhere to the rules of the whip will be expelled from the party. The party founded by MGR will be facing a major political crisis presently. Joy, Akashwani reporting from Chennai.
2: Meanwhile, Tamil Nadu Chief Minister Joseph Vijay has reshuffled IAS officers in the state government, including former Chief Secretary N. Muruganandam and Finance Secretary T. Uday Chandran. The appointment of astrologer Ricky Radhan Pandit as officer on special duty and political wing secretary in the Chief Minister's office has triggered criticism from alliance partners. Congress MPs Sasikant Senthil and Jyoti Mani questioned the appointment, while CPIM State Secretary P. Shanmugam said the move went against the government's responsibility to promote scientific thinking. VCK General Secretary D. Ravi Kumar described the appointment as unacceptable in a secular government and urged reconsideration. All India NR Congress leader N. Rangasamy will be sworn in as the Chief Minister of Puducherry.

0: Satin scandal. Quoting the Petroleum Minister Hardeep Singh Puri, the Hindu hints at fuel price hike as oil marketing companies mounting losses cause concern. PM cuts convoy, government departments to adopt austerity measures, reports the Times of India. Under the headline, In a Shifting World Order, Five Principles Should Guide India's Diplomacy, notes an editorial in the Indian Express, adding, In foreign policy, there is no substitute for nurturing trusted partnerships, even while seeking new opportunities. Iran's Arakchi, Russia's Lavrov, to be in Delhi for BRICS huddle, reports the Indian Express. The Economic Times, noting the war impact on growth and current accounts, cites PMO stitching a plan to boost foreign fund flow with steps to ease FEMA rules. A headline in the Tribune writes early monsoon likely, Andaman Sea may witness onset by May 16. And finally, a trailblazing first in 145 years at the prestigious institution St. Stephen's College, ready for its first ever woman principal, writes the Pioneer. And with that, it's back to you, Anuja.
1: Thank you, Shagun. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Political activities in Tamil Nadu turn hectic ahead of C. Joseph Vijay-led TVK government's floor test today. All India NR Congress leader N. Rangasamy to take oath as Chief Minister of Puducherry today. Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Delhi governments implement measures for fuel consumption following Prime Minister Narendra Modi's austerity appeal. Centre increases import duty on gold and other precious metals. IMD predicts early arrival of monsoon this year. And in IPL cricket, Gujarat Titans beat Sunrisers Hyderabad by 82 runs in Ahmedabad. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। झारखंड हाई कोर्ट ने गुमला से लापता बच्ची मामले में लापरवाही पर जताई नाराजगी। वर्ष 2018 से अब तक तैनात रहे सभी छह एसपी और जांच अधिकारियों को 9 जून को किया तलब। रांची में सतत खनन पर राष्ट्रीय संगोष्ठी संपन्न। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने वर्ष 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य के लिए ग्रीन एनर्जी पर दिया जोर। कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे का आज धनबाद दौरा। बीसीसीएल और जेआरडीए के अधिकारियों के साथ करेंगे उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। रांची सहित राज्य के कई हिस्सों में आंधी और वज्रपात से भारी तबाही। रामगढ़ और हजारीबाग में वज्रपात से 31 मवेशियों की मौत। 15 मई को 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। और झारखंड के डेविड मुंडा का भारतीय सीनियर पुरुष रग्बी टीम में चयन। उज्बेकिस्तान में होने वाली सेंट्रल एंड साउथ एशिया चैंपियनशिप में देश का करेंगे प्रतिनिधित्व। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड हाई कोर्ट ने गुमला से 2018 में लापता बच्ची के मामले में पुलिस पर गंभीर सवाल उठाए हैं। अदालत ने मामले की धीमी जांच पर कड़ी नाराजगी जताते हुए वर्ष 2018 से अब तक जिला में तैनात रहे सभी छह एसपी और छह जांच अधिकारियों को 9 जून को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में तलब किया है। कोर्ट ने चेतावनी दी है कि यदि पुलिस बच्ची को ढूंढने में विफल रहती है तो जांच सीबीआई को सौंपी जा सकती है। रांची के आईआईसीएम में विज्ञान भारती द्वारा आयोजित सतत खनन और पारिस्थितिकी बहाली पर राष्ट्रीय संगोष्ठी संपन्न हो गई। समापन समारोह में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने वर्ष 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने के लिए झारखंड को कोल इकोनॉमी से ग्रीन एनर्जी इकोनॉमी की ओर ले जाने की आवश्यकता पर बल दिया। पश्चिम एशिया संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक किफायत बरतने की अपील का गिरिडीह में व्यापक स्वागत हुआ है। स्थानीय महिलाओं, डॉक्टरों और महिला उद्यमियों ने देश हित में अपनी विदेश यात्राएं स्थगित कर दी हैं। वहीं लोगों ने सोना न खरीदने, खाद्य तेल और डीजल पेट्रोल की खपत कम करने का संकल्प लिया है।
3: मोदी सरकार ने अपील किया है कि हम लोग कम से कम पेट्रोल डीजल का उपयोग करें। और अभी जहां मैं जॉब कर रही हूं वहां से काफ़ी डिस्टेंस है हमारा 2 किलोमीटर। पहले स्कूटी से आती थी बट अभी मैं वॉक करके ही आती हूं, तो इससे मेरा सेहत में भी इफेक्ट पड़ा है। एंड मैं आम लोगों से भी अपील करूंगी कि वो भी पेट्रोल एंड डीजल का कम से कम उपयोग करें।
2: झारखंड मुक्ति मोर्चा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुला पत्र भेजकर देश की आर्थिक स्थिति पर चिंता जताई है। पार्टी महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने पत्र में 9 प्रमुख मांगे रखी हैं, जिसमें प्रधानमंत्री से 1 वर्ष तक विदेशी यात्राएं, चुनावी रैलियां और रोड शो स्थगित करने तथा कॉरपोरेट कर्ज माफी पर रोक

0: राष्ट्र हित में कहा, आज इस प्रकार से संकट पर वैसी घड़ी में उन्होंने कहा है कि बेवजह आप गाड़ी लेके इधर उधर मत घूमिए, सोना मत खरीदिए। 2013 में कैसे उस समय के वित्त मंत्री चिदंबरम ने कहा था कि सोना मत खरीदिए।
1: कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे आज दोपहर बाद धनबाद पहुंच रहे हैं। वे जिला प्रशासन, बीसीसीएल और जेआरडीए के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे। इसके अलावा वे बैलगढ़िया टाउनशिप का दौरा कर विकास योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और परिसंपत्ति वितरण करेंगे। उत्तरी छोटा नागपुर के डीआईजी अंजनी कुमार झा ने हजारीबाग एसपी कार्यालय में कानून व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। उन्होंने मादक पदार्थों की तस्करी, संगठित अपराध और गुमशुदगी के लंबित मामलों पर सख्त रुख अपनाते हुए अपराधियों के खिलाफ सीसीए के तहत कार्रवाई करने और गुंडा पंजी में नाम दर्ज करने का निर्देश दिया। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने गिरिडीह में कानून व्यवस्था को लेकर हेमंत सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने डीजीपी तदाशा मिश्रा और पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता की नियुक्तियों को नियमों के खिलाफ बताते हुए सूबे की बदतर कानून व्यवस्था के लिए सीधे मुख्यमंत्री को जिम्मेदार ठहराया।
2: लॉ एंड ऑर्डर झारखंड में बद से बदतर और इस स्थिति तक लाने के लिए राज्य सरकार और राज्य के मुख्यमंत्री जिम्मेदार। तो जहां इस प्रकार की करप्ट ऑफिसर को सीनियर पोस्ट पर सरकार बैठा के रखे तो अच्छे अफसरों को तो मनोबल गिरेगा, अगर जिला में पदस्थापित करेंगे तो लूट तो मचेगी।
1: सीआरपीएफ के स्पेशल डीजी दीपक कुमार ने गढ़वा स्थित पूर्व नक्सल प्रभावित बूढ़ा पहाड़ का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने ग्रामीणों से मिलकर उनका हालचाल जाना और जवानों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि जहां सीआरपीएफ है वहां विजय निश्चित है।
3: तो जहाँ जहाँ हमारी फोर्स तैनात है वहाँ जाके फोर्स को देखते हैं किस तरह से कार्य कर रही है और क्या उनको दिक्कतें कुछ तो नहीं है। हमारे जवान पूरे तरह से हौसले में है, किसी भी तरह की कमी नहीं है। आप देखिए जो भी ऑपरेशन हो रहा है उसमें सफलता प्राप्त कर रहा है।
1: राज्य की कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने रांची में छात्राओं के साथ लोकप्रिय नागपुरी फिल्म सेरिंग देखी। फिल्म देखने के बाद मंत्री ने स्थानीय कला संस्कृति को बड़े पर्दे पर जीवंत करने के लिए कलाकारों की सराहना की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार क्षेत्रीय भाषाओं और लोक कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
4: पॉलिसी में भी सरकार काम कर रही है ऐसे कलाकारों को और आगे बढ़ावा देने के लिए, और हमारे झारखंड में कलाकारों में छुपी हुई बहुत हुनर है और अब जो नई जनरेशन आ रही है वो नए स्टाइल में नए आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मूवी प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो मुझे लगता है निश्चित रूप से एक बहुत वृहद मार्केट है ऐसे मूवीज के लिए भी।
1: और अब मौसम का हाल। मौसम विभाग ने आज पलामू प्रमंडल और कुछ अन्य जिलों को छोड़ रांची सहित अधिकांश झारखंड में येलो अलर्ट जारी किया है, जहां 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं और बारिश हो सकती है। वहीं 15 मई को रांची, धनबाद और संताल परगना सहित कई जिलों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इससे पहले कल राज्य में आए भीषण चक्रवाती तूफान ने भारी तबाही मचाई। रांची में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी से कई इलाकों में पेड़ और होर्डिंग्स गिर गए, जिससे आधा दर्जन टोटो क्षतिग्रस्त हो गए। हजारीबाग, बोकारो और जमशेदपुर में झमाझम बारिश हुई, जबकि खूंटी में ओलावृष्टि और रामगढ़ व हजारीबाग में वज्रपात से 31 मवेशियों की मौत हो गई। झारखंड के स्टार रग्बी खिलाड़ी डेविड मुंडा का चयन भारतीय सीनियर पुरुष रग्बी टीम में हुआ है। वे 16 और 17 मई को उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित होने वाले सेंट्रल एंड साउथ एशिया सीनियर पुरुष रग्बी चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में खेलने के लिए चुनी गई भारतीय टीम में जगह बनाकर उन्होंने राज्य का नाम रोशन किया है। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने नीट परीक्षा

रद्द होने की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, नीट रद्द, 22 लाख अभ्यर्थियों से खिलवाड़। प्रभात खबर की सुर्खी है, अदिति का पता नहीं, नाले की झाड़ियों में मिला मांस, होगी फॉरेंसिक जांच। हिंदुस्तान के शब्द हैं, PVUNL की दूसरी यूनिट से उत्पादन शुरू। दैनिक जागरण के अनुसार, जिस लापता बच्ची का शव समझ पोस्टमार्टम को भेजा, निकली पशु की हड्डी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड हाईकोर्ट ने गुमला से लापता बच्ची मामले में लापरवाही पर जताई नाराजगी। वर्ष 2018 से अब तक तैनात रहे सभी 6 एसपी और जांच अधिकारियों को 9 जून को किया तलब। रांची में सतत खनन पर राष्ट्रीय संगोष्ठी संपन्न। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने वर्ष 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य के लिए ग्रीन एनर्जी पर दिया जोर। कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे का आज धनबाद दौरा। बीसीसीएल और जेआरडीए के अधिकारियों के साथ करेंगे उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। रांची सहित राज्य के कई हिस्सों में आंधी और वज्रपात से भारी तबाही। रामगढ़ और हजारीबाग में वज्रपात से 31 मवेशियों की मौत। 15 मई को 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। और झारखंड के डेविड मुंडा का भारतीय सीनियर पुरुष रग्बी टीम में चयन। उज्बेकिस्तान में होने वाली सेंट्रल एंड साउथ एशिया चैंपियनशिप में देश का करेंगे प्रतिनिधित्व। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रांची से। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोता, हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय प्रातः के 8:43 हो रहे हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम माटी की महक। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में आइए आनंद लेते हैं बांग्ला गीतों का। कलाकार हैं कुमार सानू।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम माटी की महक। इस कार्यक्रम में आज आप आनंद ले रहे थे। बांग्ला गीतों का कलाकार थे कुमार सानू। श्रोता, हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर, और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा।

नमस्कार श्रोताओं, विविधा कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूं आपका रेडियो दोस्त उदय पान। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत आइए करते हैं एक विशेष जानकारी के साथ। श्रोताओं, मौसम विभाग का ऐसा अनुमान है कि इस वर्ष मानसून समय से पहले आ सकता है, यानी वर्षा ऋतु समय से पहले आ सकती है। वैसे भी आजकल लगभग प्रतिदिन शाम में बारिश कम या ज़्यादा हो ही रही है। श्रोताओं, वर्षा ऋतु जिसे मानसून भी कहा जाता है, साल का वो खास समय होता है जो लंबी गर्मी के बाद ताजगी, उम्मीद और राहत की लहर लेकर आता है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून आमतौर पर जून में शुरू होता है और सितंबर तक रहता है। श्रोताओं, ये ऋतु सिर्फ बारिश की ही नहीं बल्कि प्रकृति के खिलने, किसानों के मुस्कुराने और बच्चों के आसमान से गिरने वाली हर बूंद का जश्न मनाने का भी है। श्रोताओं, वर्षा ऋतु पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये झीलों, तालाबों और नदियों जैसे जल निकायों को भर देती है जो पेयजल, कृषि और बिजली उत्पादन के लिए आवश्यक है। पेड़ पौधे अपना रंग और जीवन पुनः प्राप्त कर लेते हैं। शुष्क धूल भरी हवा ठंडी और स्वच्छ हो जाती है। यह ऋतु भारत में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जहां जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा कृषि पर निर्भर है। श्रोताओं, वर्षा जल चावल यानी धान, गन्ना, मक्का और कपास जैसी फसलों की खेती में सहायक होता है। अच्छी वर्षा से खाद्य सुरक्षा और आर्थिक विकास होता है, जबकि कमज़ोर वर्षा से सूखा और कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं। श्रोताओं, बरसाती मौसम का जो है, श्रोताओं, बच्चों को बरसाती मौसम बहुत पसंद होता है। ये चमकीले रेनकोट पहनने, पानी के गड्ढों में कूदने और हाथ से बनी कागज़

की नावों को पानी में बहाने का समय होता है। परिवार जो है गर्मा गर्म पकौड़े, चाय और घर के अंदर गर्मजोशी भरी बातचीत के साथ इस मौसम का आनंद लेते हैं। कई स्कूल इस मौसम को चित्रकला प्रतियोगिताओं, लेखन प्रतियोगिताओं और बरसाती दिनों पर कविता पाठ के लिए एक विशेष रूप में उपयोग करते हैं। श्रोताओं, बरसात के दिन न केवल मज़ेदार होते हैं बल्कि ये आपसी मेलजोल और रचनात्मकता को भी जो है उसके अवसर उत्पन्न करते हैं। श्रोताओं, बरसात का जो मौसम होता है वो मनमोहक होता है। धुंधला आसमान, ठंडी हवाएं और बारिश की लयबद्ध आवाज़ एक शांत और सुकून भरा वातावरण बनाती है। गीली मिट्टी की महक, जिसे पेट्रिकोर कहा जाता है, ताजगी भरी होती है। पेड़ पौधे अधिक साफ सुथरे और हरे भरे दिखाई देते हैं और फूल चमकीले रंगों में खिलते हैं। हल्की बारिश के बाद कभी कभी इंद्रधनुष दिखाई देता है जो देखने वालों को आनंदित करता है। श्रोताओं, कई फायदों के बावजूद बरसाती मौसम के साथ कुछ चुनौतियां और नुकसान भी आते हैं। शहरी क्षेत्रों में भारी बारिश से जल भराव, यातायात जाम और सड़कों पर गड्ढे हो जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ से घर, खेत और सड़कें नष्ट हो सकती हैं। ठहरा हुआ पानी मच्छरों के प्रजनन का केंद्र बन जाता है, जिससे डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां फैलती हैं। बिजली गिरने और तूफान से बिजली की लाइनें क्षतिग्रस्त हो सकती हैं और सुरक्षा जोखिम पैदा हो सकते हैं। श्रोताओं, इन समस्याओं से निपटने के लिए सावधानी बरतना महत्वपूर्ण है। उचित बारिश से बचाव के उपकरण पहनना, बाढ़ संभावित क्षेत्रों से बचना, आसपास को साफ रखना और तूफान के दौरान घर के अंदर रहना कुछ बुनियादी सुरक्षा उपाय हैं। श्रोताओं, वर्षा ऋतु प्रकृति का एक अनमोल उपहार है। ये प्यासी धरती को पानी, भूखों को भोजन और बच्चों व बड़ों के दिलों में खुशी लाती है। हालांकि हमें इससे जुड़ी चुनौतियों से सावधान रहना चाहिए, लेकिन हमें इसकी सुंदरता और महत्व को भी समझना चाहिए। इस ऋतु के बारे में श्रोताओं काफ़ी लिखा गया है और इससे जो है काफ़ी इंजॉय करना चाहिए। तो श्रोताओं, आइए इसी बात पर सुनते हैं एक वर्षा ऋतु से जुड़ा गीत।

0: श्रोताओं, उम्मीद है ये गीत आपको पसंद आया होगा। और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं ये जरूरी संदेश।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर

श्रोताओं, इस संदेश के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम विविधा में। श्रोताओं, हम सभी को अच्छी कहानियाँ सुनना पसंद है, और अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों को तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। श्रोताओं, आज पुण्यतिथि है प्रसिद्ध कहानीकार आर के नारायण जी की, तो इस अवसर पर आइए जानते हैं इनके जीवन से जुड़ी बातें। श्रोताओं, आर के नारायण जी का जन्म 10 अक्टूबर 1906 को रासीपुरम चेन्नई में हुआ था। उनका पूरा नाम रासीपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर नारायण स्वामी था। इनके पिता का नाम कृष्णा स्वामी था, जो स्कूल में प्रधान अध्यापक थे। आर के नारायण जी को उनके परिवार में प्यार से कुंजप्पा नाम से पुकारा जाता था। अपने 9 भाई बहनों में वे तीसरे नंबर के थे। श्रोताओं, उनकी माता की बीमारी के कारण आर के नारायण जी की शिक्षा चेन्नई में अपनी दादी के पास हुई। हाई स्कूल तक की पढ़ाई उन्होंने चेन्नई में की, बाद में वे मैसूर आ गए, और जहां श्रोताओं कॉलेज की शिक्षा उन्होंने पूरी की, और उसके बाद कुछ समय वे अपने पिता के नक्शे कदम पर चलकर शिक्षक भी रहे, लेकिन लेखन में दिलचस्पी के चलते उन्होंने शिक्षण कार्य छोड़कर लेखन को ही अपना करियर बनाया। श्रोताओं, पढ़ने लिखने का शौक आर के नारायण जी को बचपन से ही था। अपने पिता के स्कूल की लाइब्रेरी से वे बड़े बड़े लेखकों की पुस्तकें लेकर पढ़ा करते थे। आर के नारायण जी ने अपनी रचनाएं भले ही अंग्रेजी भाषा में लिखी हों, किंतु उनका साहित्य हिंदी के पाठकों के बीच उतना ही लोकप्रिय रहा है जितना अंग्रेजी पाठकों के बीच। लेखन की शुरुआत आर के नारायण जी ने छोटी कहानियों से की। उनकी ये कहानियाँ समाचार पत्रों में छपा करती थी। श्रोताओं, आर के नारायण जी का मानना था कि कहानियाँ छोटी ही लिखी जानी चाहिए। श्रोताओं, मालगुड़ी डेज तो जो कि प्रसिद्ध कहानियाँ हैं, उसमें आर के नारायण जी की लोकप्रिय चर्चित कृति रही है, जिसने उन्हें घर घर में लोकप्रिय बना दिया था। इसके अलावा 60 के दशक में उनके लिखे उपन्यास द गाइड पर एक हिंदी फिल्म का निर्माण हुआ, जो उस समय की सर्वश्रेष्ठ चर्चित क्लासिक फिल्म रही, जिसमें देवानंद वहीदा रहमान जैसे उत्कृष्ट कलाकारों ने काम किया था। श्रोताओं, आर के नारायण जी का पहला उपन्यास स्वामी एंड फ्रेंड्स था, जो स्कूली लड़कों के एक ग्रुप की एक्टिविटीज़ पर आधारित था। यह उपन्यास जब आर के नारायण के एक दोस्त के जरिए ग्राहम ग्रीन, जो अंग्रेजी के एक महान लेखक रहे हैं, तक पहुंचा, तो उन्हें ये बहुत पसंद आया और इसकी प्रकाशन की जिम्मेदारी भी उन्होंने ली। सन 1935 में आर के नारायण जी ये उपन्यास जो है उनका प्रकाशित हुआ। इसके बाद में ग्राहम ग्रीन आर के नारायण के दोस्त बन गए। 1937 में आर के नारायण जी ने अपने कॉलेज के अनुभव पर द बैचलर ऑफ आर्ट्स नाम से उपन्यास लिखा,

जिसे भी ग्राहम ग्रीन ने प्रकाशित कराया। सन 1938 में द डार्क रूम नाम से आर के नारायण जी का तीसरा उपन्यास प्रकाशित हुआ, जिसमें उन्होंने वैवाहिक जीवन के भावनात्मक पहलू का बहुत ही सटीक विश्लेषण किया था। ये सभी आर के नारायण जी श्रोताओं, ये सभी आर के लक्ष्मण के जो है प्रसिद्ध उपन्यास रहे। श्रोताओं, कर्नाटक में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आर के नारायण जी ने 1980 में द एमरल्ड रूट पुस्तक लिखी। आर के नारायण जी को उनकी कृतियों के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। द गाइड उपन्यास के लिए 1958 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। सन 1964 में वे पद्म भूषण से और सन 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए। वे रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर के फेलो और अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स के मानद सदस्य भी रहे हैं। रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर द्वारा 1980 में उन्हें A.C. बेंसन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1989 में आर के नारायण राज्यसभा के लिए नॉमिनेट हुए, जहां रहकर उन्होंने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए प्रशंसनीय कार्य किए। श्रोताओं, 13 मई 2001 को 94 साल की उम्र में आर के नारायण इस दुनिया को अलविदा कह गए। द ग्रैंड मदर्स टेल आर के नारायण जी का अंतिम उपन्यास था, जो सन 1992 में प्रकाशित हुआ। आज भले ही आर के नारायण हमारे बीच नहीं है, पर उनकी महान कृतियाँ द इंग्लिश टीचर, वेटिंग फॉर द महात्मा, द गाइड, द मैन ईटर ऑफ मालगुड़ी, द वेंडर ऑफ स्वीट्स, अ टाइगर फॉर मालगुड़ी इत्यादि के जरिए हम सबके बीच वे सदैव जीवित रहेंगे। और अब सुनते हैं एक गीत।

0: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
1: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
2: आले नगे नेहर में बोले नुकान परिस्थिति रे बोले सब उड़ा वापस को रुड़ना धरा रे नका गे आम बोले रुड़ तबन में आले परिवार से मतलब पूरे ये ना
3: मोर नाम मंगलो राय को गांव बारीगड़ा आड़की थाना तो जंगल गया है तो आउ का कहाँ मना है वो लोग आउ का वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम रे सुने पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखन तो तुम ठीक हो है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
4: नाम है रंगबला देवी कहाँ बारे हत्तो तो कहाँ तो घर आए ने हमरे घर है बहुत दुख के बात है तो अखन बात हो जा है
5: मुकुल बुरम सिंह तमसाय अनिता तमसाय भरूपा सेना करना ऐसे दुकूर मिनाइए जापा मैं रियल तपा मैं रियल वाह बेटा मिका
6: अन्य मतलब बुंबई कोड़ा पटन

0: ᱠᱟᱹᱦᱩᱱ ᱫᱚ ᱠᱚᱫᱚᱢᱚᱱᱤ ᱠᱚᱲᱟ ᱩᱰᱟᱹᱣ ᱯᱟᱴᱟᱱ ᱯᱟᱴᱟᱱ ᱩᱛᱩᱢ ᱠᱤᱛᱩᱢᱟᱹᱭ ᱠᱚᱲᱟ ᱱᱤᱱᱤᱢᱤᱞ ᱩᱲᱤ ᱩᱲᱤ ᱱᱮ ᱵᱟᱜᱮᱭᱟ ᱛᱩᱫ ᱠᱤᱧ ᱫᱩᱱᱟ ᱥᱤ ᱟᱨ ᱯᱤ ᱠᱚᱞᱚ ᱯᱩᱞᱤᱥ ᱠᱚᱞᱚ ᱮᱢᱱᱤ ᱞᱟᱲᱟᱭ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱛᱟᱱᱟ ᱵᱩᱨᱩ ᱨᱮᱱ ᱜᱩᱭᱟᱱ ᱫᱚ ᱡᱟᱭ ᱛᱮᱨᱮ ᱠᱟᱠᱟ ᱜᱩᱝ ᱦᱚ ᱩᱱᱤ ᱵᱚᱠᱚ ᱠᱚ ᱠᱟᱠᱚ ᱱᱮᱞ ᱢᱤᱭᱟ
1: ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱢᱩᱱᱤᱥᱩᱨᱮᱱ ᱯᱮ ᱛᱮ ᱟᱯᱤᱞᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱞᱤᱧ ᱥᱮ ᱡᱟ ᱦᱩᱨᱟ ᱨᱮ ᱢᱤᱱᱟᱹᱭ ᱨᱚ ᱡᱤᱛᱟ ᱦᱩᱨᱟ ᱨᱮ ᱢᱤᱱᱟᱹᱭ ᱨᱚ ᱛᱚ ᱵᱩᱜᱤᱱ ᱦᱩᱨᱟ ᱛᱮ ᱥᱮᱥᱮᱱ ᱠᱟᱜ ᱮ ᱩᱣᱟᱜᱮ ᱵᱤᱴᱟ ᱦᱩᱨᱟ ᱮᱱᱠᱟ ᱟᱞᱮ ᱟᱭᱟ ᱱᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮ ᱤᱱᱟᱹᱢ ᱟᱯᱤᱞᱮ ᱛᱟᱱᱟ
2: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख दो बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
3: श्रोताओं, इसी संदेश के साथ ही हमारा आज का विविधा कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविधा। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर, और अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस रंजन। श्रोताओं, फिल्म संगीत के कार्यक्रम रस रंजन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम और सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत। अभिजीत, अलका याग्निक और साथियों की आवाज़ों में, फिल्म का नाम है यस बॉस।

0: का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 870-001-4242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 870-001-4242।
2: श्रोताओं, अब ये सुनते हैं फिल्म वास्तव का गीत सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-doj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: और अब श्रोताओं आइए सुनते हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में फिल्म दिल जले का ये गीत।

0: श्रोताओं, ये था फिल्म दिल जले का गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में।
1: Hey girls,
2: hi, congratulations.
1: आज तो पार्टी चाहिए।
2: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
3: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
1: पिज्जा पार्टी, ये। चल अपना कार्ड और पिन दे।
3: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
3: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: अरे रे, सावधानी हटी तो जेब कट।
5: मेरी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है बैंक में रजिस्टर्ड।
4: तो
5: डिजिटल पेमेंट में धोखा हुआ कभी तो अलर्ट्स मिलेंगे तभी के तभी।
4: पर पैसे तो गए।
5: नहीं, पैसे नहीं गए। नहीं जोखी लापरवाही तो नहीं करने पड़ेंगे भरपाई। और सुनिए, समय से जोखी शिकायत मिलेंगे आपको रिफंड सही सलामत। अब यह कहता है कि
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: और अब श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं अलका याग्निक की आवाज में फिल्म साजन का ये गीत है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस रंजन। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर, और अब प्रस्तुत है एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: जल संरक्षण के सारे काम सुख समृद्धि के रचे आयाम।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गर्मी के इस मौसम में आपके विचार की प्रासंगिकता और भी अधिक बढ़ जाती है। जी हाँ श्रोताओ, जल अमूल्य है, इसे बूंद बूंद बचाना हमारी जिम्मेदारी है। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
2: छत्तीसगढ़ रायपुर से नरेंद्र कुमार जाटव, संदीप जाटव, अनीता जाटव और राधिका रानी जयपुरिया जी ने लिखा है, मिठाइयों का सम्मेलन कहानी बहुत पसंद आई, आपको बधाई।
1: आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू।
2: ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में।
2: तो श्रोताओ, कल हमने चर्चा की थी गर्मी से बचने के कुछ उपायों पर।
1: जी।
2: और ये भी जाना था कि 12 बजे से 4 बजे तक खास तौर से हमें गर्मी के मौसम में बाहर क्यों नहीं निकलना चाहिए। तो अजीत जी, जरा श्रोताओं को ये भी जानकारी दे दें कि आज की चर्चा किस विषय पर होगी।
1: विमलेश जी, आज हम ये चर्चा करेंगे कि गर्मी के मौसम में हमारा खान पान कैसा होना चाहिए।
2: जी।
1: लेकिन श्रोताओं, इससे पहले कि हमारी चर्चा आगे बढ़े, एक रोचक लेकिन महत्वपूर्ण बात आपको हम बताना चाहते हैं। और वो ये कि परंपरागत धारणाओं के अनुसार गर्मी के मौसम में सबसे कठिन दिन कब आते हैं।
2: जी अजीत जी, ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि वो समय अब आने ही वाला है। आज 13 मई हो गई, बस कुछ दिन और। जी हाँ श्रोताओ, हम बात कर रहे हैं नवतपा की। उत्तर और मध्य भारत में इसका प्रभाव विशेष रूप से दिखाई पड़ता है। इन दिनों हमें अपना बहुत ही खास ध्यान रखना चाहिए। अजीत जी, नवतपा किसे कहते हैं ये तो बताइए जरा।
1: जी विमलेश जी, नवतपा का अर्थ है 9 दिनों तक तपना, यानी 9 दिनों तक भयंकर ताप।
2: जी।
1: ये वो अवधि है जब हमारे परंपरागत खगोल ज्ञान और मान्यता के अनुसार सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है, और इन दिनों में लगभग 9 दिनों तक प्रचंड गर्मी पड़ती है।
2: तो श्रोताओ, आइए अब जानते हैं कि सामान्यतः ये समय कब आता है। आमतौर पर मई महीने के अंत यानी लगभग 25 मई से जून महीने की शुरुआती यानी 2 जून तक। जलवायु परिवर्तन के कारण ये समय थोड़ा इधर उधर हो सकता है। इस समय विशेषकर उत्तर भारत में लू चलती है और आसमान साफ होता है, इसलिए छाया की भी गुंजाइश नहीं होती है।
1: जी, बता दें श्रोताओं कि यह प्राचीन अनुभवों के आधार पर परंपरागत मान्यता है। वैसे नवतपे में गर्मी बड़ी खतरनाक हो जाती है, लेकिन इसे वरदान भी माना गया है। क्यों?
2: नवतपे में जितनी गर्मी पड़ेगी, माना जाता है कि मानसून उतना ही अच्छा आएगा।
1: जी।
2: आइए अब करते हैं चर्चा गर्मी के मौसम में खान पान की।
1: तो विमलेश जी, आपसे ही शुरुआत करें।
2: जी अजीत जी, श्रोताओ, गर्मी के मौसम में खास ध्यान ये रखना चाहिए कि हमारा आहार पौष्टिक लेकिन हल्का हो।
1: और हाँ, इस मौसम में नींबू पानी, छाछ, दही जैसे प्राकृतिक

0: पदों का अधिक से अधिक उपयोग करें।
1: सबसे जरूरी बात तो ये है श्रोताओं कि खाली पेट घर से न निकलें।
0: जी
1: अब बात करते हैं मौसमी फलों के बारे में। अजीत जी, मुझे लगता है कि प्रकृति को सचमुच हमारी बहुत चिंता रहती है।
0: जी बिल्कुल, इसलिए तो प्रकृति को माँ भी कहा गया है।
1: जी सही कहा, जैसे माता को हमारी चिंता रहती है वैसे ही प्रकृति भी हमारी चिंता करती है। श्रोताओं जरा सोचिए ना, गर्मी के मौसम में ही खरबूजे तरबूज जैसे फल प्रकृति क्यों उगाती है, खीरे और ककड़ियाँ क्यों उगाती है, आम और दूसरे मौसमी फल क्यों होते हैं, ये फल सर्दियों में क्यों नहीं उगते?
0: विमलेश जी, आमतौर पर लोग कहेंगे कि इसमें भला सोचने की क्या बात है, ये गर्मी के फल हैं तो गर्मी में तो होंगे ही।
1: जी अजीत जी, आम लोग ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ फल जैसे खरबूज तरबूज ककड़ी और खीरे में 80 से 90% तक पानी होता है।
0: जी
1: इन्हें खाने से हमारे शरीर में पानी की मात्रा बनी रहती है। इतनी अधिक पानी की मात्रा होने के कारण ये पचने में भी आसान होते हैं।
0: जी विमलेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा, प्रकृति को सचमुच हमारी चिंता रहती है, तभी तो वो ऐसे फल उगाती है जिनसे कि हम स्वस्थ रहें। हमें प्रकृति माता को जरूर धन्यवाद देना चाहिए।
1: जी
0: लेकिन दुखद है कि प्रकृति हमारे स्वास्थ्य की जितनी चिंता करती है ना, उतनी प्रकृति के स्वास्थ्य की चिंता हम नहीं करते।
1: तो श्रोताओं कैसी लगी हमारी ये जानकारी, जरूर बताइएगा। और अब सुनते हैं आज का प्रश्न।
0: तो आज का प्रश्न है, प्रकृति को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: प्रकृति को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है?
0: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है, और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
1: इंस्टा फेसबुक एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, शीर्षक है गर्मी।
1: ये कार्यक्रम गर्मी के मौसम की जानकारी देते हुए बताता है कि गर्मी के मौसम में हमें अपना ध्यान किस तरह से रखना चाहिए और गर्मी के मौसम में पैदा होने वाली साग सब्जियाँ और फल कौन कौन से होते हैं जिनका हमें भरपूर सेवन करना चाहिए।
2: बहुत पुरानी बात है, दो बहनें थी, सोना और रूपा। दोनों अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहती थी। गर्मी का मौसम था, दोनों बाग में खेल रही थी।
3: अकर बकर बम्बे वो 80-90 पूरे 100 100 मिला का धागा चोर निकल के भागा।
4: अब तेरी बारी है, तेरी
5: तुम्हारी बारी, तुम सुना, तुम सुना।
4: अच्छा ठीक है, मुझे तो कहानी आती है,
5: तो कहानी सुना दो भाई।
4: अच्छा ठीक है, गर्मी का दिन था, एक कौवा प्यासा था, घड़े में पानी थोड़ा था, कौवा लाया कंकर, घड़े में डाले कंकर, पानी आया ऊपर, कौवे ने पिया पानी, खत्म हुई कहानी।
5: अच्छी कहानी थी। भाई कौवे ने तो पानी पी लिया, पर अब मुझे बहुत प्यास लग रही है।
4: हाँ प्यास तो मुझे भी लग रही है। वो सामने घड़ा रखा है, चलो वहाँ चलकर देखते हैं।
5: हाँ चलो चलो, वहाँ पे पानी
4: चलो,
5: होगा।
4: चलते हैं।
2: सोना और रूपा ने घड़े का ढक्कन हटाकर देखा तो उसमें पानी था। दोनों बहुत खुश हुई। रूपा पीने के लिए पानी निकाल ही रही थी कि तभी एक आवाज आई।
6: कौन है
5: दीदी?
6: कौन है
5: दीदी?
4: अम्मा जी, मैं हूँ सोना और ये है मेरी बहन रूपा।
5: अम्मा जी, हमें बहुत प्यास लगी है,
4: हम थोड़ा पानी पी लें?
6: हाँ हाँ, क्यों नहीं, पी लो पानी। बच्चों पानी पी लो, ढक्कन ठीक से लगा देना। पी लिया पानी? प्यास बुझी?
5: हाँ, हाँ पर ठंडा पानी था।
4: लेकिन अम्मा, आप कौन है?
6: मैं एक मौसम हूँ। मेरे आने से तुम्हें बहुत प्यास लगती है और बहुत गर्मी भी लगती है, पर मैं अपने साथ तरह तरह के फल भी लाती हूँ, जैसे खरबूजा, तरबूज,

0: खीरा, ककड़ी और भी बहुत सारी चीजें। अच्छा भला बताओ तो मैं कौन हूँ?
1: कौन है आप?
0: नहीं समझे?
1: नहीं।
0: अच्छा तो फिर ये पहेली सुनो।

0: खा जलते हैं
1: और सारा दिन पानी भी पीते हैं।
2: ऐसा मौसम।
1: ओह
0: अब गर्मी अम्मा है।
3: बिल्कुल ठीक समझी। मैं गर्मी यानी गर्मी का मौसम ही तो हूँ।
0: गर्मी अम्मा आप कब आती हैं? पता ही नहीं चलता।
3: सीधी सी बात है, सर्दी जब जाने की तैयारी करती है गर्म कपड़ों में तुम्हें गर्मी लगती है, तो बस समझ लो कि मेरा मौसम शुरू यानी यानी
1: हाँ जब होली आती है तो गर्मी भी तो लगनी
3: शुरू हो जाती है। हाँ
0: अम्मा मुझे तो धूप में बहुत गर्मी लग रही है।
3: भाई मेरे मौसम में गर्मी तो लगती है। चलो ऐसा करते हैं, उस पेड़ की छाया में बैठते हैं, ठीक है?
1: हाँ चलो अम्मा चलते हैं।
0: चलो
4: सोना और रूपा गर्मी अम्मा के साथ जाकर पेड़ की छाया में बैठ गईं। इतने में पेड़ से दो आम गिरे।
1: अरे ये क्या गिरा?
3: मैं देखती हूँ, तुम लोग यहीं बैठो।
4: वहां दो आम गिरे थे, बच्चे भी दो और आम भी दो, लेकिन अम्मा ने वो आम छिपा लिए।
0: अम्मा आप क्या छुपा रही हैं?
1: अम्मा ये आपके हाथ में क्या है?
3: मेरे ही मौसम का एक फल है।
1: दिखाओ ना।
3: अम्मा दे दो। दूंगी तुम्हें, दूंगी, पर पहले तुम्हें इसका नाम बताना पड़ेगा।
1: इसका नाम
3: सोचो, मेरे मौसम का सबसे स्वादिष्ट फल जो बच्चों को बड़ों को सबको बहुत पसंद है, खट्टा मीठा रसदार फल। सोचो।
1: स्वाद है,
0: पसंद है,
1: सबसे अच्छा भी है।
0: कौन सा फल है?
1: कौन सा फल
3: नहीं समझी?
1: नहीं।
3: अच्छा तो फिर सुनो।

0: समझदार हो।
1: आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम कुल्फी वाला, बर्फ का गोला ले लो, चुस्की ले लो, आइसक्रीम।
0: बच्चों मेरे मौसम में तुम लोग खूब आइसक्रीम खाते हो, बर्फ के गोले खाते हो, है ना, कुल्फी भी खाते हो ना। अरे तुम्हारा बस चले तो तुम दिन भर आइसक्रीम ही खाते रहो, है ना?
2: अरे कोई खाने को दे तब ना।

0: अरे लगता है बहुत तेज आंधी आने वाली है, तुम लोग जल्दी से घर चले जाओ। और हाँ, ये आम तो लेती जाओ।
1: लाओ अम्मा,
2: लाओ अम्मा।
0: लो
2: गर्मी अम्मा। हाँ? आप बहुत अच्छी हैं।
0: तुम्हें मीठे मीठे आम जो खिलाती हूँ।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम गर्मी, और श्रोताओं आइए अब चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। और हमारा अगला कार्यक्रम है कारगिल की शौर्य गाथा।
4: ये कार्यक्रम कारगिल युद्ध से ठीक पहले की परिस्थितियों की जानकारी देता है और वर्णन करता है कि कारगिल युद्ध के दौरान विपरीत और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के होते हुए भी किस प्रकार से भारतीय सेना ने अपार धैर्य और शौर्य का प्रदर्शन करते हुए विजय की पताका फहराई।
5: मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। सुप्रसिद्ध कवि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखी गई ये पंक्तियां कितनी जीवंतता से उन पराक्रमी युद्ध सैन्य महानायकों के प्रति असीम श्रद्धा की भावनाओं को जगाती है।
6: विजयश्री उन्हीं के लिए निर्धारित होती है जो कठिन और विपरीत परिस्थितियों में भी अदम्य साहस और दृढ़ निश्चय के साथ अविचलित और अडिग खड़े रहते हैं। आज का कार्यक्रम हम श्रद्धा सहित समर्पित करते हैं उन पराक्रमी योद्धाओं को जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी।
5: जी हाँ, आज हम बात करेंगे कारगिल युद्ध की, जो नियंत्रण रेखा के पास जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह ऐसी पहली लड़ाई थी जिसे संचार माध्यमों के द्वारा निरंतर प्रसारित किया गया, और परिणाम स्वरूप इस युद्ध का आंखों देखा हाल भारत की जनता के घर घर तक पहुंचाया गया।
7: Bofors gun directly targeting the top of Tiger Hill, the prelude to the final assault.
8: We just had a shell land very close to us. I doubt if you were able to see anything.
6: देश के विभिन्न मीडिया चैनलों के माध्यम से पत्रकारों ने इस युद्ध का जीवंत रिपोर्टाज प्रस्तुत किया, जिसके कारण जनता द्वारा सेना को अपार समर्थन मिला और फलस्वरूप भारतीय सेना का मनोबल और अधिक बढ़ा, जिसने इतिहास रच दिया। एक ऐसा स्वर्णिम अध्याय जिसे आने वाली पीढ़ियां गर्व के साथ याद करेंगी। कारगिल का युद्ध 3 मई से 26 जुलाई 1999 तक लड़ा गया।

0: इस युद्ध को ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है, जो मुख्य रूप से स्थल और वायु सेना द्वारा लड़ा गया। उल्लेखनीय है कि इस दौरान भारत की समुद्री सीमाओं पर भी भारतीय नौसेना ने शत्रुओं पर कड़ी निगरानी रखी।
1: दिन था 6 मई 1999 का। समुद्र तल से 16,000 फीट की ऊंचाई पर दुर्गम बर्फीले पर्वतों के बीच एक भारतीय चौकी पर सैनिक मुस्तैदी से पहरा दे रहे थे।
2: बहुत ठंडी आज तो। वैसे ये एक ऐसी जगह है जहां लगता है कि हम दुनिया के किसी और ही कोने में हैं, है ना?
3: ठीक कहते हो तुम। अभी मई महीने में ही इतनी ठंड है तो पता नहीं सर्दियों में क्या हाल होता होगा।
2: वैसे तुम्हारी पोस्टिंग तो अभी हाल ही में हुई है ना? अरे मैंने तो यहाँ की दो सर्दियां देख ली हैं।
3: जरा उधर देखो।
2: अब किधर?
3: वहां लगता है कोई इधर ही आ रहा है।
2: कोहरा काफी घना है, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है।
3: हाँ।
2: लेकिन हाँ, इतना कह सकता हूँ

0: में कि कोई सैनिक नहीं है। उसका पहनावा तो देखो।
1: हाँ, पहनावे से तो कोई कबाइली लगता है।
0: हाँ,
1: लेकिन इधर क्यों आ रहा है?
0: हाँ,
1: कोई जासूस तो नहीं? वार्निंग दो इसे।
0: हाँ, आने दो। ए, कौन हो तुम? रुको, जाओ वहीं, रुक जाओ, रुको।
2: कौन हो तुम?
3: साहब, मैं एक चरवाहा हूँ साहब। मुझे एक बहुत जरूरी सूचना देनी है। अपने बड़े साहब से मुझे मिलवाओ।
2: क्या सूचना?
3: साहब, दुश्मनों के बारे में।
2: अच्छा, यहीं रुको। चलो, कमांडेंट साहब ने बुलाया तुम्हें।
3: नमस्कार सर, मेरा नाम ताशी नामग्याल है।
4: नमस्कार, कहो क्या कहना चाहते हो?
3: सर, हम एक चरवाया हैं।
4: आगे बताओ।
3: सर, ये 3 मई की बात है। कुछ दिनों पहले मेरा याक खो गया था। उसे खोजते हुए मैं पहाड़ों पर काफी ऊंचाई में चला गया था। एक ऊंची चट्टान पर खड़े होकर मैंने दूरबीन से नीचे देखा तो एक बड़ा अजीब सा नजारा मुझे दिखाई पड़ा।
4: क्या देखा तुमने?
3: साहब, मैंने देखा कि पठानी कपड़ों में बहुत से लोग एक जगह पर जमा है।
4: क्या?
3: उनमें बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिक भी हैं। वे बंकर खोद रहे थे और उनके पास बहुत सारे हथियार भी थे। हाँ,
4: कितने लोग रहे होंगे?
3: शायद पूरी गिनती तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, इतना पक्का है कि वो बॉर्डर के उस पार से आए हैं और बहुत ही बड़ी संख्या में जमा हो रहे हैं।
4: ये तो बड़ी जरूरी बात बताई तुमने। हो सकता है कि हमें तुम्हारी फिर से जरूरत पड़े। तुम्हारा घर कहाँ है?
3: साहब, मेरा गांव है घरकोन। ये कारगिल शहर से 60 किलोमीटर दूर बटालिक शहर के पास है।
5: तो साथियों, इस स्थानीय सजग चरवाहे की सूचना से सेना सतर्क हो गई। जब सेना ने इस बात की छानबीन की तो बात सच निकली। उन्हें पता चला कि सीमा पार से बहुत बड़ी घुसपैठ हुई है।
6: सही स्थिति का अंदाजा लगाने के लिए भारतीय सेना ने मेजर सौरभ कालिया के नेतृत्व में एक गश्ती दल भेजा, लेकिन वो दल कभी वापस ही नहीं आया। 10 जून को पाकिस्तानी सेना ने उनके बुरी तरह से क्षत विक्षत शव वापस भेजे।
5: अब इस बात में कोई संदेह नहीं था कि पाकिस्तान द्वारा बड़े पैमाने पर घुसपैठ हुई थी। सेना द्वारा गहन जांच में पता चला कि मई 1999 की शुरुआत में ही पाकिस्तानी सेना नियंत्रण रेखा पार करके मुश्कोह, द्रास, काकसर और बटालिक क्षेत्रों में लगभग 4 से 8 किलोमीटर अंदर तक घुस आई थी और पाकिस्तानी सेना के लगभग 2000 से अधिक पैदल सैनिकों और कमांडो ने यहां अपनी चौकियां बना ली थी।
6: यद्यपि पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा कहा गया कि ये घुसपैठिए कश्मीरी स्वतंत्रता सेनानी हैं, लेकिन छापेमारी में पकड़े गए लोगों और हल्की गोलाबारी में मारे गए सैनिकों के पास मिले सारे दस्तावेजों ने साबित कर दिया कि ये काम पाकिस्तान के अलावा किसी और का नहीं था।
5: दरअसल पाकिस्तान का उद्देश्य था सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इन क्षेत्रों में अपनी सेना भेजकर श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर कब्जा करके लद्दाख को कश्मीर से अलग करना और कारगिल व सियाचिन पर कब्जा करना।
6: ये भारत की सुरक्षा और संप्रभुता पर सीधा प्रहार था और इसलिए भारत को बड़े पैमाने पर कारगिल में एक सैनिक अभियान प्रारंभ करना पड़ा, जिसे कारगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस सैन्य अभियान का नाम था ऑपरेशन विजय। भारतीय सेना समझ चुकी थी कि विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों में शत्रुओं से युद्ध करना एक बेहद कठिन और दुष्कर कार्य होगा। भारत सरकार द्वारा नियंत्रण रेखा को पार न करने के निर्णय ने भारतीय सेना के कई सामरिक विकल्पों पर अंकुश लगा दिया।
5: भारतीय सीमा में घुसे हुए पाकिस्तानी पूरी तरह से सुरक्षित और अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे। उन्हें पहाड़ों की ऊंचाइयों पर होने का प्राकृतिक लाभ था, जबकि भारतीय सेना घाटी में खुले होने के कारण बेहद असुरक्षित थी। लेकिन युद्ध अवश्यम्भावी था और भारतीय सेना ने युद्ध छेड़ दिया।
6: दिन में किए गए हमले खतरनाक हो सकते थे क्योंकि देख लिए जाने का जोखिम था, इसलिए भारतीय सेना द्वारा आक्रमण मुख्य रूप से रात को 0 डिग्री से भी कम तापमान में किए गए। सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी समुद्र तल से 18,000 फीट की खड़ी चढ़ाई को चढ़ना।
7: साथियों, हमारे सामने जो सबसे बड़ी कठिनाई है वो है इन पहाड़ों की खड़ी चढ़ाई पर चढ़ना।
4: लेकिन सर, एक और बहुत बड़ा खतरा है और वो है दुश्मनों द्वारा देख लिए जाने का।
7: ठीक कहते हो, अगर हम चढ़ने की कोशिश भी करें तो वो बड़ी आसानी से हमें अपने निशाने पर ले सकते हैं।
2: जी सर, इसलिए दिन की रोशनी में आक्रमण करना बिल्कुल संभव नहीं है। हमारे पास मात्र रात को ही आक्रमण करने का विकल्प बचता है।
7: सही बात। सुनो, सब इधर आओ।
4: जी, यस सर।
7: ये मेज के चारों ओर।
2: जी सर।
4: उधर से। हाँ।
7: जी, तुम्हें याद होगा कि अभी 3 दिन पहले हमारी वायुसेना के विमान इस क्षेत्र में आक्रमण करने आए थे।
2: जी सर।
7: वायुसेना ने हमले के दौरान इस क्षेत्र के चित्र भी खींचे हैं और उन्हें हमारे पास भेजा है।
2: जी सर।
7: इन चित्रों के आधार पर मैंने ये नक्शा बनाया है।
2: जी सर।
7: इस नक्शे के अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि दुश्मनों की चौकी जहां है उसकी विपरीत दिशा से हमें पर्वत पर चढ़ना होगा, यानी दाहिनी ओर से।
4: जी सर, आप ठीक कहते हैं सर। इस तरफ से सर, यहां से पहाड़ की दाहिनी ढाल भी ज्यादा कठिन है सर। दुश्मन सोच भी नहीं सकता कि हम इस तरफ से चढ़ भी सकते हैं।
7: बिल्कुल ठीक। तो साथियों,
8: यस सर।
7: अभी बज रहे हैं 5:00 और मेरा अंदाजा है कि इस चढ़ाई में हमें कम से कम 5 घंटे तो लगेंगे, तो क्यों ना 11:00 से इस अभियान को शुरू किया जाए।
2: जी सर।
7: चढ़ाई करने वाली हल्की रस्सियां तैयार कर ली जाएं। हथियारों में राइफल्स, हल्की मशीन गन और हथगोले होंगे।
2: सर।
7: कोई शक?
2: नो सर।
7: बी प्रिपेयर्ड फॉर द मिशन।
8: यस सर।
4: सर, अब हम चोटी के बिल्कुल पास आ गए।
7: धीमे बोलो, धीमे।
4: जी,
7: उन्हें पता ना चल जाए।
4: जी सर।
7: चोटी पर पहुंचते ही हम सभी रेंगते हुए उनके तंबुओं की ओर बढ़ेंगे।
4: जी।
7: और हथियारों के साथ अपनी अपनी पोजीशन ले लेंगे।
4: ठीक है सर।
7: और फिर तुम विपरीत दिशा में एक हथगोला फेंकना।
4: जी सर।
7: बम के फटने की आवाज सुनकर अपने तंबुओं से कुछ सैनिक बाहर जरूर निकलेंगे और तुम्हें उन पर फौरन फायरिंग करनी होगी।
4: जी सर।
7: ठीक है, आगे बढ़ो। बहुत धीरे, आवाज नहीं निकलनी जैसे। धीरे, बहुत धीरे,
4: धीरे।
7: तपे बहुत, तपे। बस अब हम चोटी पर आ गए हैं, तो अब रेंगना शुरू करो।
4: रेंगेंगे। जी सर।
7: कोई भी उठकर नहीं चाहेगा, सब रेंगेंगे। आवाज नहीं, आवाज नहीं, आवाज नहीं। हर कोई अपनी पोजीशन ले ले।
4: हाँ सर।
7: एवरीबॉडी रेडी?
2: यस सर।
4: यस सर।
7: अब हथगोला फेंको। गुड, वो अपने बंकरों से बाहर आ रहे हैं।

0: इस मिशन में भारतीय सेना को भारी सफलता मिली। दुश्मन के अधिकांश लोग मारे गए और कारगिल की इस चोटी पर भारतीय सेना ने अपना परचम लहरा दिया। ऑपरेशन विजय में भारतीय वायुसेना की बहुत ही अहम भूमिका रही। इस युद्ध में सामरिक महत्व के मुख्य क्षेत्र थे मुश्को, द्रास, काकसर और बटालिक।
1: भारतीय सेना ने एक अपूर्व गरिमामय इतिहास रच दिया था।
0: 3 मई से 26 जुलाई 1999 के बीच लड़ी गई इस लड़ाई में 25 सैनिक अधिकारियों और 436 जवानों की शहादत हुई। इसके अलावा 54 सैनिक अधिकारी और 629

0: जवान घायल हुए।
1: इस युद्ध में 2 सैनिक अधिकारियों और 2 जवानों को परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया। ये पराक्रमी योद्धा है कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, राइफलमैन संजय कुमार और ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव।
0: देश इन रणवीरों को उनके असीम शौर्य हेतु श्रद्धा से नमन करता है। कारगिल युद्ध की गौरवशाली विजय की स्मृति में 26 जुलाई को अब देश भर में विजय दिवस मनाया जाता है।
2: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और श्रोताओं, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय दिन के 10 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे, माफ़ कीजिएगा शोभा, दिन के 10:30 होने को हैं और अब आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों का प्रसारण कुछ ही क्षणों में।
6: पसंदीदा प्रोग्राम लेकर हम हाजिर हैं जिसका नाम है जोहार रांची। आज आपके साथ है आपकी दोस्त उषा जायसवाल
7: और मैं हूँ छवि।
6: हम दोनों का स्वीकार कीजिए नमस्कार
7: जोहार।
6: कैसी हो छवि?
7: बढ़िया हूँ, आप कैसी हैं?
6: हाँ, एकदम सही है। बस थोड़ी गर्मी बाहर में बहुत ज्यादा है तो उसकी परेशानी मुझे लग रही थी, लेकिन क्या करोगे, मौसम ऐसा है कि अचानक से गर्मी अचानक से बारिश हो जा रही है तो फिर उस गर्मी का जो माहौल है ना वो कम हो जा रहा है, लेकिन हाँ। अचानक से बारिश ना इस मई के महीने में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन क्या करें, ऊपर वाले की जैसी मर्जी है ना। तो फिर अपने इस प्रोग्राम में हम थोड़ी ठंडक थोड़ी गर्मी को लेकर हाजिर है अपने दोस्तों के साथ और चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक सुविचार के साथ। कहते हैं शब्दों का इस्तेमाल आप कितनी भी समझदारी से करो फिर भी सुनने वाले अपनी योग्यता और मन की भावनाओं के अनुसार ही उसका मतलब निकालते हैं।
7: बिल्कुल, जैसी जिसकी सोच वैसी उसकी भावना, यही कहा गया है ना। हमें हमेशा अपनी सोच को सकारात्मक रखनी चाहिए क्योंकि गलत भावना से बनते काम भी बिगड़ जाते हैं और सद्भावना से हमें अच्छे काम करने की ताकत मिलती है।
6: तो फिर हम क्यों ना अच्छे काम करने के लिए भगवान से इसके लिए अच्छी सी शक्ति मांग लेते हैं प्रार्थना के रूप में।

0: निशुल्क कानूनी सहायता टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
2: शिक्षा की जीवन में भी जरूरत है, समाज जीवन में भी जरूरत है, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए।
1: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
3: छवि, जब हम अच्छे काम करते हैं, दूसरों की भलाई करते हैं, तो खुद के कर्म भी अच्छे होने लगते हैं ना।
4: हृदय में उदारता आती है, हमारे विचार अच्छे होते हैं, जिससे हमारी और हमारे परिवार का जीवन सुखमय
3: होने लगता है। और हमारी भारतीय संस्कृति का मूल आधार भी है दूसरों की भलाई करना। और जानती हो, बहुत मुश्किल से ये मानव तन हमें मिला है, और जीवन के साथ बुद्धि और विवेक भी मिला है, जिसका उपयोग हमें सत्कर्म में करना चाहिए, तभी हम खुश रहेंगे। और
4: जब खुश रहेंगे तो अपने आसपास के लोगों को भी खुशी बांट सकते हैं। कुछ अच्छे करने के लिए हमेशा मन प्रेरित करता रहेगा,
3: जैसे प्रकृति से प्रेम, पेड़ पौधों की ओर ध्यान देना, उन्हें संवारना, नए नए फल फूल के पौधों को अपने आसपास लगाकर उनसे हरियाली बिखेरना।
4: हाँ भाई, वाह, प्रकृति की जब भी बात आती है तो मन तो हरा भरा हो ही जाता है, पर ये मौसम बदलने से शरीर पर इसका जब असर पड़ता है तब सब
3: बेमनसा हो जाता है। और जब मौसम की बात चली है तो अपने श्रोताओं को ये भी जानकारी दे दें कि अधिकतम तापमान रहा 32.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21.4 डिग्री सेल्सियस रहा। हाँ। और मौसम की थोड़ी सी जानकारी अपने श्रोताओं को जरूर दे दें, क्योंकि बहुत ही बदलाव होने वाला है मौसम में। राजधानी में जो कल आंधी और तूफान आई थी, है ना, 3:30 बजे से तेज रफ्तार से जो हवा चली थी, उसकी जो भी दृश्य वो हम सभी ने देखा, और इससे बहुत परेशानी भी हो गई। लेकिन मौसम विभाग के अनुसार रांची में आंधी और पानी जारी रहने का अनुमान है। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है, वज्रपात होने की भी चेतावनी जारी की गई है।
4: बिल्कुल, और मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश के ऊपर स्थित एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन से मणिपुर तक कायम टर्फ छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल होते हुए गुजर रहा है। इससे झारखंड में मौसम में बदलाव की संभावना है। और देखिए, मौसम विभाग कह रहे हैं कि अगले 2 दिन रांची में तेज हवा के साथ हल्की बारिश होगी, लेकिन इसके बाद रांची समेत

0: पूरे राज्य में अच्छी बारिश होने की संभावना है।
1: कभी कभी ऐसा
0: तो
1: लगता है ना कि ये जो बारिश है ना, बारिश के मौसम में होते तो कितना अच्छा होता है ना, कि हमारे किसान भाई भी खुश होते कि चलो समय पर बारिश हो रही है, खेती भी समय पर होता। और ऐसा अभी सारा बारिश अगर अभी आ जाए तो फिर सूखे की संभावना होने लगती है,
0: और इस वक्त बारिश होने से उन्हें नुकसान भी तो
1: नुकसान है ना। हाँ, कोई तैयारी भी नहीं चल रही है,
0: वृष्टि भी हो रही है बारिश के साथ ही,
1: जो लगी हुई सब्जी की फसल है ना वो बर्बाद हो रही है, खड़ी फसल बर्बाद हो रही है, तो जिससे जो इनकम है ना वो भी कम हो रहा है। और परेशानी है वो तो अलग है ना, जान माल की हानि हो रही है, पेड़ गिर रहे हैं, तो उससे कितनी तरह की परेशानियां लोगों के बीच में आ रही है। तो जानती हो, इन सब के कारण और कर्णधार हम सभी हैं। हम लोगों ने सभी जगह के पेड़ पौधों को काट दिया। अब वो पर्यावरण संतुलन जो है वो नहीं हो पा रहा है,
0: बिगड़ चुका है।
1: तो इसी के कारण ये जो आज देखने को हमें मिल रहा है ना, ये सब उसी का मतलब किया
0: समय इस तरह का होना।
1: तो इसीलिए अभी भी समय है कि अपने कल को सुधारने के लिए हम अपने आसपास पेड़ पौधे जरूर लगाएं, और ताकि कल हमारा सुधर सके। और थोड़ी सी जानकारी अपने श्रोताओं को देते हैं ट्रेन के बारे में, कि रांची दिल्ली जनजाति दिवस स्पेशल ट्रेन 23 को चलेगी, जो भीड़ देखते हुए रेल मंत्रालय ने रांची नई दिल्ली ये ट्रेन जो है उसका परिचालन का निर्णय लिया है, जो 23 तारीख से शुरू होगी। और 13 और 16 मई को रद्द रहेगी खड़गपुर एक्सप्रेस, है ना। तो जितने भी यात्री हैं वो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी डिटेल्स रेलवे विभाग से ले लें, ताकि उन्हें यात्रा में कोई परेशानी ना हो।
0: हाँ,
1: और जब बात चलती है ना कि इतिहास की, तो हम अपने श्रोताओं को ये भी बता दें कि 13 मई को मुख्य रूप से समर्पण दिवस संत निरंकारी मिशन द्वारा बाबा हरदेव सिंह जी के सम्मान में ये मनाया जाता है, और आज अपरा एकादशी भी है जिसे हम मनाते हैं। और साथ ही साथ हम ये भी बता दें अपने श्रोताओं को कि आज
0: मशहूर भारतीय लेखक और मालगुडी डेज के रचयिता आर के नारायण की पुण्यतिथि हर साल 13 मई को मनाई जाती है, और 13 मई 2001 को चेन्नई में 94 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ था।
1: हाँ, उन्हें अंग्रेजी साहित्य में भारतीय जीवन को सहजता से पेश करने के लिए याद किया जाता है, और प्रसिद्ध रचनाएं थी इनकी। ये मशहूर भारतीय लेखक थे, तो प्रसिद्ध रचनाएं मालगुडी डेज, हमने टीवी पर इसका सीरियल भी देखा है, स्वामी एंड फ्रेंड्स, द गाइड, द इंग्लिश टीचर, और इनकी लेखन शैली थी दक्षिण भारत के काल्पनिक शहर मालगुडी पर इनकी आधारित थी। इन्हें पुरस्कार भी मिला था 1964 में पद्म भूषण और 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था।
0: बहुत बढ़िया। और 13 मई आज ही के दिन फखरुद्दीन अली अहमद का भी जन्म हुआ था
1: 1905 ईस्वी।
0: हाँ, 1905 ईस्वी में दिल्ली में। और
1: ये एक राजनेता थे जो भारत के 5वें राष्ट्रपति रहे, और 1974 से 77 तक पेशे से वकील थे। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन भी शामिल था। वे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे, और 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद भी पार्टी के प्रबल समर्थक बने रहे थे। तो इन्हें भी हम जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं, और साथ ही साथ ये भी जानकारी करते हैं कि आज आसिफ सेन का भी जन्मदिन है ना, जो हिंदी सिनेमा के एक बेहद लोकप्रिय चरित्र और हास्य अभिनेता थे।
0: जो अपनी धीमी गति से संवाद
1: बोलने के लिए अनूठी शैली
0: बोलते थे, बोलने की अनूठी शैली थी उनकी, उन्हीं से वो जाने जाते थे।
1: और किसी पिक्चर में हमने सुना था ना, काट दिया। इस तरह से वो बहुत ही
0: अलग अंदाज़ से,
1: उनका मोशन बहुत अच्छा होता था, और बहुत ही अच्छे ढंग से जब वो पिक्चर में आ जाते थे ना, तो देखने का जो नजरिया था वो बदल जाता था, है ना। वो हमेशा फिल्मों में पुलिस इंस्पेक्टर, जमींदार या मकान मालिक जैसे दमदार किरदार निभाते थे, और लोगों को
0: बहुत
1: हंसाते थे। और इसी तरह से हम ये भी बता दें कि आज के दिन 1918 में भारत के सबसे प्रसिद्ध भरतनाट्यम नर्तकियों में से एक टी बाला सरस्वती का जन्म हुआ था।
0: हाँ, वो भी 13 मई 1918 को हुआ था। और 1919 में भारतीय राजनीतिक बिमिदीपुदी आनंदम का जन्म 13 मई 1919 को हुआ था। 1924 को अनुभवी भारतीय अर्थशास्त्री के एन राज का जन्म हुआ था आज के दिन, और 1933 में भी भारतीय सन्यासी और समाज

0: स्वामी भूमानंद तीर्थ का जन्म भी आज ही के दिन हुआ था।
1: और जैसे हम ये कहते हैं ना कि भारतीय इतिहास, तो ये भी बता दें कि 13 मई को इसी दिन 1638 में शाहजहां की देखरेख में विश्व प्रसिद्ध लाल किले का निर्माण शुरू हुआ था। और लाल किला पुरानी दिल्ली में स्थित एक ऐतिहासिक किला है, जिसको कि 2007 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल नामित किया गया है।
0: और 2000
1: इनका निधन हुआ था, इनके बारे में भी हम अपने श्रोताओं को बता देते हैं।
0: हाँ तो 2021 में इंदु जैन टाइम्स ऑफ इंडिया मीडिया समूह के चेयरपर्सन थी। इनका निधन भी हुआ था 2021 में। 2016 में बाबा हरदेव सिंह भारत के प्रसिद्ध संत और संत निरंकारी मिशन
1: मिशन
0: के
1: के आध्यात्मिक
0: आध्यात्मिक
1: गुरु
0: गुरु
1: थे,
0: थे।
1: इनका भी निधन हुआ था। और ये भी हम जानकारी देते हैं कि 1960 में मैक्स इसेलिन के नेतृत्व में स्विट्जरलैंड का एक खोजी दल हिमालय में धौलागिरी पर्वत शिखर पर पहुंचा था।
0: हाँ और 1962 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन देश के दूसरे राष्ट्रपति बने थे
1: आज ही के दिन।
0: आज ही के दिन।
1: और हम ये भी बता देते हैं कि विश्व भर में आलोचना और दबाव की परवाह न करते हुए भारत ने दो और परमाणु परीक्षण किए थे 1998 में। और ये भी बता देते हैं आज के दिन क्या हुआ था। भारत के इतिहास में आज का दिन अपना खास मुकाम रखता है।
0: हाँ और वो ये है कि देश के लोकतांत्रिक इतिहास में यह दिन एक मील का पत्थर है। स्वतंत्र भारत का पहला संसद सत्र 13 मई 1952 को आहूत किया गया था। 3 अप्रैल 1952 को पहली बार उच्च सदन यानी कि राज्यसभा का गठन किया गया था और इसका पहला सत्र 13 मई 1952 को आयोजित किया गया था। इसी तरह 17 अप्रैल 1952 को पहली लोकसभा का गठन किया गया था जिसका पहला सत्र आज ही के दिन 1952 को आहूत किया गया था।
1: तो ये था जो लोकतांत्रिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। और
0: बिल्कुल
1: सन 2000 में लारा दत्ता ने साइप्रस में आयोजित प्रतियोगिता में मिस यूनिवर्स 2000 का खिताब भी जीता था। और हम ये बता देते हैं 1999 में क्या हुआ था।
0: जापानी पर्वतारोही ताबेई ने ताबेई
1: ताबे
0: की
1: की तरह।
0: तरह
1: हाँ
0: जापानी छात्र ने नागुई दुनिया की 7 सर्वोच्च चोटियों पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने और
1: यानी
0: वो
1: कि
0: थे वो
1: 25 साल के थे।
0: 25 वर्ष में ही।
1: तो ये हम अपने श्रोताओं को बहुत सारी जानकारियाँ आज के जो इतिहास में हुआ है इसके बारे में भी बताएं। और जो भारत के ओलंपिक बैडमिंटन खिलाड़ी निखिल कानेतकर का जन्म भी 1979 में पुणे में हुआ था आज ही के दिन। और हम ये भी बता देते हैं कि बहुत सारी जानकारी अपने श्रोताओं को हम देते हैं कि आज के दिन क्या-क्या हुआ था। तो चलो हम ये भी बता दें कि आज हम अपने जोहार रांची कार्यक्रम को 11 बजे तक ही ले चलेंगे, और उसके पहले हम कुछ और जानकारियां भी अपने श्रोताओं से साझा करेंगे। लेकिन सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: छवि, इतने प्यारे गीत को सुनने के बाद तो लगता है ना कि मौसम का आनंद हम हमेशा लेते रहे, लेकिन बस ऊपर वाले से यही प्रार्थना है कि थोड़ी परेशानी कम कर दे, है ना। बारिश आए और उसका आनंद हम ले, लेकिन ये जो आंधी आती है, वज्रपात होते हैं, ओले गिरते हैं, तो इन सब से थोड़े बचने के उपाय हम सभी को कर लेने चाहिए, क्योंकि पता है कि हर आए दो दिन में मौसम विभाग हमें जानकारी देता है कि येलो अलर्ट जारी है और हमें बचकर रहना, अपने साथ छाता, पानी, खाना सब लेकर चलना,
1: सब लेकर चलना,
0: तभी तो हम फिट रहेंगे ना और हर चीज का आनंद ले सकते हैं। और उसके लिए बहुत जरूरी है छवि पोषण, हमारे शरीर को सही ढंग से पोषण मिलता रहे तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं।
1: और हाँ, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। अगर जरा सी भी असावधानी हुई ना तो शरीर में परेशानी झलकने लगती है,
0: और वो परेशानी कई तरह की होती है, जैसे ओवरथिंकिंग। देखे जाए तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ध्यान देने पर पता चलता है दिक्कतों का कि क्या क्या परेशानी है। और ये एक ऐसी आदत है जिसमें व्यक्ति किसी न किसी स्थिति में समस्या या घटना के बारे में अत्यधिक सोचता ही रहता है, और मन में बार बार एक ही बात को, एक ही घटना को दोहराता रहता है, इसे ही हम ओवरथिंकिंग कहते हैं।
1: इसे क्या होता है कि इससे कई बार मानसिक समस्याएं पैदा हो जाती है, तनाव बढ़ जाती है, नींद गायब हो जाती है, ज्यादा होने पर मानसिक बीमारी होने का खतरा भी रहता है।
0: इसीलिए अगर ऐसा होता है तो अपने को एक चीज से हटाकर दूसरे बातों में दिमाग को भटकाना चाहिए और अपने मन पसंद काम भी करने चाहिए, है ना।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: और अगर सबसे अच्छी बात होगी ना कि तुम प्यारा सा कोई संगीत सुन लो और अपने नजदीकी लोगों से अपने मन की बात को शेयर भी करो ना, क्योंकि आए दिन ये देखा जा रहा है कि आपके मन में
1: हल्का भी होता है, आपके अंदर जो भी बोझ है किसी चीज को लेकर के हल्का,
0: किसी से बोल लो, किसी से शेयर कर लो, क्योंकि ऐसा आए दिन देखा जा रहा है ना कि मन में कुछ तनाव है, कुछ अवसाद है और उसके बदले हम कुछ गलत काम कर दे रहे हैं। तो ऐसा ना हो, अगर कोई परेशानी आपके मन में चल रही है, अपने दोस्तों से, अपने परिवार के बड़े बूढ़ों से या फिर अड़ोस पड़ोसी और कोई भी नहीं है तो मानसिक स्वास्थ्य के जो भी डॉक्टर्स हैं आप उनसे सलाह लीजिए, ताकि आपको कोई ऐसी बड़ी घटना को आप अंजाम न दे पाए और लोगों को कोई परेशानी भी नहीं हो और खुद को भी परेशानी नहीं हो, है ना। तो ओवर थिंकिंग में आप अपने जिंदगी के बारे में सोचते हैं, अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, जिससे अचानक से लगने लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता है और एक निश्चित मुकाम पर पहुंच जाते हैं और कुछ गलत हो जाता है। तो उससे बचने के लिए हमें

0: हमेशा लोगों से बातें करनी चाहिए, अपनी बातों को शेयर करना चाहिए, और हम
1: और
0: यही
1: ओवर थिंकिंग को अपने ऊपर ज्यादा लोड भी
0: हावी
1: नहीं
0: मत
1: लेना
0: होने
1: चाहिए, हावी
0: दीजिए।
1: मत होने दीजिए। थोड़ा सा जैसे भी आपको महसूस हो तो आप अपने को दूसरी ओर शिफ्ट करने की कोशिश कीजिए,
0: कुछ
1: जैसे
0: दूसरे
1: आपने
0: काम में
1: बताया
0: अपनी रुचि
1: कि
0: के हिसाब से काम
1: हाँ
0: कीजिए,
1: वो कर
0: संगीत
1: लीजिए,
0: सुनिए।
1: कुछ भी नहीं है तो आप एक दूसरे से शेयर कीजिए जो आपको अच्छे लगते हैं आपके जीवन के।
0: और जैसा कि हमने कहा ना कि प्यारा सा संगीत सुनने से सब कुछ हल्का हो
1: सब
0: जाता
1: कुछ
0: है,
1: हल्का हो
0: तो
1: जाता है।
0: फिर हाँ
1: ये तो बहुत ही अच्छा थेरेपी है
0: संगीत
1: ना,
0: भी। हाँ,
1: संगीत
0: तो
1: बहुत ही
0: फिर
1: अच्छा थेरेपी है।
0: जैसा कि हमने अपने श्रोताओं को बताया ना कि 11 बजे से हम उनको एक दूसरा कार्यक्रम सुनवाने वाले हैं, इनसे मिलिए। उसमें SDM कुमार रजत से सिंधु मिश्रा की बातचीत आप सुनेंगे दिन में 11 बजे। लेकिन अभी थोड़ा सा वक्त बाकी है, तो एक प्यारे से संगीत से अपना मन बहला लेते हैं,
1: बिल्कुल
0: है ना।
1: बिल्कुल हाँ।
0: और इसी के साथ अपने श्रोताओं से इजाजत भी ले लेते हैं और कहते हैं नमस्कार
1: नमस्कार
0: जोहार,
1: जोहार।
0: और चलते चलते सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, इसे प्यारे से गीत के साथ जोहार रांची कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम इनसे मिलिए, एसडीएम कुमार रजत से सिंधु मिश्रा की बातचीत।

श्रोताओं, मैं हूं आपके सहयोगी सिंधु मिश्रा। नमस्कार आप सभी को। आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम लेकर आए हैं एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात जिनकी पहचान केवल एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में नहीं बल्कि संघर्ष, संकल्प और सेवा के प्रतीक के रूप में भी की जाती है। एक साधारण विद्यार्थी से लेकर भारतीय प्रशासनिक सेवा की कठिन राह तय करने तक का उनका सफर अनेक युवाओं के लिए प्रेरणा है। आज हम जानेंगे उनके व्यक्तित्व के विविध आयाम, उनकी शिक्षा दीक्षा, प्रशासनिक जिम्मेदारी

0: कार्यक्रम में आज हमारी बातें हो रही हैं अनुमंडल पदाधिकारी कुमार रजत सर से। सर, अब आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जो समस्याएं आपने बताई कि यहाँ रांची शहर में आपको देखने को मिला, लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज को आपने देखा, तो यहाँ के लोग आपको कैसे लगे?
1: यहाँ के लोग मुझे बहुत बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं, मतलब काफ़ी फ्रेंडली हैं लोग, बिल्कुल वेलकमिंग नेचर के हैं। कोई जब मैंने ज्वाइन किया था, अगले ही दिन बहुत लोग मुझे वेलकम करने के लिए पहुंचे। मैं उनको जानता भी नहीं था, लेकिन दे केम एंड कि सर आपका स्वागत है, आपका मतलब पहला पोस्टिंग है, बहुत बधाई आपको, मतलब बधाई देने वालों का तांता लग गया। तो मुझे लगा कि मतलब ऐसा क्या हो गया है, और ये मुझे जानते भी नहीं है। देन अगेन जब उसके बाद मैं इसमें सरस्वती पूजा आया, सरस्वती पूजा के बाद शिवरात्रि आई, शिवरात्रि में काफ़ी मतलब लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी लगती है
0: जी।
1: फिर उसके बाद रामनवमी आया, फिर सरहुल, उसी समय सरहुल भी था, ईद था, मैं लोगों से मिला, मुझे ऐसा मतलब लोगों का कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ मुझे कि मैं कहीं और आ गया। ऑल्दो मैं झारखंड से ही हूँ, मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि मैं कहीं और से आया हूँ, बट आई हैव नॉट बीन टू रांची, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं आया था, और यहाँ के लोग को देख के कभी ऐसा लगा नहीं कि ये लोग मेरे अपने नहीं हैं। तो ये काफ़ी पॉजिटिव एस्पेक्ट है रांची के लोगों का।
0: सर, अब मैं आऊंगी युवाओं की बात करूंगी। हमारे जो युवा हैं, मानसिक स्थिति उनकी कभी एक समान नहीं रहती है, वो काफ़ी परेशान से भी रहते हैं। कई बार देखा जाता है कि अपने रोजगार को लेकर वो काफ़ी परेशान रहते हैं, तो ऐसे युवाओं को आप विशेष तौर से क्या कहना चाहेंगे अपनी ओर से?
1: जो ऐसे युवा हैं जो आप बोल रहे हैं कि रोजगार को लेकर परेशान हैं, तो उनसे मैं

0: यही अपील करना चाहूँगा कि आप एक लक्ष्य निर्धारित करें कि मुझे ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, और उसके सिलेबस को लेके प्रॉपर प्रिपरेशन करें। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे युवाओं, मैं नहीं ये नहीं करूँ कि सभी ऐसा करते हैं, बट बहुत सारे युवा जो मुझसे गाइडेंस भी लेने के लिए आए थे या मेरे संपर्क में थे, उनको देखा कि वो डिफरेंट टाइप के प्रिपरेशन करते हैं,
1: जी
0: किसी एक तरह का प्रिपरेशन नहीं करते हैं, तो उनका माइंड डाइवर्टेड रहता है और सिलेबस डिफरेंट एग्जाम्स के डिफरेंट होते हैं, और उस हिसाब से आपका माइंडसेट भी उस हिसाब से डेवलप करना पड़ता है। तो इसीलिए मेरे हिसाब से अगर आप एक फील्ड को चूज करके और उसी तरह के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करेंगे जिसका सेम पैटर्न हो, तो आपके सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। और इसकी और दूसरा है कि अगर आपको असफलता भी मिल रही है, तो आपको इससे निराश होने की बजाय ये सोचना चाहिए कि मैं असफल क्यों हुआ या हुई।
1: जी
0: मतलब उसको अगर आप एनालाइज करेंगे कि कहाँ पे मैं कमज़ोर पड़ गया या कमज़ोर पड़ गई, या कहाँ मेरी कमजोरी रह गई, और उस पे वर्क करके अगर आप आगे बढ़ेंगे, टेस्ट सीरीज प्रॉपर फॉलो करेंगे, जैसे पैटर्न को फॉलो करते हुए टेस्ट पूरे प्रीवियस ईयर के पेपर्स अगर आप सॉल्व करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे आपका स्ट्रांग पॉइंट है, कहाँ पे आप वीक पड़ रहे हैं। अगर वीक पॉइंट्स पे आप फोकस करके, वीक पॉइंट पे काम करके आप उसको स्ट्रांग कर ले, और स्ट्रांग पॉइंट को जो आपका स्ट्रांग पॉइंट है उसको और भी मजबूत कर लें, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी एग्जाम ऐसा है जो नहीं कांकर कर सकते हैं हम लोग।
1: सर, मैं यहाँ पर आपके बारे में जानना चाहूंगी कि प्रशासनिक सेवा की जो तैयारी आप कर रहे थे, तो इस वक्त आपने अपने आप को कैसे बांधा था, कैसे आपकी पढ़ाई चल रही थी?
0: मुझे 4 अटेम्प्ट लगे थे, मतलब चौथे अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो पहले 3 अटेम्प्ट में मेरा प्रिलिमिनरी एग्जाम ही क्लियर नहीं हो पा रहा था। तो पहले 3 अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रहा था, तो पहले 2 अटेम्प्ट तो मैंने ऐसे ही दे दिए कि ठीक है, एक बार नहीं हुआ तो मुझे लगा ठीक है अगली बार हो जाएगा,
1: जी
0: अगली बार नहीं हुआ तो फिर मैं थोड़ा सा मतलब कॉन्शियस हो गया कि क्यों नहीं हो रहा है। देन आई रियलाइज्ड कि मेरा वीक पॉइंट प्रिलिम्स है, प्रिलिम्स ही नहीं क्लियर होगा तो आगे के, मतलब मैं मेंस पे बहुत फोकस कर रहा था लेकिन प्रिलिम्स की तैयारी बहुत कम कर रहा था। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि जब मैं प्रिलिम्स ही नहीं क्लियर करूंगा तो मेंस की तैयारी करने का क्या फ़ायदा होगा। तो फिर मैंने प्रीलिम्स पे भी फोकस किया, ऑल दो अगले अटेम्प्ट में भी मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ। देन अगेन मैंने फिर से उन खामियों को दूर करने की कोशिश की जहाँ पे मैं थोड़ा वीक पड़ रहा था। टेस्ट सीरीज़ पे बहुत फोकस किया, टेस्ट सीरीज बहुत सारे टेस्ट टेस्ट दिए, और जहाँ जहाँ पे गलतियाँ हुई उसको ठीक करने की कोशिश की। और फॉर्चुनेटली फिर वो प्रीलिम्स क्लियर हुआ, तो फिर मेंस भी क्लियर हुआ और इंटरव्यू भी हो गया, और फॉर्चुनेटली मैं मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एलोकेट भी हो गया।
1: जी सर, कई बार देखा जाता है कि जब बच्चे किसी प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे हो या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो उन्हें वो चीज अगर नहीं मिल पाती है तो वो अवसादग्रस्त हो जाते हैं। तो ऐसे में परिवार वाले भी उनके साथ साथ परेशान होते हैं और बच्चे भी। तो ऐसे लोगों को आप अपनी ओर से क्या संदेश के रूप में कहना चाहेंगे?
0: मेरे हिसाब से ये भी एक सर्विस है, आप जैसे हम लोग बोलते हैं कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ये भी एक सर्विस है, ये भी एक जॉब है, और अगर आपका हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारतीय प्रशासनिक सेवा के लोग या सिविल सेवा में जो लोग हैं वही भारत के
1: बिल्कुल
0: विकास के या हमारे देश के विकास में योगदान दे रहे हैं। देर आर लॉट मैनी पीपल, दे आर नॉट इन सिविल सर्विसेज बट दे आर डूइंग वेरी वेल एंड दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन द प्रोस्पेरिटी ऑफ आवर कंट्री, जो हमारे देश के विकास में बहुत ही अच्छा योगदान दे रहे हैं, और वो सिविल सेवा में नहीं है। तो दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, आप जिस फील्ड में अच्छे हैं उस फील्ड में अच्छा काम कीजिए, और उससे हमारे अपने देश का, अपने राज्य का, अपने घर वालों का नाम रोशन कीजिए।
1: सर, आपने जितनी भी बातें आज कार्यक्रम में बताई, मैं समझती हूँ कि विशेष तौर से हमारे युवा पीढ़ी को इससे प्रेरणा जरूर मिलेगी, और जो भी प्रतियोगी परीक्षा की विशेष तौर से तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी प्रेरणा आपकी बातों से मिलेगी। सर, आपने कीमती वक्त निकाला, हमारे स्टूडियो आए, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू मैम, धन्यवाद।
1: श्रोताओं, आज कार्यक्रम में हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में थे अनुमंडल पदाधिकारी, और इनसे हम बातचीत कर रहे थे उनकी जीवन यात्रा के बारे में। इनकी यह यात्रा यह संदेश देती है कि दृढ़ निश्चय, निरंतर परिश्रम और स्पष्ट लक्ष्य के साथ कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। शिक्षा से लेकर प्रशासनिक सेवा तक का अनुभव निश्चय ही युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। कार्यक्रम की सहयोगी सिंधु मिश्रा को आज दें विदा। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम इनसे मिलिए। इसके अंतर्गत आज आप मिल रहे थे SDM कुमार रजत से और बातें हो रही थी सिंधु मिश्रा से। और इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये राज्य केंद्र है। अगला कार्यक्रम आपकी पसंद थोड़ी ही देर में।

0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, अब आइए हम आपको सुनवाते हैं अगला कार्यक्रम आपकी पसंद। इसके पहले ये संदेश।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

0: ढेर सारी शॉपिंग।
1: हाँ दी, नया मोबाइल।
0: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
2: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
0: पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो।
1: पर दी,
0: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
2: हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा।
0: अच्छा।
3: RBI कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: श्रोताओं, आपकी पसंद कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। चलिए ये पहला गीत हम आपको सुनवाते हैं आप ही की पसंद पर, कुदरत फिल्म से, आवाज किशोर कुमार की है। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां, गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद परमानंद, पंकज प्रमोद, रोहित और मोहित। और हमारे ये अगले श्रोता हैं पथरिया से नरेंद्र नेताम और कुसुम नेताम। लीजिए अपनी पसंद का ये गीत सुनिए।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपकी पसंद कार्यक्रम। अब आइए हम आपको अगला गीत सुनवाते हैं फिल्म दर्द से। किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें हैं। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं चेपा कला बड़का गांव से श्री बाबूलाल ठाकुर, श्रीमती साबिया ठाकुर, जीतेश, आदर्श, प्रभात और उनके परिवार के सभी सदस्यगण, तेनूघाट बोकारो से भगवान प्रसाद ठाकुर और पूरे परिवार के सदस्यगण, आप सभी हैं चेपा कला बड़का गांव से श्री बाबूलाल ठाकुर, श्रीमती साबिया ठाकुर और तिलेश्वरी भरत ठाकुर। और हमारी ये अगली श्रोता है बड़ोदरा गुजरात से मौलिक पाटिल और उनके मम्मी पापा, इंदौर से प्रांजलि त्रिशा और उनके मम्मी पापा और बेंगलोर से श्रेया श्री सुनीता और उनके सभी साथीगण। लीजिए अपनी पसंद का ये गीत सुनिए फिल्म दर्द से।

श्रोताओं, आपकी पसंद कार्यक्रम का अगला गीत आप ही की पसंद पर। हमारे सुनने वाले श्रोता हैं सरगुजा मैन पार्ट से सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा थापा और आदिबा थापा, बिहारी।

कॉलोनी लोनी से परवीन सरफुद्दीन, कुमारी वली और कुमारी डब्लू, जेल रोड मथुरा से वसीमा आसमा, अक्रम आसमा और उल्ला आसमा बेलदार। हमारे ही अगले श्रोता हैं मलोट कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा अनमोल धर्मपाल, वीर सिंह लाटी, लखविंदर सिंह संधू, महावीर संधू, गुरचरण ग्रोवर और रमेश मिगलानी। आप सभी हैं जातू का किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, शबाना आलम, नाज परवीन और चांदनी नाज। आप सबों ने सुनना चाहा है ये प्यारा सा नगमा नौजवान फिल्म से।

गीत आपने सुनना चाहा है फिल्म चिराग से, आवाज़ लता मंगेशकर की है। सुनने वाले हमारे श्रोता हैं राजा बाजार बिहिया आरा से सुरेश केसरी, पूनम केसरी, प्रतीक केसरी, थाना रोड बक्सर से ओम नंद केसरी, धनानंद और विनोद केसरी। आप सभी हैं गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलवेंदर बिरक, जयतेक बिरक और मीका बिरक। आप सभी श्रोता हैं दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार। लीजिए अपनी पसंद का ये प्यारा सा नगमा सुनिए।

श्रोताओं, इस कार्यक्रम का आखिरी गीत आप ही की पसंद पर आपने सुनना चाहा है। वो कौन थी, इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में सुनना चाहा था रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा ने। आदर्श नगर मलरूट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा और निवान शर्मा। बटिंडा रोड डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग।

श्रोताओं, इसी प्यारे से गीत के साथ आपके पसंद कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। अब आइए हम आपको सुनवाते हैं अगला कार्यक्रम गृह लक्ष्मी। आज आपके साथ हैं आपकी दो सखियां सुभाषिनी और शिल्पी।

0: नमस्कार सखियों, एक खूबसूरत दिन और अच्छे स्वास्थ्य की मंगल कामना के साथ हाजिर है आपके सखी सुभाषिनी
1: और साथ में आज मैं भी हूँ शिल्पी। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने ही कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में। नमस्कार
0: बहनों, गर्मी का दिन है लेकिन बीच बीच में होने वाली बारिश मौसम को सुहाना बना देती है, लेकिन सेहत के नजरिए से देखें तो तपती धूप और फिर अचानक तापमान का गिर जाना, ये हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है।
1: हाँ सुभाषिनी, और जब तक बारिश होती है तब तक तो ठीक लगता है, लेकिन फिर तेज धूप, बेचैन कर देने वाली गर्मी से हालात खराब हो जाते हैं। और चिलचिलाती धूप में अगर बाहर निकलना पड़े तब समझ में आता है कि भाई तापमान कितना बढ़ गया है।
0: बिल्कुल सही कह रही हो शिल्पी। और बहनों, हर वर्ष तापमान में ये जो अनायास वृद्धि हो रही है ना, और तापमान में लगातार वृद्धि, यही तो है ग्लोबल वार्मिंग, जो कि आज के समय की गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों में से एक है। मुख्य रूप से मानवीय गतिविधियां ही इस समस्या की जड़ है।
1: हाँ बहनों, ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ गर्मी बढ़ने तक ही सीमित नहीं है बहनों, इसके परिणाम दुर्गामी हैं। ग्लेशियर का पिघलना यानी कि ध्रुवीय क्षेत्रों और पहाड़ों की बर्फ तेजी से पिघल रही है, जिससे समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है और कितने ही द्वीप हैं जो जलमग्न होने की कागार पर आज हैं, और हम ऐसा पढ़ते हैं और अक्सर देखते भी हैं।
0: हाँ, और वही मौसम में बदलाव, भीषण तूफान, बाढ़, तो कभी लंबे समय तक पड़ने वाला सूखा, अब तो मानो कि सामान्य हो गया है। कितने ही पशु पक्षी, पेड़ पौधे जो हैं वो लुप्त होने की कगार पर पहुंच गए हैं। भीषण गर्मी और फैलती बीमारियों के कारण मानव स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है, व्यक्ति बीमार हो रहा है।
1: बिल्कुल, और अपनी धरती को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये हमें सोचना होगा और उसके लिए प्रयास भी करने होंगे। पर सिर्फ हम या आप अकेले नहीं कर सकते, बल्कि सामूहिक प्रयास जरूरी है सखियों।
0: सही कह रही हो सखी, हमें अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देना होगा इसके लिए। और अक्षय ऊर्जा में जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैसे जो स्रोत हैं उनका अधिक से अधिक उपयोग करना होगा, और साथ ही अधिक से अधिक पेड़ भी लगाने होंगे ताकि वे वातावरण से कार्बन को सोख सकें।
1: बिल्कुल, साथ ही बिजली की भी हमें बचत करनी चाहिए। ऐसे उपकरणों को प्राथमिकता दें जिसमें बिजली की कम खपत होती है। निजी वाहनों की जगह सार्वजनिक वाहनों को प्राथमिकता दें, जैसे कि बस, ट्रेन, मेट्रो, इन सब का उपयोग करें। और हमेशा हम अपने कार्यक्रम में कहते हैं कि अगर कम दूरी तय करनी हो तो क्यों ना हम पैदल चलें, है ना?
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हो। और 3 R जो होते हैं ना, उसका पालन करें। और 3 R क्या है? 3 R यानी रिड्यूस, यानी कम उपयोग करना, जैसे कचरा को कम करें। दूसरा R है रीयूज, यानी पुनः उपयोग। हर चीज फेंकने वाली नहीं होती बहनों, कुछ चीजें ऐसी हैं जिसका हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आता है रीसाइकिल, यानी पुनर्चक्रण। प्लास्टिक, कागज और धातु जैसी चीजों को रीसाइकिल करें ताकि नया सामान बनाने में कम ऊर्जा खर्च हो।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात तुमने कही बहनों। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण है लोगों को जागरूक करना। ग्लोबल वार्मिंग के खतरों और संरक्षण के महत्व के बारे में शिक्षित करना जरूरी है सभी को, और हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझेगा तभी ये बदलाव संभव हो सकेगा।
0: बिल्कुल, इन छोटे छोटे बदलावों को अपनाकर हम धरती के बढ़ते तापमान को नियंत्रित कर सकते हैं और आने वाली पीढ़ी को एक सुरक्षित भविष्य भी दे सकते हैं। प्रकृति के पास हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन अगर हम लालच करें तो हमारे लालच को पूरा करने के लिए तो फिर कुछ भी नहीं है।
1: बिल्कुल, और ग्लोबल वार्मिंग मानवता के लिए एक चेतावनी है कि इसके पहले की बहुत देर हो जाए हमें संभल कर रहना होगा। बहनों, ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि हमारे अस्तित्व के लिए खतरा है। इसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं और इसे सुधारना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। और अब समय आ गया है कि हम कल पर टालना छोड़ दें। अगर हम आज नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ी को हम कैसे सुरक्षित रख पाएंगे? और सबसे बड़ी बात है ना सुभाष जी, जब गर्मी से हम बेचैन हो जाते हैं तो ठंडी

0: मानस अपनों के लिए सबसे सही RPL Life, इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: मैनु एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही कार्यक्रम गृह लक्ष्मी में, और मैं हूँ शिल्पी और
3: मैं हूँ सुभाषिनी। तो बहनों, अब वक्त है कार्यक्रम में आगे बढ़ने का। और बहनों, हर जो स्त्री होती है ना, उसका जो उसकी उसका अगर विवाह हो जाए तो सबसे बड़ी खुशी उसके लिए तब होती है जब वो पहली बार माँ बनती है।
2: बिल्कुल।
3: और पहली बार माँ बनने का जो सुख होता है ना, वो लाखों करोड़ों जितनी भी उसके अलावा जो खुशियाँ हैं, पैसे दे दो, धन दे दो, उससे भी बहुत बढ़कर होती है। तो प्रथम मातृत्व में

0: क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या खान पान होना चाहिए माँ के लिए, इसी बात पर हम आज आपको भेंट वार्ता सुनाएंगे। विषय हमारा यही है, प्रथम मातृत्व में सावधानियां एवं खान पान। और हमारी आज की भेंट वार्ताकार है डॉक्टर मुस्कान। तो आइए सुनते हैं भेंट वार्ता।
1: एक नन्ही सी धड़कन, एक नई उम्मीद और एक स्त्री के जीवन का सबसे खूबसूरत एहसास, वो है माँ बनने का सफर। पहली बार मातृत्व का अनुभव हर महिला के लिए भावनाओं से भरा होता है। मन में खुशी होती है, उत्सुकता भी, और कई बार थोड़ी घबराहट भी, क्योंकि जब एक स्त्री पहली बार माँ बनने वाली होती है तो उसके जीवन में बहुत कुछ बदलाव आते हैं। उसके खान पान, दिनचर्या, सोच और जिम्मेदारियों में एक नई शुरुआत होती है। इस समय उसे सिर्फ दवाइयों की नहीं बल्कि प्यार, देखभाल और सही जानकारी की जरूरत भी होती है। स्वस्थ भोजन, नियमित जांच, पर्याप्त आराम और परिवार का सहयोग, ये सभी बातें माँ और होने वाले शिशु दोनों के लिए जरूरी हैं। तो आइए आज के विशेष कार्यक्रम में हम बात करते हैं कि प्रथम मातृत्व यानी पहली बार माँ बनने का अनुभव, सावधानियाँ, खान पान की, ताकि हर माँ का सफर बने सुरक्षित, स्वस्थ और खुशियों से भरा। कार्यक्रम में आज हमारे साथ एक विशेष मेहमान हैं। आप हमारे साथ हैं डॉक्टर मुस्कान। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका हमारे अपने कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में। नमस्कार।
2: नमस्कार
1: डॉक्टर मुस्कान, सबसे पहला और अहम सवाल है कि प्रथम मातृत्व के दौरान महिला को किन किन सावधानियों का पालन करना चाहिए?
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस सवाल के लिए। पहली बार माँ बनने का अनुभव बहुत खास होता है
1: जी।
2: लेकिन इसके साथ कुछ सावधानियां रखना भी जरूरी है। मैं लिसनर्स को ये कहना चाहूंगी कि रेगुलर डॉक्टर चेकअप, हेल्दी डाइट और प्रॉपर रेस्ट को प्रायोरिटी दें। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई मेडिसिन ना लें। स्मोकिंग और अल्कोहल से जितना दूर रहा जा सके उतना दूर रहें। हालांकि वॉकिंग या प्रीनेटल योगा, कोई एक्सरसाइज हल्की फुल्की आप कर सकते हैं, बट ट्रेनर या डॉक्टर से सलाह लिए बिना ना करें। अगर ब्लीडिंग तेज या कोई भी अनयूजुअल सिम्टम आपको लगता है तो मेरे ख्याल से तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। सबसे जरूरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि पॉजिटिव सोच और फैमिली सपोर्ट प्रेगनेंसी का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, उसको हेल्दी बनाए रखने में हेल्प करता है। तो जितना हो सके उतना पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहने की कोशिश करें।
1: जी बहुत अच्छी बात। मैम, गर्भावस्था में पौष्टिक भोजन क्यों जरूरी माना गया है, इसके बारे में बताइए हमारी श्रोता सखियों को।
2: हाँ जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है मैं कहूँगी, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान माँ जो खाती है उसका सीधा असर हमें पता है कि बेबी की ग्रोथ पर पड़ता है।
1: बिल्कुल।
2: इसीलिए न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिशियस फूड होता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मैं सभी लिसनर्स को बताना चाहूंगी कि डाइट में ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि प्रोटीन हो, आयरन हो, कैल्शियम हो, फ्रेश फ्रूट्स हो और ग्रीन वेजिटेबल्स जरूर शामिल करें। पर्याप्त पानी पिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी हाइड्रेशन होता है, स्पेशली गर्मी के मौसम में। हेल्दी खाना सिर्फ बेबी की डेवलपमेंट के लिए नहीं बल्कि माँ की वीकनेस और अनीमिया से बचाने के लिए हेल्प करता है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, कोशिश करें जितना हो सके कि बैलेंस डाइट बनाए रखें, क्योंकि बैलेंस डाइट एक हेल्दी प्रेगनेंसी की बुनियाद होती है।
1: जी बहुत अच्छी। मैम, पहली बार माँ बनने पर स्त्री को अपने दिनचर्या में क्या बदलाव करने चाहिए, ये बड़ा अहम है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब लोग प्रेग्नेंट होती हैं महिलाएं तो समझ नहीं पाती हैं कि बदलाव क्या करना चाहिए और क्या नहीं।
2: हाँ जी, हाँ जी, जरूर। धन्यवाद। ये सवाल महिलाओं के लिए बहुत हेल्पफुल होगा जो भी पहली बार माँ बन रही हैं या फिर दोबारा से माँ बन रही हैं। पहली प्रेगनेंसी में रूटीन को थोड़ा हेल्दी बनाना जरूरी होता है, और पहली प्रेगनेंसी में ज़्यादा पता भी नहीं होता है, तो जैसे कि टाइम पर सोना, बैलेंस डाइट।

0: लेना चाहिए और स्ट्रेस जितना हो सके उतना कम से कम रखें। मैं ये कहना चाहूँगी कि हैवी काम या हैवी वेट ना उठाएं, उसे अवॉइड करें। अगर डॉक्टर अलाउ करता है तो हल्की फुल्की वॉकिंग या योगा भी आप कर सकते हैं
1: जी।
0: और हाँ, हाइड्रेशन और प्रॉपर स्लीप को बहुत इम्पोर्टेंस दें। पॉजिटिव एनवायरनमेंट और फैमिली का सपोर्ट इस फेज को और कंफर्टेबल बनाने में हेल्प करता है।
1: जी मैम, गर्भावस्था में फॉलिक एसिड और आयरन का क्या महत्व है?
0: ये बहुत जरूरी टॉपिक उठाया है आपने। प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड और आयरन दोनों माँ और बेबी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट होते हैं। फॉलिक एसिड बेबी के ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड डेवलपमेंट में हेल्प करता है और बर्थ डिफेक्ट से भी बचाता है। मैं तो सलाह दूंगी, अगर प्रेगनेंसी ऑलरेडी है तो आप फॉलिक एसिड और आयरन जरूर लें, और अगर आप पहले से प्लान कर रहे हैं तो आप पहले से भी फॉलिक एसिड शुरू कर सकते हैं। मैं लिसनर को ये भी सलाह दूंगी कि डॉक्टर के अकॉर्डिंग सप्लीमेंट जरूर लें और रेगुलर लें। सही न्यूट्रिशन हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए बहुत जरूरी है।
1: जी, ये बहुत अच्छी आपने बात कही कि पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। गर्भावस्था में किन किन खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए ये बताइए, बहुत अहम सवाल है ये।
0: हाँ जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि खान पान प्रेगनेंसी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाता है।
1: जी
0: प्रेग्नेंट वुमेन को बाहर का ऑयली प्रोसेस्ड फूड या कोई भी बासा खाना नहीं खाना चाहिए। कच्चा या आधा पका हुआ और अनहाइजीनिक चीज़ों से इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ता है, तो बाहर का खाना जितना हो सके उतना अवॉइड करें। और जी बिल्कुल, जैसे कि हमारी दिनचर्या में बहुत कॉमन होता है कैफीन, चाय, कॉफ़ी या सॉफ्ट ड्रिंक, इन सबसे आपको प्रेगनेंसी में लिमिट में रहना है, इसे लिमिट करना चाहिए। और मैं लिसनर्स को ये भी कहना चाहूँगी कि फ्रेश और घर का खाना बना हुआ खाना खाएं, बैलेंस्ड खाएं, एंड सबसे बेहतर घर का पका हुआ खाना ही होता है। और किसी भी तरीके का डाइट अगर आप चेंज कर रहे हैं तो ज़रूर एक बार अपने डॉक्टर से सलाह लें।
1: जी, बहुत खूब। इस अवस्था में पर्याप्त आराम और नींद का कितना महत्व होता है?
0: धन्यवाद, ये सवाल बहुत प्रैक्टिकल सवाल है, सबकी ये नींद सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती
1: जी,
0: है
1: जी।
0: बट प्रेगनेंसी में ये और भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान बॉडी को एक्स्ट्रा रेस्ट की जरूरत होती है, क्योंकि माँ और बेबी दोनों के लिए बॉडी कॉन्टिन्यूसली काम कर रही है। प्रॉपर स्लीप से स्ट्रेस कम होता है और एनर्जी भी बनी रहती है पूरे दिन के लिए, और साथ में इससे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम या कोई और प्रॉब्लम है वो भी थोड़ा कम होती है। मैं लिसनर्स को ये सलाह दूंगी कि कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें, दिन में हल्का रेस्ट लेना भी जरूरी है और फायदेमंद रहता है। कंफर्टेबल स्लीपिंग पोजीशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और कोशिश करें कि शांत, जहाँ लाइट कम हो, उतना कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में रहकर नींद लें, क्योंकि नींद और पीसफुल एनवायरनमेंट प्रेगनेंसी में बहुत बहुत हेल्प करता है।
1: बिल्कुल मैम, आखिरी सवाल, गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच क्यों जरूरी है, इसके बारे में बताइए।
0: हाँ जी, ये भी एक, मैं बोलूँगी, सबसे ज़रूरी सवाल है स्पेशली इंडिया में। रेगुलर प्रेगनेंसी चेकअप माँ और बेबी दोनों की सेफ्टी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इन चेकअप से डॉक्टर बेबी की ग्रोथ देखता है, ब्लड प्रेशर देखता है और अनीमिया जैसे इम्पोर्टेंट चीज़ों को मॉनिटर करता है। तो अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होती है तो उसका ट्रीटमेंट टाइम पर शुरू किया जा सकता है। इसीलिए मैं बोलूंगी कि जितनी भी जांचें आपको डॉक्टर के द्वारा लिखी गई हों उसे टाइम पर जाके कराएं। मैं सब लिसनर्स को ये भी कहना चाहूंगी कि एंटीनेटल विजिट जरूर करें, उसे इग्नोर ना करें, और रेगुलर मॉनिटरिंग से हेल्दी प्रेगनेंसी और सेफ डिलीवरी के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। धन्यवाद
1: जी डॉक्टर मुस्कान, आपने बहुत खूब और बहुत अच्छी जानकारी दी। उम्मीद है हमारे श्रोता सखियां इस बातचीत का लाभ जरूर उठाएंगी, और जो पहली बार माँ बनने वाली हैं, अगर वो सजग रहेंगी, गर्भ में पल रहे नन्ही सी जान, तो बच्चा और माँ दोनों स्वस्थ रहेगा और सुरक्षित भी। डॉक्टर मुस्कान, आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ी और आपने इतनी अच्छी जानकारियां इतने सरल शब्दों में दी, इस

0: के लिए आपका शुक्रिया।
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी।
2: प्रथम मातृत्व में सावधानियां एवं खान पान, इस विषय पर हमारी डॉक्टर मुस्कान जो भेंटवार्ताकार थी उन्होंने बहुत ही अच्छी जानकारी दी और हमारी सखी शिल्पी ने उनसे बहुत ही अच्छे प्रश्न पूछे और हमारी बहनों को इससे ज़रूर लाभ पहुंचा होगा, वो ज़रूर इसे सुन रही होंगी और लाभान्वित भी हुई होंगी। तो शिल्पी, ये तो भेंटवार्ता हमने बहनों को सुना दी, अपने मेहमान से मुलाकात करवा दी, तो अब कार्यक्रम में आगे चलते हैं।
3: बिल्कुल, और बहनों को सुनवाते हैं एक खूबसूरत सा गीत।

0: शिल्पी, तुमने तो बहुत ही खूबसूरत गीत सुनवाया। सच में अपनी तारीफ सुनना कितना अच्छा लगता है।
1: बिल्कुल सुभाषिनी, क्योंकि जो कार्यक्रम हमारा गृहलक्ष्मी है, महिला मंच है, हम बच्चों की बात करते हैं, बुजुर्गों की बात करते हैं, घर परिवार की बात करते हैं और समय समय पे सरकार की योजनाएं भी बताते हैं बहनों को, ताकि उसका वो लाभ उठाए। लेकिन अपनी तारीफ हम नहीं सुन पाते हैं, तो भाई आज अपनी तारीफ सुनने के लिए और बहनों को सुनवाने के लिए इस गीत को हमने चुना था, तो उम्मीद है हमारे सभी सखियों को यह गीत अच्छा लगा होगा।
0: बिल्कुल, तो अब चलते हैं अपने

0: कार्यक्रम के अगले पड़ाव में। और अगला जो हमारा बहनों से साझा करने के लिए जो विषय है, वो हम हमेशा बहनों के लिए जानकारी लेकर आते हैं। तो आज हम जानकारी लेकर आए हैं सुगम्य भारत अभियान। सुगम्य भारत अभियान भारत सरकार की एक राष्ट्रव्यापी प्रमुख पहल है, जिसे 3 दिसंबर 2015 को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगजनों के लिए बाधा मुक्त वातावरण तैयार करना और उन्हें जीवन के सभी क्षेत्रों में समान अवसर प्रदान करना है।
1: यह अभियान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित किया जाता है। अभियान मुख्य रूप से 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुधार पर केंद्रित है। पहला है निर्मित पर्यावरण, दूसरा सरकारी भवनों, स्कूलों, अस्पतालों और सार्वजनिक स्थलों को दिव्यांग जनों के लिए सुगम बनाना, जिसमें रेल, ब्रेल संकेत और सुलभ शौचालयों का निर्माण शामिल है।
0: और तीसरा है परिवहन प्रणाली, जिसके अंतर्गत ये सुनिश्चित किया गया है कि हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों और बसों जैसे सार्वजनिक परिवहन माध्यमों को दिव्यांग अनुकूल बनाना, ताकि वे स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सके। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, सरकारी वेबसाइटों, सार्वजनिक दस्तावेजों और टेलीविजन कार्यक्रमों को स्क्रीन रीडर, कैप्शन और सांकेतिक भाषा के माध्यम से दिव्यांगजनों के लिए सुलभ बनाना।
1: देश के 35 अंतर्राष्ट्रीय और 55 घरेलू हवाई अड्डों को दिव्यांगजनों के लिए सुगम बनाया जा चुका है। साथ ही प्रमुख श्रेणियों के रेलवे स्टेशनों पर सुगमता ऑडिट और सुधार कार्य किए गए हैं। अब तक केंद्र और राज्य सरकारों के हजारों भवनों में रैंप और लिफ्ट जैसी सुविधाएं प्रदान कर सुगम्य बनाया जा रहा है।
0: सुगम्य भारत अभियान के अंतर्गत सरकार ने एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया है बहनों, जिस पर नागरिक सुगमता से जुड़ी समस्याओं की फोटो अपलोड कर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यह अभियान दिव्यांगजनों के सम्मानजनक जीवन और समाज की मुख्य धारा में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
1: तो बहनों, आज कार्यक्रम इतना ही, और कार्यक्रम में हम हमेशा आपसे मिलेंगे और अच्छी अच्छी जानकारियां लेकर आएंगे। आपको बता दें कि आज कार्यक्रम की प्रस्तुति थी नूतन प्रसाद की,
0: और इसी के साथ अपनी सखी सुभाषिनी
1: और शिल्पी को दें इजाजत।
0: नमस्कार। गृहलक्ष्मी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गृहलक्ष्मी कार्यक्रम, आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। अब आइए हम आपको सुनवाते हैं प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। प्रायोजक हैं NCERT।

0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: जल संरक्षण के सारे काम सुख समृद्धि के रचे आयाम।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गर्मी के इस मौसम में आपके विचार की प्रासंगिकता और भी अधिक बढ़ जाती है। जी हां श्रोताओं, जल अमूल्य है, इसे बूंद बूंद बचाना हमारी जिम्मेदारी है। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
2: छत्तीसगढ़ रायपुर से नरेंद्र कुमार जाटव, संदीप जाटव, अनीता जाटव और राधिका रानी जयपुरिया जी ने लिखा है, मिठाइयों का सम्मेलन कहानी बहुत पसंद आई, आपको बधाई।
0: आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी अर्मी हूँ।
2: ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। स्वागत है एक बार फिर

0: से आप सबका हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में।
1: तो श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी गर्मी से बचने के कुछ उपायों पर,
0: जी
1: और ये भी जाना था कि 12 बजे से 4 बजे तक खास तौर से हमें गर्मी के मौसम में बाहर क्यों नहीं निकलना चाहिए। तो अजीत जी, जरा श्रोताओं को ये भी जानकारी दे दें कि आज की चर्चा किस विषय पर होगी।
0: विमलेश जी, आज हम ये चर्चा करेंगे कि गर्मी के मौसम में हमारा खान पान कैसा होना चाहिए।
1: जी
0: लेकिन श्रोताओं, इससे पहले कि हमारी चर्चा आगे बढ़े, एक रोचक लेकिन महत्वपूर्ण बात आपको हम बताना चाहते हैं, और वो ये कि परंपरागत धारणाओं के अनुसार गर्मी के मौसम में सबसे कठिन दिन कब आते हैं।
1: जी अजीत जी, ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि वो समय अब आने ही वाला है। आज 13 मई हो गई, बस कुछ दिन और। जी हाँ श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं नवतपा की। उत्तर और मध्य भारत में इसका प्रभाव विशेष रूप से दिखाई पड़ता है। इन दिनों हमें अपना बहुत ही खास ध्यान रखना चाहिए। अजीत जी, नवतपा किसे कहते हैं ये तो बताइए जरा।
0: जी विमलेश जी, नौ तपा का अर्थ है 9 दिनों तक तपना, यानी 9 दिनों तक भयंकर ताप।
1: जी
0: ये वो अवधि है जब हमारे परंपरागत खगोल ज्ञान और मान्यता के अनुसार सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है, और इन दिनों में लगभग 9 दिनों तक प्रचंड गर्मी पड़ती है।
1: तो श्रोताओं, आइए अब जानते हैं कि सामान्यतः ये समय कब आता है। आमतौर पर मई महीने के अंत यानी लगभग 25 मई से जून महीने की शुरुआती यानी 2 जून तक। जलवायु परिवर्तन के कारण ये समय थोड़ा इधर उधर हो सकता है। इस समय विशेषकर उत्तर भारत में लू चलती है और आसमान साफ होता है, इसलिए छाया की भी गुंजाइश नहीं होती है।
0: जी बता दें श्रोताओं कि यह प्राचीन अनुभवों के आधार पर परंपरागत मान्यता है। वैसे नवतपे में गर्मी बड़ी खतरनाक हो जाती है, लेकिन इसे वरदान भी माना गया है। क्यों?
1: नवतपे में जितनी गर्मी पड़ेगी, माना जाता है कि मानसून उतना ही अच्छा आएगा।
0: जी
1: आइए अब करते हैं चर्चा गर्मी के मौसम में खान पान की।
0: तो विमलेश जी, आपसे ही शुरुआत करें।
1: जी अजीत जी, श्रोताओं, गर्मी के मौसम में खास ध्यान ये रखना चाहिए कि हमारा आहार पौष्टिक लेकिन हल्का हो।
0: और हाँ, इस मौसम में नींबू पानी, छाछ, दही जैसे प्राकृतिक उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करें।
1: सबसे जरूरी बात तो ये है श्रोताओं कि खाली पेट घर से न निकलें।
0: जी
1: अब बात करते हैं मौसमी फलों के बारे में। अजीत जी, मुझे लगता है कि प्रकृति को सचमुच हमारी बहुत चिंता रहती है।
0: जी बिल्कुल, इसलिए तो प्रकृति को माँ भी कहा गया है।
1: जी सही कहा, जैसे माता को हमारी चिंता रहती है, वैसे ही प्रकृति भी हमारी चिंता करती है। श्रोताओं जरा सोचिए ना, गर्मी के मौसम में ही खरबूजे, तरबूज जैसे फल प्रकृति क्यों उगाती है, खीरे और ककड़ियाँ क्यों उगाती है, आम और दूसरे मौसमी फल क्यों होते हैं, ये फल सर्दियों में क्यों नहीं उगते।
0: विमलेश जी, आमतौर पर लोग कहेंगे कि इसमें भला सोचने की क्या बात है, ये गर्मी के फल हैं तो गर्मी में तो होंगे ही।
1: जी अजीत जी, आम लोग ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ फल जैसे खरबूज, तरबूज, ककड़ी और खीरे में 80 से 90% तक पानी होता है।
0: जी
1: इन्हें खाने से हमारे शरीर में पानी की मात्रा बनी रहती है। इतनी अधिक पानी की मात्रा होने के कारण ये पचने में भी आसान होते हैं।
0: जी विमलेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा, प्रकृति को सचमुच हमारी चिंता रहती है, तभी तो वो ऐसे फल उगाती है जिनसे कि हम स्वस्थ रहें। हमें प्रकृति माता को जरूर धन्यवाद देना चाहिए।
1: जी
0: लेकिन दुखद है कि प्रकृति हमारे स्वास्थ्य की जितनी चिंता करती है ना, उतनी प्रकृति के स्वास्थ्य की चिंता हम नहीं करते।
1: तो श्रोताओं, कैसी लगी हमारी ये जानकारी, जरूर बताइएगा। और अब सुनते हैं आज का प्रश्न।
0: तो आज का प्रश्न है, प्रकृति को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: प्रकृति को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है?
0: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है, और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, शीर्षक है गर्मी।
1: ये कार्यक्रम गर्मी के मौसम की जानकारी देते हुए बताता है कि गर्मी के मौसम में हमें अपना ध्यान किस तरह से रखना चाहिए, और गर्मी के मौसम में पैदा होने वाली साग सब्जियाँ और फल कौन कौन से होते हैं जिनका हमें भरपूर सेवन करना चाहिए।
2: बहुत पुरानी बात है, दो बहनें थीं, सोना और रूपा। दोनों अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहती थीं। गर्मी का मौसम था, दोनों बाग में खेल रही थीं।
3: अकर बकर बम्बे वो 80 90 पूरे 100 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा।
4: अब तेरी बारी है,
5: तेरी। तुम्हारी बात, तुम सुना।
4: अच्छा ठीक है,

0: वो सामने घड़ा रखा है, चलो वहाँ चलकर देखते हैं।
1: हाँ चलो चलो, वहाँ चलो, पे पानी
0: चलो
1: होगा।
0: चलते हैं।
2: सोना और रूपा ने घड़े का ढक्कन हटाकर देखा तो उसमें पानी था। दोनों बहुत खुश हुई। रूपा पीने के लिए पानी निकाल ही रही थी कि तभी एक आवाज आई।
3: कौन है?
1: दीदी,
3: कौन है?
1: दीदी।
0: अम्मा जी, मैं हूँ सोना और ये है मेरी बहन रूपा।
1: अम्मा जी, हमें बहुत प्यास लगी है,
0: हम थोड़ा पानी पी लें?
4: हाँ हाँ, क्यों नहीं, पी लो पानी। बच्चों पानी पी लो, ढक्कन ठीक से लगा देना। पी लिया पानी? प्यास बुझी?
1: हाँ, हाँ पर ठंडा पानी था।
0: लेकिन अम्मा, आप कौन है?
4: मैं एक मौसम हूँ। मेरे आने से तुम्हें बहुत प्यास लगती है और बहुत गर्मी भी लगती है, पर मैं अपने साथ तरह तरह के फल भी लाती हूँ, जैसे खरबूजा, तरबूज, खीरा, ककड़ी और भी बहुत सारी चीजें। अच्छा भला बताओ तो मैं कौन हूँ?
1: कौन है आप?
4: नहीं समझे?
1: नहीं,
0: नहीं।
4: अच्छा तो फिर ये पहेली सुनो।

0: हवा चलते हैं
1: और सारे दिन पानी भी पीते हैं।
0: ऐसा मौसम
2: अब गर्मी अम्मा है।
3: अब बिल्कुल ठीक समझी। मैं गर्मी यानी गर्मी का मौसम ही तो हूँ।
1: गर्मी अम्मा आप कब आती हैं? पता ही नहीं चलता।
3: सीधी सी बात है, सर्दी जब जाने की तैयारी करती है गर्म कपड़ों में तुम्हें गर्मी लगती है, तो बस समझ लो कि मेरा मौसम शुरू यानी यानी
1: हाँ, जब होली आती है तो गर्मी भी तो लगनी शुरू हो जाती है।
3: हाँ
1: अम्मा मुझे तो धूप में बहुत गर्मी लग रही है।
3: भाई मेरे मौसम में गर्मी ही तो लगती है। चलो ऐसा करते हैं, उस पेड़ की छाया में बैठते हैं, ठीक है?
1: हाँ चलो अम्मा चलते हैं।
4: चलो
5: सोना और रूपा गर्मी अम्मा के साथ जाकर पेड़ की छाया में बैठ गईं। इतने में पेड़ से दो आम गिरे।
1: अरे ये क्या गिरा?
3: मैं देखती हूँ, तुम लोग यहीं बैठो।
5: वहां दो आम गिरे थे, बच्चे भी दो और आम भी दो, लेकिन अम्मा ने वो आम छिपा लिए।
1: अम्मा आप क्या छुपा रही हैं? अम्मा ये आपके हाथ में क्या है?
3: मेरे ही मौसम का एक फल है।
1: दिखाओ ना।
3: दूंगी तुम्हें दूंगी, पर पहले तुम्हें इसका नाम बताना पड़ेगा।
1: इसका नाम
3: सोचो, मेरे मौसम का सबसे स्वादिष्ट फल जो बच्चों को बड़ों को सबको बहुत पसंद है, खट्टा मीठा रसदार फल। सोचो।
1: स्वाद है,
0: पसंद है,
1: सबसे अच्छा भी है।
0: कौन सा फल है?
1: कौन सा फल
3: नहीं समझी?
1: नहीं।
3: अच्छा

0: झट से तुम बोलो ये क्या है, बोलो ना।
1: तुम तो बड़ी समझदार हो।
2: आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम कुल्फी वाला, बर्फ का गोला ले लो, चुस्की ले लो।
1: हाँ बच्चों, मेरे मौसम में तुम लोग खूब आइसक्रीम खाते हो, बर्फ के गोले खाते हो, है ना, कुल्फी भी खाते हो ना। अरे तुम्हारा बस चले तो तुम दिन भर आइसक्रीम ही खाते रहो, है ना।
3: अरे कोई खाने को दे तब ना।
4: अरे लगता है बहुत तेज आंधी आने वाली है, तुम लोग जल्दी से घर चले जाओ।
1: और हाँ, ये आम तो लेती जाओ।
3: लाओ अम्मा, लाओ अम्मा,
1: लो।
3: गर्मी अम्मा, आप बहुत अच्छी हैं।
1: तुम्हें मीठे मीठे आम जो खिलाती हूँ।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम गर्मी, और श्रोताओं आइए अब चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। और हमारा अगला कार्यक्रम है कारगिल की शौर्य गाथा।
1: ये कार्यक्रम कारगिल युद्ध से ठीक पहले की परिस्थितियों की जानकारी देता है और वर्णन करता है कि कारगिल युद्ध के दौरान विपरीत और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के होते हुए भी किस प्रकार से भारतीय सेना ने अपार धैर्य और शौर्य का प्रदर्शन करते हुए विजय की पताका फहराई।
2: मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। सुप्रसिद्ध कवि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखी गई ये पंक्तियां कितनी जीवंतता से उन पराक्रमी युद्ध सैन्य महानायकों के प्रति असीम श्रद्धा की भावनाओं को जगाती है।
3: विजयश्री उन्हीं के लिए निर्धारित होती है जो कठिन और विपरीत परिस्थितियों में भी अदम्य साहस और दृढ़ निश्चय के साथ अविचलित और अडिग खड़े रहते हैं। आज का कार्यक्रम हम श्रद्धा सहित समर्पित करते हैं उन पराक्रमी योद्धाओं को जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी।
2: जी हाँ, आज हम बात करेंगे कारगिल युद्ध की, जो नियंत्रण रेखा के पास जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था। स्वतंत्र भारत के इतिहास में ये ऐसी

0: शांति दे दी।
1: जी हाँ, आज हम बात करेंगे कारगिल युद्ध की, जो नियंत्रण रेखा के पास जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था। स्वतंत्र भारत के इतिहास में ये ऐसी

आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री ने घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार किया छोटा, ईंधन की बचत और आर्थिक मजबूती के लिए उठाया कदम। झारखंड कांग्रेस की नई कमेटी पर विवाद और गहराया। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के बाद सांसद सुखदेव भगत ने भी प्रदेश नेतृत्व के फैसलों पर उठाए गंभीर सवाल। राज्य में श्रमिकों के लिए साल भर चलने वाला मुफ्त स्वास्थ्य जांच अभियान शुरू। रांची के ईएसआईसी अस्पतालों में होगी 40 से अधिक उम्र के कामगारों की जांच। राज्य के पूर्व मंत्री और गोमिया से 4 बार विधायक रहे माधवलाल सिंह का निधन। सादगी और जनसेवा के लिए मशहूर माधव बाबू के जाने से राज्य भर में शोक। और रेल यात्रियों की सुविधा को लेकर रांची और टाटानगर से दिल्ली के लिए 23 मई को चलेंगी जनजाति दिवस स्पेशल ट्रेनें, 25 मई को होगी वापसी।

0: और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी हैं। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री के काफिले में वाहनों की संख्या में कमी गुजरात और असम की उनकी हालिया यात्राओं के दौरान लागू की गई थी। यह कदम पश्चिम एशिया के संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। प्रधानमंत्री ने बिना नई खरीद के काफिले में इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करने के निर्देश दिए हैं। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के गठन पर विवाद गहरा गया है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के बाद लोहरदगा सांसद सुखदेव भगत ने प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश पर निशाना साधते हुए कहा कि कमेटी बनाने से पहले पूर्व अध्यक्षों को भरोसे में नहीं लिया गया। उन्होंने डिलिमिटेशन कमेटी में किसी भी आदिवासी नेता को जगह न मिलने पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।
1: केशव महतो कमलेश जी वो पार्टी के अध्यक्ष हैं ना, कोई व्यक्तिगत नहीं है और उसमें लाइकिंग डिसलाइकिंग नहीं चलता। आदिवासियों को सीटें घटी और हमें एक को रखा नहीं है। ये क्या कमेटी आपने बनाया है? और आपने एसआईआर कमेटी रखा लेकिन डिलिमिटेशन में सुखदेव भगत नहीं, बालमुचू जी नहीं, रामेश्वर जी नहीं, बंधु तिर्की जी नहीं, उनका प्रतिनिधित्व आपने नहीं दिया।
0: झारखंड में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के निर्देश पर श्रमिकों के लिए वर्ष भर चलने वाला निशुल्क स्वास्थ्य जांच अभियान शुरू हुआ है। इसके तहत नामकुम और आदित्यपुर ईएसआईसी अस्पतालों में 40 वर्ष से अधिक उम्र के श्रमिकों की जांच की जाएगी। बीमा आयुक्त प्रायण सिन्हा ने नामकुम अस्पताल का निरीक्षण कर अभियान को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए हैं। धनबाद नगर निगम बोर्ड की बैठक में राज्य सरकार द्वारा होल्डिंग टैक्स में की गई 10% बढ़ोतरी का सर्वसम्मति से विरोध किया गया। मेयर संजीव सिंह की अगुवाई में बोर्ड ने टैक्स वृद्धि वापस लेने का प्रस्ताव पारित किया। बैठक में पेयजल संकट दूर करने के लिए पानी टंकी स्थापित करने की मंजूरी भी दी गई।
2: बोर्ड में इस चीज का निर्णय लिया गया कि यह प्रस्ताव सरकार को भेजा जाएगा कि जो टैक्स बढ़ोतरी किया गया 10% वो उसको पुनः पहले ही की तरह रखा जाए, उसको बढ़ोतरी ना किया जाए। और चूंकि धनबाद नगर निगम क्षेत्र के लोगों के हित में है, इसके लिए ये बोर्ड पूरा एक निर्णय लिया है।
0: राज्य के पूर्व मंत्री और गोमिया से 4 बार विधायक रहे माधवलाल सिंह का आज रांची के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार थे। हमारे बोकारो संवाददाता ने बताया कि उनके निधन की खबर फैलते ही पूरे राज्य में शोक व्याप्त है।
3: माधवलाल सिंह गोमिया विधानसभा से वर्ष 1985-1990, वर्ष 2000 और 2009 में विधायक चुने गए। उन्होंने वर्ष 2000 में बिहार सरकार और झारखंड गठन के बाद 2003 में मंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली। सरल स्वभाव और स्पष्टवादी व्यक्तित्व के कारण वे बोकारो में काफी लोकप्रिय थे। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो।
0: कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे आज धनबाद पहुंच रहे हैं। वे जिला प्रशासन, बीसीसीएल और जेआरडीए के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। इसके अलावा वे बेलगढ़िया टाउनशिप का दौरा कर विकास योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और परिसंपत्ति वितरण करेंगे। केंद्र सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जो आज से प्रभावी हो गया है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि सोने और चांदी पर 5% तथा प्लैटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। इसके अलावा अनुपालन मानदंडों की पूर्ति के अंतर्गत कीमती धातु के प्रयुक्त उत्प्रेरक पर 4.35% आयात शुल्क निर्धारित किया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के चलते लोगों से सोने की खरीदारी से बचने की अपील की थी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। दक्षिण पूर्व रेलवे ने यात्रियों की भीड़ के मद्देनजर रांची और टाटानगर से दिल्ली के लिए जनजातीय दिवस

0: स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। रांची दिल्ली स्पेशल 23 मई को और टाटानगर आनंद विहार स्पेशल भी इसी दिन रवाना होगी। दोनों ट्रेनें 25 मई को दिल्ली से वापस लौटेंगी। रांची पुलिस ने दिपड़ी इलाके में बड़े नशा कारोबार का भंडाफोड़ करते हुए एक महिला सहित 6 तस्करों को गिरफ्तार किया है। कोतवाली एएसपी निखिल राय के नेतृत्व में 4 थानों की पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में ब्राउन शुगर, गांजा, नशीले इंजेक्शन और 8,74,200 रुपए नकद बरामद किए हैं। एएसपी ने बताया कि जांच में यह भी सामने आया है कि नशे के सौदागरों ने इलाकों में अलग अलग स्पॉट बना रखे थे, जहां प्लास्टिक के टेंट लगाकर ड्रग्स का सेवन कराया जाता था।
1: हमें सूचना मिली थी कि खेत मोहल्ला हिंडपिरी में कुछ लोग हैं जो नशे का अवैध कारोबार कर रहे हैं। हमने तुरंत छापा मारा और 5 से 6 लोग को हमने अरेस्ट किया, तो हमें उसके अंदर टोटल लगभग 300 ग्राम गांजा, टेजोविन इंजेक्शन के 20 कैप्सूल, नाइट्रोजन 10 टैबलेट्स 40 की मात्रा में और लगभग 5 ग्राम ब्राउन शुगर और 8.74 लाख कैश बरामद किया।
0: घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों ने शुरुआती नुकसान की भरपाई करते हुए आज सुबह के सत्र में मामूली बढ़त दर्ज की। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सेंसेक्स 261 अंक बढ़कर 74,820 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 97 अंक बढ़कर 223,476 पर पहुंच गया। राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,41,500 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,78,000 रुपये प्रति किलो है। और अब मौसम का हाल। मौसम विभाग ने आज पलामू प्रमंडल और कुछ अन्य जिलों को छोड़ रांची सहित अधिकांश झारखंड में येलो अलर्ट जारी किया है, जहां 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं और बारिश हो सकती है। वहीं 15 मई को रांची, धनबाद और संताल परगना सहित कई जिलों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारत में इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन इस सप्ताह हो सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मानसून आ जाएगा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित होने वाली अंडर 17 राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए कलकत्ता पब्लिक स्कूल ओरमांझी के 9 खिलाड़ियों का चयन झारखंड टीम में हुआ है। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले इन खिलाड़ियों में अनुष्का, शिवानी, सृजल, आकांक्षा और रिया सहित कुल 9 छात्र छात्राएं राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री ने घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार किया छोटा, ईंधन की बचत और आर्थिक मजबूती के लिए उठाया कदम। झारखंड कांग्रेस की नई कमेटी पर विवाद और गहराया वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर के बाद सांसद सुखदेव भगत ने भी प्रदेश नेतृत्व के फैसलों पर उठाए गंभीर सवाल। राज्य में श्रमिकों के लिए साल भर चलने वाला मुफ्त स्वास्थ्य जांच अभियान शुरू। रांची के ईएसआईसी अस्पतालों में होगी 40 से अधिक उम्र के कामगारों की जांच। राज्य के पूर्व मंत्री और गोमिया से 4 बार विधायक रहे माधवलाल सिंह का निधन। सादगी और जनसेवा के लिए मशहूर माधव बाबू के जाने से राज्य भर में शोक। और रेल यात्रियों की सुविधा को लेकर रांची और टाटानगर से दिल्ली के लिए 23 मई को चलेंगी जनजाति दिवस स्पेशल ट्रेनें, 25 मई को होगी वापसी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, अब आइए हम आपको सुनवाते हैं उपशास्त्रीय संगीत कार्यक्रम अनुरंजनी में। हमारी आज की कलाकार हैं श्रीमती सिद्धेश्वरी देवी। इनसे आप सुनेंगे खमाज में ठुमरी। तबले पर संगत कर रहे हैं चतुरलाल और सारंगी पर साबरी खान।

श्रीमती सिद्धेश्वरी देवी से अभी आप ऊपर शास्त्रीय संगीत सुन रहे थे, खमाज में ठुमरी, और ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। अब आइए सुनते हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। हमारे आज के कलाकार हैं भूपेंद्र और मिताली सिंह। इनसे आप सुनेंगे चंद गजलें। ये पहली गजल आइए शमात फरमाते हैं।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं सुगम संगीत के कार्यक्रम में गजल। लीजिए ये अगली गजल सुनिए, आवाज है जगजीत सिंह की।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत के कार्यक्रम में गजल, और इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, इस समय दोपहर के 2 बजने वाले हैं और आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे मिड न्यूज़ और दोपहर समाचार। इसके लिए कीजिए थोड़ा सा इंतज़ार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। श्री एन रंगासामी ने रिकॉर्ड पांचवीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए। सीबीएसई ने अखिल भारतीय सीनियर सेकेंडरी कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए। सरकार द्वारा आयात शुल्क को लगभग 15% किए जाने के बाद सोने और चांदी की कीमतों में 6% से अधिक की वृद्धि। मौसम विभाग ने कहा इस साल मॉनसून जल्दी आने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से। अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवगठित सरकार ने 144 विधायकों का बहुमत साबित कर विश्वास मत हासिल कर लिया है। एडप्पडी पलनीसामी के नेतृत्व में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के 22 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। एक रिपोर्ट।
1: लोक निवास में आयोजित एक सादे समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने मुख्यमंत्री और आज शपथ लेने वाले दो मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इससे पहले मुख्य सचिव शरद चौहान ने केंद्र सरकार की उस अधिसूचना को पढ़कर सुनाया जिसमें मुख्यमंत्री और दो मंत्रियों की नियुक्ति की गई थी। समारोह के बाद श्री रंगासामी पुदुचेरी विधानसभा भवन स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय गए और अपना कार्यभार संभाला। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार पुदुचेरी को सिंगापुर की तर्ज पर विकसित करने की दिशा में काम करेगी। रंगासामी के नेतृत्व में लगातार

0: दूसरी बार प्रदेश में एनडीए की सरकार बनी है। अन्य मंत्रियों, विभागों और विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सरकारी सचेतक की नियुक्ति को लेकर एनडीए में विचार विमर्श जारी है। विभिन्न एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
1: ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड पांचवीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पश्चिम बंगाल में कोलकाता में 18वीं विधानसभा के नव निर्वाचित पद ग्रहण सीट से विधायक के रूप में शपथ ली, जबकि नंदीग्राम सीट रिक्त रखी गई है। इसके बाद मंत्रिमंडल के 5 अन्य सदस्यों ने भी शपथ ग्रहण की। वहीं नौदा सीट से विजयी आम जनता उन्नयन पार्टी के विधायक हुमायूं कबीर ने भी शपथ ली। कबीर ने रजनीनगर सीट से भी जीत हासिल की है। अध्यक्ष तापस राय ने सभी विधायकों को शपथ दिलाई। राज्य में फालता विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को पुनर्मतदान होना है। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज कर दिए हैं। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह SPG प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी व्यवस्थाएं।
2: एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। सूत्रों के अनुसार काफिले का आकार कम करने के बावजूद प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी महत्वपूर्ण सुरक्षा व्यवस्थाएं यथावत बनी रहेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जहां भी संभव हो बिना कोई नई खरीद किए उनके काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन शामिल किया जाए। अंकित की रिपोर्ट के साथ अमीषा।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करके और पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को अपनाकर आर्थिक स्थिरता में योगदान देने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नागरिकों से की गई 7 अपीलों के अनुरूप है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने भी मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने को कहा है। एक रिपोर्ट।
3: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों, अन्य अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया है और सरकारी काफिले से अनावश्यक वाहनों को हटाने का निर्देश दिया है। उन्होंने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने, अनावश्यक सोने की खरीद से बचने और घर से काम करने को बढ़ावा देने की अपील भी की। राज्य सरकार ने मेट्रो सेवाओं और सार्वजनिक परिवहन के अधिक उपयोग पर बल दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। श्री यादव ने मंत्री परिषद के सदस्यों से राष्ट्रीय हित में पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे, कारपूलिंग अपनाएंगे और मेट्रो तथा बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
1: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी राज्य में पेट्रोल और डीजल की बचत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने जनता से वाहनों का अनावश्यक उपयोग न करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम करने का निर्णय लिया है और मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को वाहनों के उपयोग में संयम बरतने के निर्देश दिए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र रोल नंबर डालकर आधिकारिक वेबसाइट, डिजी लॉकर और उमंग ऐप पर अपना परिणाम देख सकते हैं। इस वर्ष CBSE की कक्षा 12वीं की विज्ञान, वाणिज्य और मानविकीय विषयों की परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 अप्रैल तक आयोजित की गई थी। CBSE ने एक बयान में बताया कि 17,68,000 से अधिक विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। इनमें से 15,07,000 से अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इस वर्ष का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 85.20% है। छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 88.86% है, जबकि छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 82.13% है। भारत कल से शुरू होने वाली 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। विदेश मंत्री ने आज सुबह चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेज मैककेना से मुलाकात की। एक रिपोर्ट।
4: श्री फ्रांसिस्को ब्रिक्स विदेश मंत्री

0: नेतृत्वों की कल से शुरू होने वाली दो दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल प्रमुख भाग लेंगे। श्री फ्रांसिस्को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान भी करेंगे। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
1: डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने बाजारों और स्रोतों में विविधता लाने, प्राथमिकता वाली वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने और सेवा अर्थव्यवस्था को सुगम बनाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के लेख को साझा किया है, जिसमें बताया गया है कि पंजाब में आधुनिक रेलवे स्टेशन और बेहतर रेलवे नेटवर्क से प्रगति के नए द्वार खुल रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये परिवर्तन क्षेत्र के लोगों के लिए अनेक अवसर लेकर आ रहा है। उन्होंने कहा कि ये लेख दर्शाता है कि पंजाब में किस प्रकार बदलाव आ रहा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 16वीं पेंशन अदालत का शुभारंभ किया। देश भर के पेंशन भोगियों ने इसमें हाइब्रिड मोड के माध्यम से भाग लिया। इन अदालतों का उद्देश्य पेंशन संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए मौके पर भी निर्णायक समाधान प्रदान करना है, जिसमें पेंशन भोगियों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता न पड़े, उनका समय और धन दोनों की बचत हो और उन्हें एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र प्राप्त हो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने वांछित भगोड़े प्रदीप सिंह को अजरबैजान से सफलतापूर्वक भारत प्रत्यर्पित करा लिया है। सीबीआई ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के समन्वय से यह कार्य किया। सीबीआई ने बताया कि नई दिल्ली के विशेष प्रकोष्ठ पुलिस स्टेशन में मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ एनडीपीएस अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज एक मामले में प्रभदीत वांछित था। इस मामले में बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किए गए और कई सह आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। नीट यूजी परीक्षा के कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का दल जयपुर पहुंचा। दल ने राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह एसओजी द्वारा हिरासत में लिए गए कई लोगों से पूछताछ की। जांच के अंतर्गत एसओजी ने सीकर और आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम ने केवल नीति निर्माण के बजाय अंतर्राज्यीय समन्वय, सुगम सामाजिक सुरक्षा और श्रम कानूनों के सुदृढ़ कार्यान्वयन जैसे प्रणालीगत सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया। वे प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा, सरकार और निजी क्षेत्र की साझा जिम्मेदारी विषय पर आयोजित आयोग की बैठक को संबोधित कर रहे थे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मंत्रालय के सहयोग से विकसित वाइब्रेंट ग्राम प्रोग्राम 2026 के लिए माय भारत प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय स्तर की प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। मंत्रालय ने बताया कि इस महीने की 20 तारीख तक आयोजित होने वाली ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में देश भर के युवा भाग ले सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। सोने और चांदी की कीमतों में आज 6% तक का भारी उछाल देखा गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के वायदा बाजार में जून अनुबंध के अंतर्गत सोना लगभग 6% बढ़कर 1,62,597 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि जुलाई अनुबंध के अंतर्गत चांदी लगभग 6.4% बढ़कर 2,96,821 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दिन के दौरान सोने और चांदी की कीमतों में 8% तक की वृद्धि दर्ज की गई। सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6% बढ़ाकर 15% कर दिया है। घरेलू शेयर बाजार के आज दोपहर के कारोबार में 0.5% की वृद्धि देखने को मिली। सेंसेक्स 403 अंक बढ़कर 74,962 जबकि निफ्टी 146 अंक की वृद्धि के साथ 23,526 पर था। भारत में इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मॉनसून का आगमन जल्दी हो सकता है। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मॉनसून आ जाएगा। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून आमतौर पर हर साल 1 जून के आसपास केरल में शुरू होता है। विभाग ने देश के पूर्वोत्तर तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज ओलावृष्टि हो सकती है। दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश

झारखंड और पंजाब में भी आज बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ वर्षा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1998 में आज के दिन भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का स्मरण किया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परमाणु परीक्षणों ने देश के अडिग संकल्प को प्रदर्शित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। श्री फखरुद्दीन अली अहमद देश के पांचवें राष्ट्रपति थे। उन्होंने 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक पदभार संभाला। आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। उधर बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने चीनी ताइपे की तुंग स्यू टोंग को सीधे सेट में 21-9 21-12 से सिर्फ 33 मिनट में हरा दिया। छठी वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु का क्वार्टर फाइनल में मुकाबला डेनमार्क के अमाली शुल से होगा। वहीं पूर्व विश्व चैंपियन किदाम्बी श्रीकांत ने सिंगापुर के लो केन यू को आसानी से 21-14 21-15 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। अगले दौर में उनका सामना चीनी ताइपे की सू ली योंग से होगा। हालांकि भारत के आयुष शेट्टी जापान के कोदाई नाराउका से हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 75 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में कोरिया की सेंगमिन ली को 5-0 से हराकर लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं। अन्य चार मुक्केबाजों को कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। श्री एन रंगासामी ने रिकॉर्ड 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए। सीबीएसई ने अखिल भारतीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए। सरकार द्वारा आयात शुल्क को लगभग 15% किए जाने के बाद सोने या चांदी की कीमतों में 6% से अधिक की वृद्धि। मौसम विभाग ने कहा इस साल मॉनसून जल्दी आने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, अब आइए सुनते हैं फौजी भाइयों के लिए कार्यक्रम जय भारती। इसके पहले ये संदेश।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर

0: डट पड़े भारतीय सेना।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
2: अपने से ऊपर का जो स्टूडेंट है, हमसे ज्यादा होशियार है, उसको कहो भी 5-10 मिनट मेरे साथ बैठो, मुझे बताओ मैं ये सोच रहा हूँ ठीक है क्या, तुम करेक्ट करो।
1: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
3: श्रोताओं, जय भारती कार्यक्रम में आइए हम आपको सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत अपने सैनिक जवान भाइयों के लिए, और उन्हें हमारा दिल से सलाम है।
4: श्याम, तुझे पता है तुम्हारे बाबूजी को कभी प्यार का पैगाम भेजना ही नहीं आया।
5: क्या कहती हो श्यामू की माँ?
4: और क्या, आपको जब भी प्यार जताना होता था हिंदुस्तान का झंडा भेज देते थे।
5: माँ जानती हो बाबूजी ने सबसे ज्यादा प्यार किससे किया है? इस मुल्क से, इस देश से।

श्रोताओं, हम अपने देश के प्रहरी, हमारे सैनिक भाइयों के लिए, हमारे फौजी भाइयों के लिए, हम उनका गुणगान जितना करें वो कम है, और उनके लिए हम हमेशा सम्मान की ही नज़रों से हम उन्हें देखना चाहते हैं, और हमेशा ऐसा ही करना चाहिए।

हमारे सैनिक भाइयों के लिए। हमारी यही प्रार्थना रहेगी कि वो हमेशा स्वस्थ रहें, सरहद पर डटे हैं, हर मौसम में वो डटे हैं, तो उनके लिए हमेशा ऊपर वाला साथ देता रहे।

हमारे सैनिक कहते हैं देश तुम मेरी शान है, लेकिन हम कहते हैं हमारे फौजी भाई हमारे देश की आन बान और शान है, और इसीलिए वो हमारे देश की रक्षा करते हैं और हम उन्हें सलाम करते हैं।

0: श्रोताओं, इसी देशभक्ति गीत के साथ ही आज का जय भारती कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। अब आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। इधर गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। यह कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करके और पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को अपनाकर आर्थिक स्थिरता में योगदान देने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नागरिकों से की गई 7 अपीलों के अनुरूप है। इस वर्ष सीबीएसई की 12वीं बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 अप्रैल 2026 तक विज्ञान, वाणिज्य और कला संकाय के लिए आयोजित की गई थीं। बोर्ड के अनुसार परीक्षा में 17,68,000 से अधिक विद्यार्थी शामिल हुए, जिनमें से 15,07,000 से अधिक छात्र छात्राएं सफल हुए हैं। इस वर्ष कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 85.20% रहा। छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 88.86% जबकि छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 82.13% दर्ज किया गया। गोमिया के पूर्व विधायक तथा झारखंड बिहार में मंत्री रह चुके माधव लाल सिंह का आज रांची के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। माधव लाल सिंह गोमिया विधानसभा से वर्ष 1985, 1990, 2000 और 2009 में विधायक चुने गए। इधर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंत्री माधव लाल सिंह के निधन पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने लंबे समय तक जनसेवा और सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने टेंडर घोटाला मामले में पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने पर कांग्रेस पर निशाना साधा है। रांची में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि आलमगीर आलम को केवल जमानत मिली है, उन्हें आरोप मुक्त नहीं किया गया है। दुमका में दवा व्यवसायियों के विभिन्न मांगों को लेकर 20 मई को मेडिकल दुकानें बंद रहेंगी। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स के आह्वान पर यह बंद आयोजित किया जाएगा। दुमका

0: फार्मासिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष महेश प्रसाद साह ने बताया कि 15 मई से जिले के दवा व्यवसायी काला बिल्ला लगाकर विरोध दर्ज कराएंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। जामताड़ा जिले के फतेहपुर थाना क्षेत्र के डुमरिया गांव से पुलिस ने दो साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय संजय कुमार सिंह ने बताया कि उनके पास से 7 मोबाइल फोन और 9 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
1: पुलिस अधीक्षक महोदय को गुप्त सूचना मिली थी कि फतेहपुर क्षेत्र में कुछ लोग साइबर अपराध कर रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस निरीक्षक फारूक के नेतृत्व में एक छापा दल का गठन किया गया और उनके द्वारा वहां पर छापेमारी की गई। दो अपराध कर्मियों को साइबर अपराध करते हुए इक्विपमेंट के साथ गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों के पास से 7 मोबाइल और 9 सिम कार्ड बरामद हुए हैं।
0: इधर गिरिडीह में साइबर पुलिस ने 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरिडीह एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि इनकी गिरफ्तारी बेंगाबाद थाना क्षेत्र से हुई है। इनके पास से करीब 1 दर्जन मोबाइल और सिम बरामद किए गए हैं। ये अपराधी फर्जी लिंक भेजकर लोगों को ठगते थे।
2: सूचना प्राप्त हुई है कि बसनबारी और कोलहरिया जंगल में कुछ साइबर अपराधी एक्टिवेट हैं और इनके द्वारा ठगी की जा रही है। डीएसपी साइबर के नेतृत्व में टीम बनाया गया था और 6 साइबर अपराधी कर्मियों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 11 मोबाइल, 13 सिम कार्ड और 5 बाइक ये भी बरामद किया गया है। ये लोग कई तरह का गैस से रिलेटेड या ई चालान से रिलेटेड भेजते थे और ठगी करते थे।
0: राजधानी रांची के कई इलाकों में आज दोपहर बाद हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। मौसम विभाग ने आज रांची सहित कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं 15 मई को रांची, धनबाद और संथाल परगना के क्षेत्रों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित होने वाली अंडर-17 राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए कलकत्ता पब्लिक स्कूल और मांझी के 9 खिलाड़ियों का चयन झारखंड टीम में हुआ है। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले इन खिलाड़ियों में अनुष्का, शिवानी, सृजल, आकांक्षा और रिया सहित कुल 9 छात्र छात्राएं शामिल हैं। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, अब आइए सुनते हैं नॉन स्टॉप अंताक्षरी कार्यक्रम, लेकिन इसके पहले ये संदेश।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

0: स्वयं ही घट पड़े भारतीय सेना।
1: श्रोताओं, इस संदेश के बाद हाजिर है आपका पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है नॉन स्टॉप अंताक्षरी, से लेकर हाजिर हूँ। और चलिए आगाज करते हैं मां अक्षर से ये प्यारा सा गीत आपके लिए।

श्रोताओं, रुके रुके से कदम इस गीत के आखिर में आपको मांगक्षर मिला है। लीजिए सुनिए मांगक्षर का ये गीत।

इस कार्यक्रम के आखिर में आइए एक और प्यारा सा गीत हम आपको सुनवाते हैं फिल्म आज से। आवाज जगजीत सिंह की है, संगीत चित्र और जगजीत सिंह की है, और गीत के बोल हैं सुदर्शन फकीर के।

0: श्रोताओं, इसी के साथ आज का रांची मेलोडीज कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। इस वर्ष सीबीएसई की 12वीं बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 अप्रैल 2026 तक विज्ञान, वाणिज्य और कला संकाय के लिए आयोजित की गई थीं। बोर्ड के अनुसार परीक्षा में 17,68,000 से अधिक विद्यार्थी शामिल हुए, जिनमें से 15,07,000 से अधिक छात्र छात्राएं सफल हुए हैं। इस वर्ष कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 85.20 रहा। गुमला जिला भाजपा ने आज समाहरणालय के समक्ष बिजली और पेयजल संकट को लेकर आक्रोशपूर्ण धरना प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर अर्जुन मुंडा ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था, बिजली और पेयजल व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। रांची नगर निगम में नक्शा पास करने की प्रक्रिया को लेकर दायर अवमानना याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सवाल किया कि राज्य में असिस्टेंट टाउन प्लानर कार्यरत होने के बावजूद रांची

नगर निगम में उनसे नक्शा पास कराने का काम क्यों नहीं लिया जा रहा है। गोमिया के पूर्व विधायक तथा झारखंड बिहार में मंत्री रह चुके माधवलाल सिंह का आज रांची के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। माधवलाल सिंह गोमिया विधानसभा से वर्ष 1985, 1990, 2000 और 2009 में विधायक चुने गए। गुमला नगर भवन में आज स्वास्थ्य विभाग की ओर से मिर्गी रोग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से सहिया साथी और बीटीटी के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस दौरान मिर्गी रोग के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। और सरायकेला खरसावां जिले के 3 खिलाड़ी 17 मई को धनबाद में होने वाली राज्य स्तरीय मॉडर्न पेंटाथलॉन चयन प्रतियोगिता में भाग लेंगे। जिला संघ के सचिव सिकंदर महतो ने बताया कि शोभा महतो, रशिक चंद्रहासा और मिलन सोए जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, अब आइए हम आपको सुनवाते हैं बढ़ते कदम कार्यक्रम। इसके अंतर्गत आप भेंट वार्ता सुनेंगे JSLPS के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं में हो रहे सक्षम और सशक्त। भेंट वार्ताकार हैं मोहम्मद मोबिन थेमेंटिक और कोऑर्डिनेटर पलास JSLPS और विद्यापति देवी जो लाभुक हैं इसकी, और इनसे बातचीत कर रहे हैं कमलेश कुमार मिश्र, प्रस्तुति प्रभु शरण की।
1: कदम कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कमलेश कुमार मिश्र। आज कार्यक्रम बढ़ते कदम में हम बदलाव की बात करेंगे। आज कार्यक्रम बढ़ते कदम में हम एक परिवर्तन की बात करेंगे। हम बढ़ते कदम कार्यक्रम में उस प्रयास से सफलता की बात करेंगे जिसने अपने मेहनत से और JSLPS के सहयोग से अपनी जिंदगी को बदला है। कार्यक्रम में सबसे पहले हमारे साथ विद्यावती देवी हैं जो आज अपने गांव जीराबार उरमांझी पंचायत कुच्चू के लिए एक उदाहरण है, जहां लोग उनकी मेहनत को देखकर कुछ सीखते हैं और उनके मन में भी एक जज्बा आता है कि जब विद्यावती देवी अपनी मेहनत से अपनी जिंदगी बदल सकती है तो हम क्यों नहीं। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से JSLPS से जुड़कर जो झारखंड में अलग अलग ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं वो अपनी जिंदगी बदल रही हैं। विद्यावती देवी जी, कार्यक्रम बढ़ते कदम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: जोहार, मेरा नाम है विद्यावती देवी, मैं जीराबार का रहने वाली हूँ। मेरा गांव पड़ता है जीराबार, पोस्ट कुच्चू, थाना और मांझी, जिला रांची, झारखंड।
1: क्या बात है, बहुत बहुत आपको बधाई विद्यावती देवी जी की, आज आप JSLPS से जुड़कर अपनी जिंदगी बदली है। आज हम उस कहानी को समझेंगे कि कैसे आपने शुरुआत की। विद्यावती देवी जी, कब आप JSLPS से जुड़ी?
2: मैं JSLPS में 2018 में मैं जुड़ी हूँ। जो मेरे समूह में मैं जुड़ी, उस छोटा मोटा समूह में चला रही थी, तभी हम गांव में हम अपना घर का काम करते और किसान खेती बाड़ी के साथ हम धीरे धीरे सुने जाने पहचान आया कि JSLPS समूह में हम बचत कर रहे थे। पहले तो हम कहीं बचत नहीं करते थे, गांव देहात में रहते थे हम लोग। जो हम लोग खेती बाड़ी करते थे और बाल बच्चा को पढ़ाते थे, सबसे हमको गांव में हम लोग को पता चला कि एक समूह सबको जुड़िए JSLPS द्वारा है, उसमें आप पैसा जमा कीजिए, जो धीरे धीरे 20 रुपया से हम शुरुआत किए।
1: 20 रुपये से आपने शुरुआत की?
2: जी, उस समय हम लोग का पैसा उतना हम लोग का होता नहीं था, खेती बाड़ी भी करते थे, बाल बच्चा को भी पढ़ाते थे, उसमें हम लोग को ज्यादा आमदनी भी नहीं था, तो हम 20 रुपया से ही हम शुरुआत किए।
1: अच्छा, ये 20 रुपया आपको कब देना पड़ता था?
2: सप्ताह में एक बार हम बैठक जब करते थे समूह में, उस समय हम 20 रुपया हर साप्ताहिक बैठक 20 रुपया में रखती थी।
1: ठीक है, तो कैसे फिर, अब जो मेरी जानकारी है कि आज आप ट्रैक्टर चलाती भी हैं
2: जी,
1: और आपको JSLPS के माध्यम से ट्रैक्टर मिला
2: जी,
1: तो

0: ये जो 20 रुपए से आपने शुरुआत की और ट्रैक्टर तक पहुंची, ये कैसे हुआ?
1: मैं धीरे धीरे हर सप्ताह में 20 रुपए जमा करती थी, बैठक में सही से जाती थी, और मैं थोड़ा कम पढ़ा लिखल, मैट्रिक तक ही पढ़ी थी, लेकिन जानकारी हमको धीरे धीरे मिला तो हमके समूह के सदस्य ने हमको अध्यक्ष बनाया, समूह का अध्यक्ष बनाया हमको, कि दीदी अच्छा से बैठा करती है, जानकारी लेती है, अच्छा करती है, तो अच्छा सही समय आती है, तो इसको सभी दीदी लोग चुन के हमको समूह का अध्यक्ष बनाया।
0: वाह,
1: जब हम
0: ठीक है।
1: धीरे धीरे अध्यक्ष बने, उसका धीरे धीरे जब हम लोग 2018-19 हुआ, तब से हम वीओ में, हम लोग हम वीओ बैठक हुआ, वीओ से हम सीएलएफ गए, सीएलएफ से जाते जब हम जाने आने लगे, तब हम घर का भी काम करते थे, और समय समय निकला कि हम लोग का पंचायत में बैठक होता था वीओ ऑफिस, उसमें हम जाती थी, और हमें वहाँ जानकारी, बहुत तरह की जानकारी हमको मिल, अब अपना हम गांव में आके बताते थे। तब से हमको धीरे धीरे पता चला कि नहीं, दीदी लोग को सबको अपना खेती बाड़ी बढ़ाने से थोड़ा सा लोन भी दिया जाता है। हाँ, तो हम धीरे धीरे अपना 20 रुपये बचत करते करते मेरा 4,000-5,000 होते होते फिर अच्छा से लेन देन करने लगे, तो हमको वीओ से हमको लोन मिला,
0: कितना
1: और
0: का लोन
1: उसमें
0: आपने लिया दीदी?
1: हम शुरू में हम 85,000 का लिए लोन, और इधर हमको मदद, और जैसल पीएस द्वारा हमको, हम जिस जाने लगे जब वीओ में, तो हमको एमडीआई जो ड्रिप बोलते हैं 25 डिसमिल में, जैसल पीएस द्वारा हमको एमडीआई भी मिला, कि दीदी जाती है खेती बाड़ी करती है, तो इसको ड्रिप भी दिया जाए, तो हमको ड्रिप एमडीआई जो खेती हमको 25 डिसमिल मिला,
0: ड्रिप
1: उसमें मैं
0: इरिगेशन।
1: अच्छा, हाँ ड्रिप एक्सटेंशन जो 25 डिसमिल के लिए जैसल पीएस द्वारा दिया जाता है, उसमें मैं खेती करने लगी धीरे धीरे, और मेरा खेती ज्यादा होने लगा, और मेहनत कम, और ड्रिप के अनुसार मेरा खेती प्रॉफिट ज्यादा होने लगा। अब हम शुरू में हम फूली है, हम तो देहात का थे, सब्जी लगा तो लेते थे, उपजा तो लेते थे, लेकिन हम बेचने के लिए, ले जाने के लिए मार्केट हमको बहुत दूर पड़ता था, दूर पड़ता था। उसके बाद हम तो उसी से लिए, और जब अपना बाजार खुद से, मेरा हस्बैंड चलाते थे, थोड़ा मोड़ा हम भी चला लेते थे, मेरा हस्बैंड सिखा दिए, हम गांव घर में हम भी टेम्पू चला लेते थे, सीख लिए थे, और उसके बाद हम, मेरा सब्जी हम देखे, मेरा और गांव घर का था, मेरा ही टेम्पू में ले जाते थे, तो हमको 2 पैसा ज्यादा आमदनी होने लगा, 2 पैसा ज्यादा आमदनी होने लगा। तब धीरे धीरे हम जाके, मेरा स्थिति बहुत खराब था पहले, जैसे जैसे हम जैसे पीएस में जुड़े, और धीरे धीरे हमको जानकारी भी मिला, हम आना जाना भी करने लगे, उसी से हमको सब कोई हमको जानकारी, हमको पहचाने लगे कि दीदी अच्छा खेती बाड़ी करती है।
0: तो आप ये बताएं विद्यावती जी, क्योंकि आज बहुत सारी महिलाएं आपको कार्यक्रम बढ़ते कदम में सुन रही हैं, और आपको कार्यक्रम में शामिल का उद्देश्य भी यही कि लोग इस बात को समझे कि सरकार अपनी योजनाओं के माध्यम से उनके साथ खड़ी है, जरूरत आगे बढ़ने की है। आप ये बताएं कि ये जो जेएसएलपीएस में क्या क्या सुविधाएं आप लोगों को मिल जाती हैं? जैसे ही एक तो आपको ये आपने ट्रैक्टर लिया, ट्रैक्टर किस स्कीम के माध्यम से लिया, और क्या क्या सुविधाएं आप लोगों को जेएसएलपीएस से मिलती हैं?
1: जेएसएलपीएस हम जब हम जो हम बीओ बने, उसके बाद हम जाने लगे जब ब्लॉक में, तभी हमको भैया जो जेएसएलपीएस ऑफिस में, हम लोग और मांझी ऑफिस में, हम लोग जो भैया लोग एमसीटी भैया लोग रहते हैं, जैसे प्रशांत भैया है, मोबिन भैया है, धनवती दीदी है, वो हमको जानकारी दिए कि दीदी आप लोग जो खेती बाड़ी करते हैं उसका सुविधा अलग, ट्रैक्टर आप लोग को अनुदान राशि भी मिलेगा, क्यों आप लोग लेना चाहते हैं? हम खुश हो गए, जिसको हम तो 25 डिसमिल से खेती बाड़ी करते करते, मैं 3-4 एकड़ हम खेती करती हूँ, तो हम बहुत दूसरा ट्रैक्टर जोतवाती थी तो बहुत महंगा पड़ता था, तो वही भैया लोग हमको जानकारी दिए कि अनुदान से, अनुदान राशि में समूह तरफ से आपको जेएसएलपीएस तरफ से सब्सिडी में ट्रैक्टर मिलेगा, मिल रहा है
0: तो कितना अनुदान आपको मिला इस ट्रैक्टर में? आपको
1: हमको,
0: कितना पैसा देना पड़ा और सरकार ने आप कितना पैसा दिया?
1: 10 लाख का ट्रैक्टर था,
0: जी
1: उसमें हमको 5 लाख रुपया ही देना पड़ा, उसका साथ हमको ट्रैक्टर, हॉर, रोटर और केजुअल, तीनों हमको, चारों हमको 5 लाख में हमको सब कुछ मिल गया।
0: यानी 10 से 12 लाख रुपए का जिस ट्रैक्टर, उसकी इक्विपमेंट्स का दाम था, उसको आपको सिर्फ 5 लाख रुपए में मिल
1: पांच
0: गया।
1: लाख में ही मिल गया,
0: क्या
1: 5 लाख
0: बात
1: में, तो हम बहुत खुश हुए कि
0: है।
1: हम 10 लाख रुपया हम कहाँ पाते, जब हम खरीदने जाते तो हमको 10 लाख रुपया हमको खरीदने में हमको सोचना पड़ता, हम धन्यवाद बोलते हैं जैसल पीएस को, आज जिसने हमको सब्सिडी में, हमको झारखंड सरकार मुख्यमंत्री जो हमको सब्सिडी में समूह द्वारा हमको दिया, वह हम धन्यवाद करते हैं, जो हमें 5 लाख

0: रुपया हमको ट्रैक्टर मिला।
1: क्या बात
0: और
1: है।
0: वो ट्रैक्टर जब हमको मिला तो हम खुद अपना गांव में ला के हम खुद चलाने के सीखे।
1: आप अच्छा दीदी ये ठीक है, चलिए हेल्प तो सरकार करती है, लेकिन आप में ये हिम्मत ये आत्मविश्वास कैसे आया कि ट्रैक्टर भी आपको खुद से ही चलाना है?
0: भैया देखिए, सोच रखिएगा ना तो सब कुछ कर सकिएगा, अपना सोच हिम्मत रखिएगा तो सब कुछ कर सकते हैं। हमको ऑटो, मेरा घर में सब चीज रहेगा ना तो चलाने में क्या है, घर में ऑटो ऑटो भी चला लेते हैं और ट्रैक्टर है तो ट्रैक्टर भी, मेरा हस्बैंड मेरे बच्चा लोग भी हमको बोले कि मम्मी तुम भी सीखो, सिखा देंगे और थोड़ा थोड़ा भी हम चलाने लगे।
1: क्या बात है, बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छा लग रहा है कि आज आपको कार्यक्रम में हमने शामिल किया है। आपने इंटरव्यू के दौरान अभी कहा कि 25 डिसमिल से आपने शुरुआत की
0: जी
1: और आपको उसके लिए ड्रिप इरिगेशन दिया गया, लेकिन
0: जैसे
1: आज वो
0: किया
1: 25 डिसमिल 3 एकड़ में बदल गया है।
0: जी, 3 से 4 एकड़ में हम आज खेती बना दिए।
1: तो क्या क्या करती हैं आज आप खेती में विद्यावती जी?
0: अभी हम 2 एकड़ में तारबूज लगाए हैं भैया, जो हम बेच चुके हैं अभी तारबूज। मेरा 30 से 40 जिसमें मेरा करेला लगा है, मतलब मिक्स सब्जी बहुत जितना है सब हम लगाते हैं। जो सीजन सीजन बाय सीजन होता है उसमें सब हम सब्जी लगाते हैं और खुद मेरे गांव से गाड़ी आता है वो हम लोग को ले जाते हैं।
1: यानी आज विद्यावती जी जो एक 20 रुपए से शुरुआत की थी, आज हम कह सकते हैं कि एक लखपति दीदी बन गई।
0: जी जी
1: इतना अच्छा लगता है आज जो आपके जीवन में ये एक बदलाव आया। आपके बच्चे क्या कहते हैं गांव में जब लोग बात करते हैं, क्या कहते हैं आपके बारे में?
0: वो कहते हैं देखो धीरे धीरे ऑटो चलाती थी, अब तो सुनते थे कि देखो देखो दीदी जा रही ऑटो चला सीख गई। अब हम गांव से लेकर अपना पंचायत से लेकर ब्लॉक तक हम जान रहे कि मेरा दीदी लोग हमको बोलती देखो दीदी ट्रैक्टर चलाने वाली दीदी है,
1: ट्रैक्टर वाली लखपति दीदी है।
0: जी गांव से बोलती दीदी, गांव से पंचायत, पंचायत से हम ब्लॉक तक चल गया, सब दीदी बोलती देखिए ट्रैक्टर चलाने वाली दीदी है।
1: आज आप उन महिलाओं के लिए क्या कहेंगी? आज आपके जैसी बहुत सारी ग्रामीण महिलाएं हैं जो घर से बाहर नहीं निकल रही है, उनको अभी भी संकोच होता है, उनसे क्या कहेंगे आप?
0: हम वही दीदी लोग को कहना चाहते हैं, अपना हिम्मत में जो मन में ठान लीजिएगा वो करके रहिएगा, जो धीरे धीरे आप बाहर तो निकलिएगा तब तो दुनिया हाल देखिएगा, जानिएगा कि पीछे हटना नहीं है, आगे से आगे बढ़ के देना है, तब तो जानिएगा कि हाँ मैं महिला कुछ भी कर सकती है।
1: एक बात बताइए,
0: तो बहुत आता है रास्ता में लेकिन हम लोग को ढल के आगे बढ़ना होता है।
1: विद्यावती जी एक बात बताएं आप कि अक्सर तो हम लोग हमेशा यही पढ़ते आए सुनते आए कि जो गांव की महिलाएं होती हैं वो दबी हुई होती हैं, जो गांव की महिलाएं होती हैं वो डरी हुई होती हैं, लेकिन आपसे बात करके तो मुझे सारी चीजें उल्टी लग रही हैं। आप में आत्मविश्वास भी है, आप में कुछ करने की चाहत भी है।
0: धीरे धीरे हमको भी इसी तरह लग रहा था, धीरे धीरे हमको भी लग रहा था कि हम कर पाए कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन जैसे जैसे स्थिति आते गया वैसे वैसे अपने आप को हम हिम्मत नहीं हारे और धीरे धीरे आगे हम बढ़ते गए। रास्ता में तो बोलने वाला रोकने वाला कितना आदमी रहता है, लेकिन
1: बहुत सारे लोग होंगे जो बोलते भी होंगे देखो घर से बाहर निकल रही है, ऐसे कर रही है, बाहर जाती है।
0: उन लोग को तो हम लोग कुछ घर तो नहीं चला देगा, कोई तो नहीं कर देगा, अपना घर का आदमी साथ देगा तो हम लोग कुछ भी आगे कुछ भी कर सकते, आगे बढ़ जाते हैं।
1: यानी रुकना नहीं है,
0: रुकना नहीं है, अपना चलते रहना है,
1: चलते
0: जो हो चलते रहना है, आगे बढ़ते रहना है।
1: सरकार से क्या कहेंगी, माननीय मुख्यमंत्री जी से क्या कहेंगी?
0: मुख्यमंत्री को मैं धन्यवाद देती हूँ जो हमको ट्रैक्टर मिला, और मैं ट्रैक्टर मिला तो मैं खेती बाड़ी और ही आगे बढ़ा रही चाहती हूँ। जो हमको सब्सिडी में जो हमको 10 से 12 लाख रुपया हम सोच भी नहीं सकते थे कितना पैसा, हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम ट्रैक्टर कभी लेंगे, लेकिन हमको सब्सिडी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और जो तिरकी नेहा शिल्पा तिरकी है जो है वो दीदी को भी धन्यवाद करते हैं कि हमको सब्सिडी में 5 लाख रुपया में हमको सब ट्रैक्टर मिल गया।
1: क्या बात है, बहुत बहुत
0: खेती बाड़ी, और मैं सोच रही हूँ कि और आगे मैं खेती करूं और मैं खेती आगे बढ़ाऊं।
1: मुझे ये बताएं,
0: हेल्प हमको बहुत मिल गया।
1: मुझे ये बताएं विद्यावती जी कि एक आपने अपनी शुरुआत की, अब जब आप धीरे धीरे आपका काम बढ़ा, आज आपके अंदर कितने लोग गांव के लोग काम कर रहे हैं?
0: जी मेरा गांव के लोग तो सब भी हम लोग जो गांव का जो एक ग्रुप बना है दीदी लोग को जो देखते हैं जा रहे हैं देख रहे हैं वीडियो देख रहे हैं, तो ये लोग हमको भी खुद बोल रही है, मेरा देख के बोल रही है कि देखो दीदी से कुछ सीखो कि दीदी आज

0: से स्कूटी तक नहीं चलाने जानती थी, रास्ता नहीं चल रहा था, गाड़ी चला रही है।
1: तो आज कितनी कितने लोगों को आपने रोजगार दिया है अपने अंदर?
0: मेरा अंदर
1: जी
0: 10 काम कर रही है, गांव का तो सब धीरे धीरे बढ़ रही है, मेरे अंदर आगे जा रही है, हम सब कुछ चीज को जानकारी देख रहे हैं और सब दीदी लोग बोल रही है कि हम भी तेरा जैसा करेंगे, हम भी जाएंगे। अब हमको देख देख के दीदी लोग वही बोलती है कि नहीं हमको बता तुम कहाँ जाती है, कैसे जैसलपीएस में जुड़ के तुमको क्या क्या फायदा, हमको पूछती है हम कि देखो जैसलपीएस जुड़ने से इतना ही फायदा होता है, समूह द्वारा से हमको खेती बाड़ी को जानकारी मिला, हम जैसल खेती बाड़ी समूह द्वारा सब चीज जानकारी हो कि अपने खेती बाड़ी आगे बढ़ाएं और ट्रैक्टर लिए और आगे सब दीदी लोग को इस सब बताते हैं, तो वो लोग भी दीदी लोग बोलती है कि आगे बढ़ वो लोग होती है कि हम भी आपको जानकारी लेंगे और हम भी करेंगे आप ही जैसा।
1: क्या बात है, यानी लोग आज आपके काम को देख के आपकी कामयाबी को देख के उनमें भी एक उत्साह है कि हमें भी इससे जुड़ना है, हमें भी बेहतर काम करना है।
0: जी ऐसा बहुत दीदी लोग थी कि जैसे पीएस में नहीं जुड़ रही थी और जमा नहीं करती, बोलती थी कि सब तो ठोक है, पैसा भी रखेंगे लूट के ले जाएगा, पैसा रखेंगे लेकिन इतना दीदी हमको देख के धीरे धीरे शुरू से आज सब ऐसा दीदी है कि सब कोई जैसलपीएस में जुड़ गई, वो एमडीआई मिला 25-20 मिनट में और दीदी लोग को हम बोलती हम को भी भर दीजिए, हम भी बिल दीजिए जैसलपीएस द्वारा, हमको भी दिलवा दीजिए।
1: ये आप एमडीआई बार बार बोली, एमडीआई क्या है?
0: वही ड्रिप
1: इरिगेशन जो आपको मिला।
0: हाँ ड्रिप, उसको एमडीआई ही बोलते हैं,
1: एमडीआई बोलते हैं। अब एक बात बताइए विद्यावती, पहले तो कि आप बधाई के पात्र हैं कि आज आपने अपनी मेहनत से और जैसलपीएस के सहयोग से, झारखंड सरकार के सहयोग से यहाँ तक पहुँची। आप अपने परिवार के बारे में बताइए, आपके परिवार में आपके कितने बच्चे हैं?
0: मेरे 3 बच्चे हैं।
1: क्या क्या कर रहे हैं वो लोग?
0: 2 बेटा है, मेरे हस्बैंड है, मेरे हस्बैंड हम लोग खेती बाड़ी जो हम लोग करते हैं, और मेरा बेटा है जो 22 साल का है, वो अभी वही
1: एग्रीकल्चर पे काम कर रहे हैं।
0: हाँ एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, फूलों का दुकान कर रहे हैं, हम अपना नर्सरी खुद का खोले हैं, अपना खुद का मेरा नर्सरी है, पेड़ पौधा में लगाते हैं, दूसरों को भी लगवाते हैं, मेरा बेटा उसमें मेरा ही नाम से मेरा दुकान है।
1: अब बेटियां क्या कर रही हैं?
0: बेटी और छोटा बेटा है, वो लोग पढ़ाई कर रहा है अभी, मेरा छोटा बेटा इंटर मैट्रिक लिखे है, मेरी बेटी है अभी कुछ साईनाथ यूनिवर्सिटी जो है उसमें 12 का BCA में पढ़ाई कर रही है।
1: वाह, आप कहाँ तक पढ़ी हैं? आपने बताया कि आप 10th तक पढ़ी हैं।
0: जी मैं मैट्रिक तक भी पढ़ी हूँ, मैं सोचती थी कि मैं कम पढ़ी हूँ तो मैं कैसे कुछ कर पाऊंगी, लेकिन देखिए पढ़ाई कम पढ़े हैं लेकिन अपना हिम्मत नहीं हारे और कम पढ़ के ही मैं आगे बढ़ रही हूँ।
1: एक बात बताया कि जो जब पहले के विद्यावती देवी की बात हम करें और आज के विद्यावती देवी की बात करें, आपकी जिंदगी में क्या क्या बदलाव आ गया?
0: पहले हम बताते थे, पहले मेरा परिवार तो बहुत गरीब थे और मैं पहले बात बताती हूँ, मैं सच बात कि मैं जिस वर्ष मेरा शादी हुआ था
1: जी,
0: मेरा गांव में मेरा कुछ नहीं था, लाइन मेरा 2004 में शादी हुआ था, मेरा गाँव में लाइन भी नहीं था और मेरा मायके में लाइन सब कुछ था, लेकिन अब मैं कम पढ़ी भी थी तो जैसे हम धीरे धीरे पर यहाँ आई हूँ, मेरा हस्बैंड साथ दिए और हमको पढ़ाए, हमको मैट्रिक तक पढ़ाए, यहाँ ससुराल से आके मैं मैट्रिक तक पढ़ी, तब हम जाके जैसलपीएस में हम जुड़े ना, तब हमको धीरे धीरे करते करते हमको कम पढ़े भी थे लेकिन जैसलपीएस में जुड़ के ना हमको आगे लगा कि हम और पढ़ेंगे बोल।
1: आज आप क्या सोचती हैं, आपके बच्चे और कहाँ जाएं? आपकी बेटी अभी पढ़ रही है, आपका छोटा बेटा पढ़ रहा है, क्या चाहती हैं आप उनसे?
0: मेरा बेटा बेटी मैं अभी पढ़ रही हूँ तो मेरा बेटा सोच रहे हैं मेरा बेटे और आगे बढ़े, मेरा एग्रीकल्चर दुकान जो है नर्सरी जो खोले हैं, मेरा बेटा क्या बोलते हैं उसको आगे बढ़ा जाए, और इतना मैं पढ़ी हूँ कम तो मेरा बाल बच्चा मेरा ज्यादा पढ़े।
1: मैं चाहूंगा कि आज आप हमारे श्रोताओं को बताएं, आकाशवाणी में हमारे कार्यक्रम बढ़ते कदम में बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं और एक मोटिवेशन भी उनको मिल रहा होगा कि जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं होता है कि आप पहले से हार मान जाए, जिंदगी में कुछ है नहीं भी है, अगर आपने ठान लिया है तो आप उसको अचीव कर सकती है। आज विद्यावती जी के पास में हर वो संसाधन है, रहने का, खाने का, घूमने का, सुख सुविधा, पैसा, हर कुछ आपकी मेहनत ने दिया।
0: जी मेरा घर तो पहले मिट्टी का था, मेरा मिट्टी का घर था, जैसे मैं आगे बढ़ते गई वैसा मैं घर
1: आज घर कैसा है आपका?
0: घर में पक्का का घर बना ली हूँ, 2 घर बना ली हूँ, धीरे धीरे जब से मैं आई हूँ खेती बाड़ी के साथ साथ में घर भी बना रही हूँ, मेरा पानी का बहुत दिक्कत था, मैं घर का खुद का बोरिंग करवाई हूँ, खुद का घर में बोरिंग है और मेरा 2 बोरिंग है, उसमें मैं खेती बाड़ी भी मैं जिसमें पटाते हैं घर के लिए और पटवन के लिए मैं अलग करती हूँ, और मैं धीरे धीरे आगे इस तरफ मेरा बहुत

0: स्थिति बहुत क्या बोलते हैं, साइकिल से सब्जी बेचने जाते थे। जी
1: साइकिल से सब्जी, और आज बच्चे
0: जी
1: आपके अच्छे जगह पे पढ़ाई कर रहे हैं, बीसीए कर रहे हैं,
0: साइकिल
1: एमबीए
0: से
1: कर रहे
0: बाजार ले
1: हैं।
0: जाते थे, साइकिल से मैं बाजार ले जाती थी सब्जी। कभी लोग सामने जो बाजार से माथा बो के मैं बाजार ले गई, उस समय मेरा स्थिति ऐसा था। अपना माथा से मैं बाजार ले गई, लाके बेचती भी थू, अपना समूह भी चलाते थे। धीरे धीरे जैसल पे बैठक भी जाते थे, खेती बाड़ी भी करते थे और बाजार भी जाते थे, बच्चा को पढ़ाते थे करते थे। अब मेरा इतना क्षति हो गया कि बच्चा जैसे से भी मेरा बढ़ बढ़ गया, और मैं घर का गाड़ी भी मेरा भी हो गया,
1: गाड़ी भी
0: ऑटो भी
1: आपके
0: हो
1: पास है
0: गया।
1: अपनी,
0: ऑटो है, ऑटो
1: ऑटो खुद की ऑटो
0: ऑटो
1: है,
0: खुद का ऑटो है, जब मैं खुद भी ऑटो चला लेती हूँ,
1: आप ऑटो भी चला लेती है,
0: ऑटो भी चला लेती हूँ। मेरा
1: क्या
0: घर के
1: बात
0: जो
1: है।
0: पास है साग सब्जी जो मेरा घर में रहते, तो अपने हस्बैंड को हेल्प कर देते हैं, बाजार तक नहीं आते हैं, घर तक ला देते हैं। मेरा गाय उसे है तो घास उस काटते हैं, तो ऑटो से ही लाते हैं अपना।
1: क्या बात है, यानी विद्यावती देवी जी के घर आज उनकी अपनी नर्सरी है, उनका अपना खेती बाड़ी है, उनका अपना ट्रैक्टर है, उनका अपना
0: ट्रैक्टर
1: ऑटो
0: है,
1: है।
0: बोरिंग है, सब
1: वो
0: चीज है।
1: क्या बात है, बहुत बहुत
0: कुछ
1: बधाई। अब मैं चाहूंगा कि आज जो आपको सुन रहे हैं, जो महिलाएं जेएसएलपीएस में शुरुआत करना चाहती हैं, अपनी समूह बनाना चाहती हैं, उनको आप प्रोसेस बताएं वो कैसे शुरुआत कर सकती हैं।
0: धीरे आजकल तो जैसे पीएस तो सब जगह पता चल जाता है, जानती है, लेकिन कोई दीदी ना बैठना ही जानबे नहीं करती है, चाहबे नहीं करती है कि मैं जाऊं से। तो आदमी बहुत आदमी सोचता है कि मैं ठग है, लेकिन जाएगी दीदी समूह में, बैठेगी, समझेगी, तब तो कुछ जानकारी दीदी लोग को मिलेगा। हम दीदी लोग को ही कहना चाहते हैं, दीदी समय में काम तो अपना घर का है, ये है काम, अपना घर का काम तो कभी खत्म नहीं होने वाला है। तो हम बोलते हैं दीदी 2 पैसा आपका बचत भी होगा, आपको जैसलपीएस तरह से कुछ लोन भी मिलेगा, जिसमें आप धीरे धीरे आपको चुकाइएगा और अपना बड़ा बड़ा भी काम कर दीजिएगा, जो हम लोग को सहारा मिलता है।
1: यानी शुरुआत की जरूरत है, आप पहले ही नहीं समझ ले कि कुछ जाके फायदा नहीं है या घर से नहीं निकले, आपको निकलना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा, आपको उसको
0: जाना
1: जानना पड़ेगा।
0: पड़ेगा, बैठिएगा, 2 मिनट समय दीजिएगा, तब तो समझिएगा दीदी लोग को। जाइएगा, बैठिएगा, समझिएगा दीदी लोगों के बैठक में कितना पैसा जमा करना है, कितना दीदी लोग, कितना आजकल इतना चीज मिल रहा है, तो दीदी लोग बोलते फायदा लीजिए। आप लोग भी दीदी लोग बोलते फायदा लीजिए, कुछ
1: यानी
0: फायदा लीजिएगा, जानिएगा तब तो फायदा लीजिएगा,
1: और
0: घर
1: समूह
0: से
1: से जुड़ के तो
0: निकलिएगा तब
1: बहुत
0: तो
1: सारी चीजें मिल रही हैं।
0: जी, समूह में जुड़िएगा तब तो फायदा लीजिएगा। अभी जब हम समूह से जुड़े हैं तब तो हम ट्रैक्टर लिए, वहां से जब हम ट्रैक्टर लेने गए तो तुमको और चीज को जानकारी मिला, हम आगे गए तो और चीज को जानकारी मिला कि ट्रैक्टर साथ साथ और चीज को भी सब्सिडी, ऐसा बहुत चीज है कि सब्सिडी भी मिलता है। हम आप देखिए सब्सिडी में आटा पीसने वाला मशीन लिए हैं, जो घर में ही आटा पीसते हैं, जो दीदी लोग अगल बिगल का जो आटा पिसवाने के लिए लाती है, सब्सिडी
1: आपने आटा पीस आटा चक्की का भी मशीन रखा है,
0: जी।
1: यानी विद्यावती जी क्या सब काम आप ही करेंगी क्या?
0: नहीं, सब सब कोई आदमी इस चीज में कमी है, सब कोई दीदी को बोल रहे हैं आप लोग भी कीजिए, आप लोग भी कीजिए, सबको हम बोल रहे हैं दीदी घर से निकलिए, समूह में जुड़िए, जैसे द्वारा जुड़िए, सब्सिडी फायदा लीजिए, आप लोग भी कीजिए, आप लोग भी निकलिए, घर से निकलिएगा तब तो आगे बढ़िएगा। और मेरा ही जैसे आप लोग भी बोलते हैं ट्रैक्टर चलाइए, गाड़ी चलाइए, सब कोई आजकल चलाता है। डरिए
1: चलिए, बहुत
0: मत, डरिए मत, आगे बढ़िए।
1: डरिए मत, आगे बढ़िए। विद्यावती जी, आप हमारे कार्यक्रम बढ़ते कदम में शामिल हुई, हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी बातें बताई, इतना मोटिवेशन दिया, और हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हमें ये समझ में आया कि जिंदगी में कभी भी हारना नहीं चाहिए,
0: हारना नहीं
1: बस
0: चाहिए, आगे बढ़ते जाइए,
1: आगे बढ़ना
0: आगे
1: चाहिए।
0: बढ़ते
1: बहुत बहुत शुक्रिया विद्यावती जी कार्यक्रम बढ़ते कदम में
0: धन्यवाद, धन्यवाद।
1: शामिल होने के लिए। आज कार्यक्रम बढ़ते कदम में हमारे साथ विद्यावती देवी थी, और एक उदाहरण हम सबके लिए कि आप अगर मेहनत करेंगे ईमानदारी से तो आपको लक्ष्य की प्राप्ति जरूर होगी। विद्यावती देवी जीराबार गांव और मांझी से पंचायत कुच्चू से बिलोंग करती हैं, जेएसएलपीएस से जुड़ी, समूह से जुड़ी, मेहनत की, ऑटो चलाने से लेकर आज खुद की ट्रैक्टर चला रही हैं, आटा चक्की खुद का है, नर्सरी खुद का है, खेतीबाड़ी भी कर रही हैं, और एक उदाहरण बन गई हैं। बारी आपकी है, आपको भी आगे बढ़ना है। कार्यक्रम बढ़ते कदम के अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे एक नए मेहमान के साथ। कार्यक्रम की प्रस्तुति थी प्रभु शरण की, अब मुझे यानी कमलेश कुमार मिश्र को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बढ़ते कदम। जे

SLPS के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हो रही है सक्षम और सशक्त। भेंटकर्ता कमलेश कुमार मिश्र की थी प्रस्तुति प्रभु सरन की।

शाम 4:35 पे आप सुनेंगे कार्यक्रम सांझ सरगम। प्रादेशिक मुख्य समाचार का वक्त होगा 5 बजे।

युवाओं पर आधारित कार्यक्रम आप सुनेंगे 5:02 से। 5:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम श्रमिक लोग। 5-6 बजे आप सुन पाएंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार।

6:32 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम हमारी दुनिया। 7 बजे का वक्त होगा प्रादेशिक समाचार का। 7:11 पे आप सुनेंगे जिले में आजकल।

7:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आदिवासी अखड़ा, 7:45 पर प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़िया सुनेंगे आप, 8:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम रजनीगंधा, 8:30 पर आप सुनेंगे सुर्खियों में।

समाचार संध्या का वक्त होगा 8:45 से। 9:30 पर दिल्ली से कार्यक्रम होगा, चर्चा का विषय बाद में आपको बताया जाएगा। 10:00 कार्यक्रम आप सुनेंगे नाटक, 10:30 पे कार्यक्रम होगा शास्त्रीय संगीत का। 11:00 हिंदी में समाचार, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार।

स्वागत है श्रोताओं कार्यक्रम सांझ सरगम में। आइए सुनते हैं सांझ सरगम का पहला गीत, फिल्म सतरंज से। गीत समीर के हैं, संगीत आनंद मिलन के, आवाज कुमार सानू और साधना सरगम की।

आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का अगला गीत। शब्द रचना मजरू सुल्तानपुरी के है, धुन अनु मलिक के, सुर साधना सरगम की और उदित नारायण की। फिल्म का नाम बाजी।

0: अब वक्त है छोटे से अंतराल का।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
0: अंतराल के बाद फिर से स्वागत है श्रोताओं कार्यक्रम सांझ सरगम में। अगला गीत फिल्म कलाकार से, गाने को लिखा है इंद्रवार और मनोज कुमार ने, संगीत कल्याण जी आनंद जी के हैं, आवाज किशोर कुमार की।